आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, सत्सवत 1948, श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त 2026। प्रातः के समय 5:57 होने को है। हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोंग मार्ग चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 6 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशे मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण की अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघा ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइट्रेन मॉर्निंग ड्वेवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज

0: கர்நாடக, கேரளம், மாஹி, நாகாலாந்து, மணிப்பூர், மிசோரம், திரிபுரா, ராஜஸ்தான், உப ஹிமாலய, பச்சிம பங்கால் ஆர் சிக்கிமே மூசலாதார் பாரிஷ் கா ஆரஞ்ச் அலர்ட் ஜாரி கியா ஹை. வஹி தில்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப், சண்டிகர், உத்தராகண்ட், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், குஜராத், கொங்கண், கோவா, மத்திய மகாராஷ்டிர, ஒடிஷா ஆர் அண்டமான் ஆர் நிக்கோபார் தீப் சமூக மே தேஜ் வர்ஷா கி சம்பாவனா வியக்த கி கை ஹை. இஸ்கே சாத் ஹி சமாச்சார் புலட்டின் சமாப்த் ஹுவா.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये टोल मारू चैनल है. मीटिंग है 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 MHz पर. प्रातः के समय 6:05 हुए हैं. ये समय है कार्यक्रम आज का विचार का. आज का विचार हम आपको प्रतिदिन 6:05 पर सुनवाते हैं. आज का विषय है पर निंदा से बचें. आलेख और वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का. तो आइए सुनते हैं आज का विचार.
2: यह देखने में आता है कि जहां चार मित्र या सखियां मिल जाएं तो गपबाजी आरंभ हो जाती है और उन गप्पों में ज्यादातर परनिंदा का हिस्सा होता है. हमारे घरों में इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है. परनिंदा में सुख तलाशने वाले लोग ये जान ही नहीं पाते कि कब उन्होंने दुख के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं. इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, काहू को नहीं नींद दिए, चाहे जैसा होए फिर ताको बंदिए, साधु लच्छे सोए. यानी संत कबीरदास जी का कहना है कि व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी निंदा मत करें. इसमें समय नष्ट करने की बजाय उस आदमी की बार बार सराहना करनी चाहिए जिसके लक्षण साधुओं की तरह हो. कबीरदास जी का यह कहना बड़ाई के लिए नहीं बल्कि मनुष्यता के कल्याण मात्र के लिए है. बुरे से बुरा व्यक्ति भी निंदा न करे. स्वामी रामसुदास जी महाराज भी कहते हैं, बुराई करने से पहले हमें खुद को बुरा बनना पड़ता है. अच्छा होकर कोई किसी की बुराई नहीं कर सकता. तो जाहिर सी बात है, बुराई बाद में की जाती है, पहले खुद को बुरा बनना पड़ता है. दूसरों की निंदा करने से वो बुराई और उसके प्रभाव आप में आ जाते हैं. फिर भी लोग बुराई में रस लेना बंद नहीं करते. हो सकता है बुराई करने से एक बार वो व्यक्ति कुछ लोगों के लिए बुरा बन जाता है, पर देर सवेर उसकी अच्छाइयां ही विजय प्राप्त करती हैं. उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं और हम बुराई करके खुद को और बुरा और पाप के भागी बना लेते हैं. इसलिए गांधी जी 3 बंदरों को प्रतीक स्वरूप गुरु मान उनकी मुद्राओं से ये ज्ञान दर्शाया कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो. यह जहां आपके कल्याण के लिए है, वैसे ही पूरी मनुष्य जाति को बधाई की आंख से देखने का प्रतीक भी है. कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई. कबीरदास जी का तात्पर्य है, संसार में बुरा तलाशने में निकला तो कोई भी बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैंने अपने भीतर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता. किंतु हम अपने भीतर न झांक कर बाहर की दुनिया में बुरा और बुराई खोजने में अपना कीमती वक्त जाया कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी इस आदत के गुलाम बन जाते हैं और मानवता के प्रति हमारी निष्ठा खत्म हो जाती है. संत श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, पर निंदा किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ. यानी पर निंदा करने से कुछ भी हाथ नहीं आता. अरे मूर्ख प्राणी, तू पाप का पहाड़ व्यर्थ अपने साथ लिए जा रहा है. इसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, दोष पराया देखी करे चले हसंत हसंत, अपना याद न आवे झांका आदिनांत. यहां कबीरदास जी कहते हैं, दूसरे के अवगुण दोष देखकर हम उस पर हंसते हैं और उसकी बुराई करते हैं, पर उन्हें अपने देह में स्थायी दोष न तो याद रहते हैं और न ही दिखाई देते हैं, जिनका कोई याद ही और अंत नहीं है. इसलिए सावधान होकर जीने का उपक्रम करें और बुराई के प्रति सावधान हो जाएं.

0: और किसी की भी निंदा नहीं करें।
1: पर निंदा से बचे, ये था आज का विचार। आलेख और वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। आकाशवाणी बीकानेर का ये दिल्ली ओरिजिनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम

रामधुन ने भी आपने सुना सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा के स्वर। आइए सुनते हैं सीमा मिश्रा का गाया ये भक्ति रचना।

आप चहोटा के गाए इस भक्ति रत्न के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के समय 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान। आज हम आपको सुना रहे हैं बालकांड के दोहा संख्या 295 से दोहा संख्या 297 की अंतिम चपैतक का पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

आप सुन रहे थे रामचरित मानसकांड। आज आपने बालकांड की दोहा संख्या 295 से दोहा संख्या 297 की अंतिम चौपाई तक का पाठ सुना। संगीत सतीश भाटिया का था। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। मिली जब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण।

बच्चों का अखिल भारतीय कार्यक्रम 9:30 पर होगा। रविवार से हुए अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम 10:00। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शख्सियत, जी हाँ, ये कार्यक्रम होगा 8:00 जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। समय 8:00। ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होता है ग्रामीण जगत, 7:00। चर्चा होगी अगस्त माह के कृषि बागवानी और पशुपालन संबंधित कार्य, ओलावृष्टि बाढ़ के समय पशुधन प्रबंधन, बीबीजी रामजी योजना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर चर्चा होगी। अलावा इसके लोकगीत भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत में।

हर शाम 5:05। आज की बात का विषय होगा खेल और स्वस्थ जीवन शैली। लघु जानकारी दी जाएगी मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जयंती, पंडित रविशंकर शुक्ला जयंती पर भी। अलावा इसके रोजगार समाचार, क्यूज टाइम होंगे और फिल्म संगीत का आनंद भी लिया जा सकता है। कार्यक्रम युवाणी शाम 5:05।

आप सुनते हैं दोपहर 1:05 पर। चर्चा के विषय होंगे सामाजिक समरसता निर्माण में बुजुर्गों का योगदान, दोस्ती पर बात होगी। अलावा इसके एक वार्ता सुनाई जाएगी महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सोनिया करोला।

कार्यक्रम विशेष सभा में नमस्कार 30 मिनट पर बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे गुरुकुल। आज का ही कार्यक्रम लेकर आएंगे डॉक्टर स्वर्ण रेखा। चर्चा के विषय होंगे बच्चे और मोबाइल की दुनिया, अलावा इसकी कविता कहानी और रोचक जानकारी भी दी जाएगी कार्यक्रम गुरुकुल 9:30 मिनट पर। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हेल्दी बी का नाम। इस कार्यक्रम में आज एक भेंट वार्ता होगी मेनोपॉज के बाद भी

स्वस्थ व सक्रिय जीवन, इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर कुलसुम सिद्दीकी। आपसे बातचीत करेंगी श्रीमती कविता वर्मा। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानू व्यास की रहेगी और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। जी हाँ, कार्यक्रम हेल्दी पीकाना 8:30 पर इसी सभा में।

0: का विवरण। आकाश में बीकानेर का ये ढोल मारो चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है ऊंटों में होने वाले रोग और उपचार। वाचक स्वर श्री सत्यनारायण शर्मा का है।
1: किसान भैया राम राम। आज अपन बात करा ऊंठा में होने वाला रोग और बियारो उपचार व रोकथाम। वो तो अपन जाना यहाँ कि शुष्क और अर्धशुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट रो विशेष महत्व है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी रे काम लेकर आवागमन पानी और बोझो ढोना सगला काम ऊंट है और ऊंट गाडर द्वारा पर क्रिया करे। कार्य क्षमता जिकी है ऊंटरी व ऊंठा रे स्वास्थ्य और खान पान मत निर्भर क्रिया करे। इर खातर ऊंट रो स्वस्थ रहनो ऊंट रो तंदुरुस्त रहनो बहुत ही जरूरी है। और इन सारू आप आज बात करा ऊंठों संबंधित बीमारियां और बिहार उपचार। ऊंठ जिको है मुख्य लक्षण यदि आप बात करा कि भी ऊंठ स्वस्थ को नहीं इन अपने क्या ध्यान लगे तो देखो बात आ है कि यदि ऊंठ जुगाड़ी करना बंद कर दे चारो है दानो है खाना पीना बंद कर दे और नाकू पानी गिरने लग जाए तो अपने समझ लेना चाहिए ऊंट रे मैंने कहीं कहीं बीमारी का लक्षण आ रहा है। ऊंट में उन्होंने जिकी मुख्य बीमारियां हैं वह है विषाणु जनित रोग जीवाणु जनित रोग परजीवी जनित रोग पोषक तत्वों की कमी होने वाला उत्पन्न रोग और तंत्री बीमारियां। सगलों पहला बात करा विषाणु जनित रोग। विषाणु या जिके नपा वायरस क्या करा बी जिकी बीमारियां हैं बीर में ऊंट रमेने जा ऊंट माता कंटेजियस एक्थाइमा रेबीज आदि जिका मुख्य रोग है। कैमल पॉक्स या जिके नपा माता रोग चेचक रोग भी किया करा हा। विषाणु द्वारा गर्मी और बरसात के दिन में होया करे। छह महीनों ले दो साल जिका ऊंट है बिहार ऊंट बच्चा है बिहार में संभावना ज्यादा रिया करे। रोग रिया अवधि जिकी है दो चार सप्ताह तक रिया करे और एक बार रोग पीड़ित हो जाए तो ई रोग प्रति ऊंठर में रोग प्रति रोधक क्षमता जिकी है उत्पन्न हो जाए। लक्षण जिका है होंठा में गुदा में जननांगा और पेड़ा ने चेहरा खानी छोटी छोटी फुणसियां देखने मिले अपने जिका ने अपा पेप्यूल्स भी किया करें और बिया महीने बाद में वह फाला में बदल जाया करें। फाला जिका है मवाद बढ़ जाया करे तो बिया ने पस चूस किया करे और जिका सूखने बाद में खरूंट बन जाया करे। कई बार रोग ठीक होने के बाद भी कहीं है कि पेरान में कंपन रह जाया करे ऊंट बहुत ही कमजोर हो जाया करे चारों खाणो छोड़ दिया करे और बुखार आ जाया करे। उपचार की बात है तो रोगी ऊंट ने दूसरे जिका स्वस्थ ऊंट है बिया अपने अलग कर देना चाहिए। गीले घावरे माथे केला माइन लोशन जिंक ऑक्साइड पोविडन आयोडीन लगाना चाहिए जबकि सूखो या खरूंट आ जाए बीर माथे अपने पोविडन आयोडीन और एंटीसेप्टिक मलम जिको है लगाना चाहिए। फिर बाद एक बात आप करा रेबीज जिकन हिड़काव जल आतंक या पागल होना भी किया करा वो रोग जिको है लासा वायरस होया करे और अधिकतर जिका पागल कुत्ता या जंगली जानवर काटने द्वारा होया करे वो विषाणु जिको है बिहारे थूक व लार में होया करे। लक्षण की बात करा तो ऊंट जिको है खाना पीना बंद कर दे लार गिरन लाग जाए ऊंट बहुत ही उत्तेजित हो जाया करे खुद ने या फिर दूसरे जानवर ने काटन दौड़न लाग जाया करे। चमकती आंखें और सिर जिको है अधिक ऊंचाई लिया आया करे और पास की चीजें वो बार बार काटा करे तो ऊंट रे पागल हो जाने के बाद और पशु भी मर जाए तो भी मरे पशु ने अपने जला देना चाहिए। निदान निजर से बात है तो भाई संदेहास्पद जी का ऊंट है जी का मतलब लगे विलक्षण आ रहा है तो घाव ने साबुन धोनो पानी या फिर एंटीसेप्टिक लोशन अच्छी तरह धो देना चाहिए। घाव ने खुलो छोड़नो एंटी रेबीज वैक्सीन जी की है चिकित्सक के परामर्श अपने लगानी चाहिए। जीवाणु जनित रोग की बात करा तो मुख्य रोग एंथ्रेक्स हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया ब्लैक क्वार्टर कंटेजियस नेक्रोसिस साल्मोनेलोसिस मुख्य रोग है। एंथ्रेक्स की बात करा जिके नपलिया ज्वर गिल्टी रोग भी करा किया करा और रोग बेसिलस एंथ्रासिस जीवन होया करे वो एक भयंकर संक्रामक रोग है जो को ऊंट रे महीने मनुष्य में भी ऊंट रे द्वारा मनुष्य में भी हो सके। पीड़ित मनुष्य रे शरीर पर मवाद युक्त फुंसियां जी की है बा हो जाया करे। लक्षण जी का है ई रोग रहा है कि जल्दी और अचानक दो चार घंटा में ऊंट जी को मर जाया करे। मुंह और गुदा सो स्याही माइल रंग रो खून निकलिया करे तेज बुखार आ जाया करे चमड़ी रे नीचे सोजन आ जाया करे और बचाव रे मैंने अपने एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन एक मिनट चमड़ी रे नीचे लगानी सो रोग वह कोनी प्रतिरक्षा 9-12 महीना तक रिया करे पर वो टीको बीमारी वाला क्षेत्र में ही अपने लगानो चाहिए और तुरंत अपना जगह पशु चिकित्सक है संपर्क अपन करना।

0: सारू टीकाकरण जी को है लगाना और बीमार पशु ने स्वस्थ पशु अलग राखर भी उपचार पशु चिकित्सक संपर्क कर आपने बगस सारू करवाना है।
1: ये था कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय था ऊंटों में होने वाले रोग और उपचार। वाचक स्वर था श्री सत्यनारायण शर्मा का। आकाशवाणी बीकानेर का यूट्यूब चैनल है। लीजिए सुनिए

0: हंस राव और साथियों के स्वर में भी आप सुन रहे थे लोक भजन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मोर चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर 6:55 होने को ही थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। श्रोताओं, हमारे जीवन में सर्वोपरि क्या है जिसको हम सबसे ऊपर रखते हैं? प्राथमिकता। जी हां, हमारा देश। प्रत्येक नागरिक के लिए उसका देश सबसे ऊपर होता है, उसके बाद समाज, परिवार आदि आदि। क्योंकि जिस देश में हम पैदा हुए, जहां हम जीते हैं, जहां हम अपने जीवन को अच्छे से बनाने के लिए प्रयास करते हैं, वो सर्वोपरि होता है। हमारे देश की बात करें, जहां अभी हम जीते हैं, रहते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं, ये अभी जो हमें आजादी दिख रही है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिली थी। आप सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमें आजादी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। अगर कहीं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कितने ही बहादुर देश के लिए एक हुए, संगठित हुए और आजादी के लिए अपनी बात रखी। 1905 की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन, जिसमें विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाया गया। अगर हम आजादी की बात करते हैं, आजादी के आंदोलनों की बात करते हैं, तो 1920 से 1922 को हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जवाब में शुरू हुआ पहला बड़ा अहिंसक जन आंदोलन, जिसमें सरकारी पदों और उपाधियों का त्याग तक कर दिया गया। गांधी मार्च 1930, गांधी जी ने साबरमती आश्रम में आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। न जाने कितने आंदोलन, न जाने कितने लोग, कितने हमारे महापुरुषों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया, जहां आज हम

वहाँ के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति। श्रोता, आज एक दिन एक और खास दिन की अगर हम बात करें तो आज मित्रता दिवस भी है, फ्रेंडशिप डे। दोस्ती के मायने क्या होते हैं ये हम महाभारत काल और रामायण काल से सीख सकते हैं। भगवान कृष्ण से भी दोस्ती की बात सीखने लायक है। महाभारत में दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के दोस्त सुदामा, मतलब साफ हो जाता है कि दोस्ती में गरीबी अमीरी या किसी भी तरह के स्तर की या लेवल की बात नहीं होती है, दोनों बराबर होते हैं, वही अच्छी दोस्ती है। लेकिन वर्तमान समय में दोस्ती के मायने क्या हमने बदल तो नहीं लिए हैं? क्या वैसी दोस्ती अब हम निभाते हैं? ये आज के दिन एक सवाल हमारे अंदर होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि अगर हम देखें तो हर रिश्ते में अगर हम दोस्ती का पुट डाल दें, दोस्ती की जो गुण होते हैं, दोस्ती के जो गुण होते हैं वो अगर हम हर रिश्ते में डाल दें, भले ही वो पति और पत्नी का रिश्ता हो, भाई और बहन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, बस उसमें थोड़ा सा दोस्ती

एहसास डाल दीजिए, फिर देखिए उस रिश्ते का आनंद। दोनों तरफ से दोस्ती निभाने का वादा होना चाहिए और सिर्फ मौज मस्ती या पार्टी के लिए दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दोस्ती होनी चाहिए एक दूसरे के काम आने की, भावनाओं को समझने की। एहसान नहीं होता है दोस्ती में, दोस्ती में कहते हैं कि धन्यवाद भी नहीं देना है, तो फिर दोस्ती सर्वोपरि है। हमारे वो फ्रेंड होने चाहिए जो हमें दुख में याद करते हो, दुख में हमारे साथ आते हो। खुशी में तो आना ही है, लेकिन ऐसे समय में जब आपको लगे कि मेरा कोई भी नहीं है, उस समय अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको हिम्मत दे रहा है, तो समझ लीजिएगा

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, जीवन में सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। बहुत बार ये देखा गया है कि हम इतना नकारात्मक सोच लेते हैं कि सही मायने में ऐसा कोई रिजल्ट था नहीं, ऐसा कोई परिणाम था नहीं, ऐसी कोई घटना थी ही नहीं जिसको हमने उल्टा बना दिया, नेगेटिव सोच लिया, सिर्फ सोच की वजह से ऐसा हो गया। क्योंकि जीवन में जो सकारात्मकता है ना, वो केवल एक विचार या दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने और जीने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो इसका असर हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। तो पॉजिटिव रहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। इसके साथ एक बात और, हमें जल का संरक्षण भी करना चाहिए। ये तो बात ठीक है कि हम घर में जल की बचत करते हैं, ज्यादा पानी नहीं गिराना है, वो सब ठीक है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो बारिश का मौसम है। इसमें अगर हम ये प्रयास करें कि हमारे घर पर जो पानी गिरता है, छत पर जो पानी गिरता है, उसको भी हम संग्रह कर लें। आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे घर के नक्शे बनने लगे हैं जिसमें एक टैंक बनता है जमीन में, जिसमें छत का पानी उसी में आता है, न कि नाली में या बाहर जाता है। और ये इसीलिए किया गया है कि हम जल के पानी को संग्रह कर सकें और वो किसी न किसी रूप में हमारे काम आता है। तो ये काम हमें कर लेना चाहिए। अगर हमारे घरों में अब भी ऐसा कोई टैंक नहीं बना है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी कोई, तो ये कर लीजिएगा ताकि आने वाला भविष्य हमें इस बात के लिए तो न कोसे कि हमने पानी नहीं बचाया। क्योंकि पानी

0: एहतियात ध्यान दें। पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आपसे विदा लेनी होती है। जी हाँ, सुप्रभात कार्यक्रम के अंतिम चरण में। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और उससे भी हम उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो हमें सकारात्मकता देता है। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का यूट्यूब मानव चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: गीत में यह तो फिल्म शोले से आवाजें थी मन्ना डे और किशोर कुमार की।
1: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित रक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

स्वर था यशुदास का, फिल्म का नाम था शिक्षा। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म याराना से, स्वर किशोर कुमार का है।

0: फिल्म को मेरे को भी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था याराना। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूंढ मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को ही थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, बस कुछ ही पलों में।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। तय मानस के निशुल्क नंबर 144 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24

0: आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश पर रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार

0: कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन।

0: पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बन गए 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान की

0: प्रवक्ता के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन चार अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों की ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुणवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाई। जनसत्ता की खबर है कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दो मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है कांग्रेस जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइया ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं। डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान टुडे। Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking.

की बातचीत। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की है, संयोजन श्री अमित सिंह का है। तो आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हेल्दी बी करना।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं खुशी क्लिनिक बीकानेर।
1: क्या आप भी मां बनने के सफर में या महिलाओं की सेहत से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान हैं?
2: बीकानेर की महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित है खुशी क्लिनिक, जहां आपको मिलता है वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलसुम सिद्दीकी का मार्गदर्शन। 12 से भी अधिक वर्षों के अनुभव के साथ डॉक्टर कुलसुम सिद्दीकी दे रही है हर महिला को सुरक्षित और सटीक इलाज,
1: चाहे वो सामान्य या हाई रिस्क प्रेगनेंसी, महावारी की समस्या, PCOS, ओवरी में गांठ, बांझपन का इलाज या सफेद पानी की समस्या। खुशी क्लिनिक में उपलब्ध है संपूर्ण जांच और आधुनिक इलाज, वो भी पूर्ण गोपनीयता और देखभाल के साथ।
2: सही देखभाल और खुशहाल ममता अब खुशी क्लिनिक के साथ।
1: आज ही अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कॉल कीजिए 8949155109।
2: पता नोट कीजिए, 160 मरुधर नगर, बीकानेर, खुशी क्लिनिक, केयरिंग फॉर वुमेन एवरी स्टेप ऑफ द वे।
1: महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित भरोसे का एक नाम खुशी क्लिनिक।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के हेल्दी बिकाना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जीवन परिवर्तन का नाम है और हर महिला के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब शरीर स्वाभाविक रूप से एक नए चरण में प्रवेश करता है। इस अवस्था को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। श्रोताओं, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्रकृति का सामान्य और महत्वपूर्ण बदलाव है। मेनोपॉज के दौरान शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं और क्या मानसिक स्थिति होती है, साथ ही चिकित्सक की सलाह से कैसे इस दौर को स्वस्थ और सहज बनाया जा सकता है, इन्हीं सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलसुम सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद कविता जी।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि मेनोपॉज क्या है और सामान्यतः ये किस उम्र में होता है।
4: सबसे पहले मैं सभी महिलाओं से एक बात कहना चाहूंगी कि मेनोपॉज कोई एक बीमारी नहीं है, ये हर महिला के जीवन में होने वाली एक प्राकृतिक परिवर्तन है जिसे हम नेचुरल ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफेद होते हैं या हम वृद्धावस्था में एंटर करते हैं, हमारे मांसपेशियों में वो ताकत नहीं रहती पहले जैसे, ऐसे ही महिलाओं की शरीर की अवस्था धीरे धीरे वक्त के साथ बदलती है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। आमतौर पे भारत में औसत आयु 46 से 51 ईयर्स के बीच में है। जब एक बार लगातार 12 महीने आपको मासिक धर्म नहीं आता, उस अवस्था को हम मेनोपॉज कहते हैं। मीनो मीन्स मेनार्की और पॉज मीन्स रुक जाना या स्टॉप हो जाना।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या हर महिला में एक ही उम्र में होता है या अलग अलग उम्र में भी मेनोपॉज हो सकता है?
4: नहीं, ये जरूरी नहीं है। कुछ महिलाओं में मेनोपॉज अगर 40 वर्ष से पहले आ जाए तो हम उसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। इस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब, अब आपने ये बताइए कि मेनोपॉज से पहले क्या शरीर कोई संकेत देता है जिससे हमें ये पता चले कि हाँ मेनोपॉज होने वाला है?
4: मेनोपॉज के 3 स्टेजेस होते हैं। एक्चुअल मेनोपॉज होने के पहले वाला फेज जिसे हम प्री या पेरी मेनोपॉज कहते हैं,
3: जी,
4: ये 8 से 10 साल तक लास्ट कर सकता है। फिर मेनोपॉज जो एक्चुअल 12 महीने लगातार पीरियड्स ना आने वाला इंटरवल, और मेनोपॉज की बात कर स्टेज जिसे हम पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं। उम्र के साथ जैसे हमारी ओवरीज हैं या अंडादानी है, उनमें फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज नहीं होता जिससे हमारा मासिक धर्म बंद होने लगता है। मेन जो रूट कॉज है मेनोपॉज का वो यही है।
3: जी जी डॉक्टर साहब, अच्छा आप ये बताइए जैसे पेरी मेनोपॉज है और मेनोपॉज है, इनमें कुछ अंतर है क्या?
4: पेरी मेनोपॉज में हार्मोनल इंबैलेंस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं और जरूरी नहीं कि हर महिला वो लक्षण के साथ प्रेजेंट करे। कुछ एक महिलाओं में उन बदलाव की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, वो हमारे पेरीमेनोपॉजल स्टेज में होते हैं जिनसे नॉर्मल

0: दैनिक उनका जीवन कई बार इफेक्ट होता है
1: जी।
0: जैसे हॉट फ्लशेस, बहुत ज्यादा गर्मी लगना या रात में बहुत ज्यादा पसीना आना, जिसे हम नाइट स्वेट्स कहते हैं, नींद कम आना या स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्लीपलेस नाइट होती है पेशेंट, कई बार महिलाओं के मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, ज्यादा गुस्सा आने लगता है, कभी कभी रोने का भी मन करता है, महिलाएं डिप्रेशन में जाती हैं, घबराहट होने लगती है या भूलने की समस्या आने लगती है, मेमोरी भी वीक होती है, स्किन और वजाइनल ड्राइनेस हो सकते हैं, आपस में संबंध करने के टाइम पेनफुल एक्ट होता है जिसकी वजह से उनका यौन जीवन भी प्रभावित होता है कई बार
1: जी जी जी,
0: और यूरिनरी सिम्टम्स भी होते हैं।
1: तो ये सब लक्षण है एक तरह से,
0: ये सब लक्षण है नॉर्मल मेनोपॉज के।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, कई बार हड्डियां कमजोर होने लगती है महिलाओं की मेनोपॉज में, अक्सर ये देखा जाता है, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है?
0: एस्ट्रोजन की कमी आने से बोन्स वीक होती हैं, और बोन्स वीक होती हैं जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो पेशेंट कई बार कमर दर्द की शिकायत के साथ प्रेजेंट करता है और फ्रैक्चर की टेंडेंसी बढ़ जाती है
1: जी।
0: कई बार हृदय की जो बीमारियां हैं, हार्ट डिसीजेस, इनके भी खतरा धीरे धीरे बढ़ता है।
1: तो जैसे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो क्या इसके लिए उपाय किए जाएं, कोई अलग से दवा लेनी चाहिए?
0: हाँ,
1: एक्सरसाइज, व्यायाम
0: हर महिला में तो जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन उनका भोजन कैसा है
1: जी,
0: या कैल्शियम लेवल बॉडी में कितना है, या बोन की मिनरल डेंसिटी में कितनी डेफिशिएंसी है, उसके आधार पर हम कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं पेशेंट को।
1: जी जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप हृदय रोग की बात कर रहे थे, तो ऐसा अधिकतर मानने में आता है कि मेनोपॉज के बाद हृदय रोग का खतरा अधिक बढ़ जाता है, क्या ये सच है?
0: बिल्कुल सच है। एस्ट्रोजन की कमी से हमारा लिपिड प्रोफाइल ऐसा डिरेंज होता है जिसमें हमारे हृदय रोगों को होने के लिए जो उनके चांसेस है या उनका हार्ट डिजीज का खतरा, वो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता है।
1: तो इसके लिए महिलाएं क्या करें डॉक्टर साहब कि ये समस्या उनके सामने ना आए?
0: डाइट एक तो हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें हम प्रोटीन रिच और फैट फ्री डाइट कहते हैं, जिसको थोड़ा कम लिपिड लेना चाहिए। दूसरा, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उन्हें थोड़ा सा बढ़ा दें तो अपनी दिनचर्या में, उससे प्रभावित मतलब प्रिवेंशन हो सकता।
1: अभी आपने जीवन शैली और खान पान की बात की, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बताएं कि खान पान क्या रहे और जीवन शैली में क्या बदलाव किया जाए।
0: सबसे पहले तो अपने शरीर को स्वीकार करें
1: जी,
0: घबराएं नहीं। उसके बाद कम से कम रोजाना 30 मिनट वॉक करें, आइदर मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करें। हल्की बहुत लाइट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की जा सकती है
1: जी।
0: योग और प्राणायाम ये लाभदायक हैं। अपने डाइट में हम कैल्शियम रिच फूड जैसे कि दूध है, दही, पनीर, तिल, रागी, हरे पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। विटामिन डी का की पर्याप्त मात्रा हमें बनाए रखना चाहिए। फल और सब्जियां ज्यादा लें
1: जी।
0: प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें और अत्यधिक चीनी या प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए और अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें
1: जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी कि खान पान और जीवन शैली में अगर थोड़ा बदलाव किया जाए तो स्वस्थ जीवन की ओर रुख किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल रहेगा कि यौन जीवन पर मेनोपॉज का क्या प्रभाव पड़ता है?
0: क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी से स्किन और वजाइनल ड्राइनेस मेनोपॉज में ज्यादा है
1: जी,
0: जिसकी वजह से जो संबंध बनाने में दर्द महसूस होता है, जिसे हम डिस्पेरिनिया कहते हैं, इसकी वजह से यौन जीवन प्रभावित होता है महिलाओं का। और इसके लिए हमें अपने चिकित्सक को दिखा के उनकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस लक्षण का भी उपाय उपलब्ध है
1: जी। डॉक्टर साहब जब आप इतने पेशेंट को डील करती हैं और थोड़ा सा तनाव भी जब आपको होता है, तो आप क्या करते हैं?
0: मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं
1: जी।
0: और इस एज में, क्योंकि मैं खुद भी इस एज से गुजर रही हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेडिटेशन का एक अहम रोल है
1: जी जी जी।
0: तो अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए योग है और मेडिटेशन को अपना साथी बनाएं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं कई सारी, जो आपके इंटरेस्ट की चीजें थी, जो आपकी जिंदगी में छूटती गई, वो वापस से आप स्टार्ट कर सकते हो। वो आपको कई हद तक स्ट्रेस से दूर रखते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आपका म्यूजिक के प्रति कितना रुझान है? आप गीत संगीत सुनती हैं?
0: म्यूजिक अपने जीवन शैली से कभी भिन्न रहा ही नहीं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: हर किसी व्यक्ति की लाइफ में म्यूजिक का एक अहम रोल है। जब हम छोटे थे तब भी हमारे आसपास गाने लोग गुनगुनाते, हमारा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए और इस म्यूजिक के साथ ही पलते रहे।
1: तो डॉक्टर साहब, एक गीत हो जाए आपकी पसंद का और आपके साथ साथ हमारे सभी श्रोता भी सुने आपकी पसंद का। कौन सा गीत आपको पसंद?

0: मुझे एक मूवी थी एयरलिफ्ट का, उसका गाना तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ये मुझे काफी मेरे जीवन में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है इसकी, तो ये मैं सुनना चाहूंगी, अपने श्रोताओं को भी सुनाना।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके साथ साथ हमारे तमाम श्रोता सुनेंगे आपकी पसंद का ये गीत।

0: कौन कौन सी ऐसी स्वास्थ्य जांचें हैं जिसे महिलाओं को नियमित रूप से करवानी चाहिए?
1: मेनोपॉज के बाद समय समय पर आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका लिपिड प्रोफाइल, बोन मिनरल डेंसिटी, ब्रेस्ट की जांच जिसे हम मैमोग्राफी कहते हैं, पैप स्मियर या सफेद पानी की जांच, थायराइड की जांच डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स या सोनोग्राफी की भी कभी अहम रोल है।
0: ये सभी जांचें जो है वो समय समय पर
1: करानी चाहिए,
0: करवानी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी डॉक्टर साहब, एक और मैं कहूंगी महिलाओं के लिए बड़ी ही समस्या का कारण है कि मेनोपॉज के बाद जो है वजन अचानक से बढ़ने लगता है, तो ये क्यों बढ़ता है और इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?
1: क्योंकि उम्र के साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो जाती हैं, फिर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो वेट गेन होता है। कई महिलाएं हमारे पास आती हैं और वो कहती हैं हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम तो पूरा डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर हमारा वर्कआउट भी है, फिर भी वेट गेन हो रहा है। तो वेट गेन मेनोपॉज का एक लक्षण है और कमर के आसपास चर्बी इकट्ठे होने से भी कई समस्या उत्पन्न होती है।
0: जी जी, तो इससे कैसे निदान पाया जाए?
1: डाइट में आपको एक तो फैट फ्री या लेस फैट, कम ऑयली खाना, हमारे जो नेचुरल प्लांट सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है जिसे हम फाइटो एस्ट्रोजन कहते हैं वो हमें लेना चाहिए। हम सिर्फ गेहूं का आटा ना लेकर मिक्स ग्रेन आटा लें, प्रोटीन रिच डाइट लाइक सोया प्रोटीन हम इंक्लूड करें, वो भी एक फाइटो एस्ट्रोजन है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट आधे घंटा सुबह और शाम को वॉक कर लें, योग या प्राणायाम करें, वो हमें हेल्पफुल होगा।
0: जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा HRT के बारे में। HRT क्या है डॉक्टर साहब और क्या ये सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित है?
1: HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिस हार्मोन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो रही है उसे हम बाहर से सप्लीमेंट देते हैं जिसे हम HRT कहते हैं। हर महिला को दवा की आवश्यकता नहीं होती। यदि लक्षण बहुत अधिक हैं जिससे आपका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह से ही कुछ महिलाओं को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। सबके लिए ये उपयुक्त नहीं है, केवल गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पे ही आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, इस थेरेपी में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या होता है इस थेरेपी में?
1: हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम एस्ट्रोजन को इन फॉर्म ऑफ आइदर टैबलेट और इंजेक्शंस डिपेंडिंग ऑन आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं वो हम एडमिनिस्टर करते हैं और पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। और अगर ये देखें कि HRT हमें किनमें नहीं देना चाहिए तो कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं या जिनमें कैंसर के रिस्क ज्यादा हैं उनमें HRT कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
0: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा देखिए पारिवारिक जो सहयोग है वो कितना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे टाइम में जो महिलाएं हैं उनमें मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो पारिवारिक सहयोग कितना आवश्यक होता है?
1: किसी भी स्थिति में पारिवारिक सपोर्ट सबसे अहम रोल प्ले करता है। हमारे आसपास जो लोग हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी स्थिति उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता।
0: बिल्कुल,
1: अगर एक महिला इस स्टेज से गुजर रही है और उसे फैमिली सपोर्ट मिलता है जो कि मॉरल सपोर्ट के फॉर्म में है तो कई समस्याएं, कई लक्षण अपने आप ही कम हो जाते हैं धीरे धीरे। ये सपोर्ट बहुमूल्य है और इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इस स्टेज की एक तो लोगों को समझ कम है, जब उन्हें जो सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं या जो सिम्टम्स के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इसका नॉलेज होगा तो खुद ब खुद उसे फेस करने की ताकत भी मिलेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो हॉट फ्लैशेस से बचने का कोई तरीका है?
1: हॉट फ्लैशेस से बचने के लिए टैबलेट्स भी आती हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं एस्ट्रोजन के, वो उनके साइड इफेक्ट्स भी कम है, तो कुछ हद तक हॉट फ्लैशेस की सीवियरिटी कम की जा सकती है, बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे नहीं कहा जा सकता।
0: जी डॉक्टर साहब, इस बातचीत को थोड़ा सा और विराम देते हैं।

बात फिर से हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब इसी विषय पर। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलसुम सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे मेनोपॉज के बाद

0: डॉक्टर साहब, वापिस हम इसी चर्चा से जुड़ते हैं और अब हम ये जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज के बाद भी क्या गर्भधारण संभव है।
1: यदि लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आए तो प्राकृतिक प्रेगनेंसी की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन पेरीमेनोपॉज के दौरान प्रेगनेंसी संभव है, इसलिए उस समय आवश्यकता होने पर कॉन्ट्रासेप्शन आप जारी रख सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि मेनोपॉज हो गया है और काफी समय से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और उसके बाद फिर रुक रुक के बीच बीच में पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ये कितना सही या गलत है, थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालिए।
1: मेनोपॉज के एक्चुअल मेनोपॉज आने के पहले कई बार मासिक धर्म अनियमित होता है, किसी महिला में ये विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी जैसे एक ही महीने में दो दो तीन तीन बार आ सकते हैं, किन्हीं में दो दो तीन तीन महीने के गैप से पीरियड आते हैं, इनकी फ्लो भी इफेक्ट होता है, तो ये नॉर्मल पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं जो महिला अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके पीरियड्स दे आर इरेगुलर।
0: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये जो श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज जो महिलाओं में होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए।
1: मेनोपॉज में नॉर्मली क्योंकि सिक्रीशंस कम होने लगते हैं जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस महिला महसूस करती है, लेकिन तब भी ये सफेद पानी की समस्या आ सकती है। अगर इसमें कोई स्मेल है, बदबू है, या ये ब्लड मिक्स्ड है, या इसका कलर कुछ चेंज होता है, तब अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मियर की जांच जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी गंभीर स्थिति बनती है जब महिलाओं को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: यदि मेनोपॉज के बाद फिर से आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए,
0: जी,
1: जो सामान्य बिल्कुल नहीं मानी जानी चाहिए, तुरंत जांच आवश्यक है। यदि पेशेंट अत्यधिक पेट दर्द में है या उसके यूरिन में बार बार ब्लड आ रहा है, अचानक उसका वजन कम होने लगे, या ब्रेस्ट में कोई लंप वो महसूस कर रहा है, तो आप तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कई बार होता है कि पीरियड्स चले गए हैं, उसके बाद फिर दो तीन महीने में एक बार पीरियड्स आ गए हैं, फिर कुछ समय में आ गए, तो महिलाओं को लगभग ये लगता है कि हाँ पीरियड्स जाने वाले हैं, इसीलिए रुक रुक कर आते हैं, तो क्या ये कोई गंभीर समस्या का संकेत तो नहीं है?
1: अगर पेशेंट की एज ग्रुप 46 से 51 के बीच में है
0: जी,
1: और उसके पीरियड्स उसको इतना परेशान नहीं कर रहे इन फॉर्म ऑफ फ्लो या ब्लीडिंग, तो ये सामान्य लक्षण है जो मरीज को आगे जाके मेनोपॉज की तरफ ले जा रहा है
0: जी,
1: तो इसके लिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता

0: रास्ता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हमारी जो कामकाज जो महिलाएं हैं उन्हें ऑफिस जाना होता है, कार्यस्थल पर वो रहती हैं, तो उन्हें क्या अलग से कुछ आप बताना चाहेंगे?
1: कामकाजी महिलाओं को एक तो घर का और अपने जॉब का स्ट्रेस तो है
0: जी,
1: साथ में जब उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो एक तो आपके हॉट फ्लशेस और मूड स्विंग से आप परेशान हैं, फिर काम का प्रेशर कई हद तक आपको ऐसे सिचुएशन में लाता है जब आप हेल्पलेस फील करते हो, जब आपको लगता है ना घर में मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा ना वर्क प्लेस पे
0: जी।
1: इस स्थिति को समझना जरूरी है, दिस इज नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड देन रिएक्ट अकॉर्डिंगली।
0: जैसा कि आपने अभी बताया कि सहयोग की आवश्यकता मेनोपॉज के समय हर महिला को रहती है, तो ये आवश्यक है कि जो परिवार के सदस्य हैं या बाहरी लोग हैं वो पूर्णतः महिला को एक सपोर्ट करें। अंत में डॉक्टर साहब, मेनोपॉज से गुजर रही हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें क्या महत्वपूर्ण संदेश आप देना चाहेंगे?
1: सबसे महत्वपूर्ण संदेश, मेनोपॉज जीवन का अंत नहीं, यह जीवन का नया अध्याय है। आज की महिला पहले से अधिक स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर रह सकती है। सही जानकारी, संतुलित भोजन, व्यायाम और नियमित स्वास्थ्य जांच से मेनोपॉज के बाद भी जीवन पूरी तरह स्वस्थ और खुशहाल हो सकता है।
0: बहुत बढ़िया जानकारी हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई है डॉक्टर साहब। आज हम बता दें अपने श्रोताओं को कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलसुम सिद्दीकी, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे खुशी क्लिनिक बीकानेर।
3: क्या आप भी मां बनने के सफर में या महिलाओं की सेहत से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान हैं?
4: बीकानेर की महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित है खुशी क्लिनिक, जहां आपको मिलता है वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलसुम सिद्दीकी का मार्गदर्शन। 12 से भी अधिक वर्षों के अनुभव के साथ डॉक्टर कुलसुम सिद्दीकी दे रही है हर महिला को सुरक्षित और सटीक इलाज,
3: चाहे वो सामान्य या हाई रिस्क प्रेगनेंसी, महावारी की समस्या, PCOS, ओवरी में गांठ, बांझपन का इलाज या सफेद पानी की समस्या। खुशी क्लिनिक में उपलब्ध है संपूर्ण जांच और आधुनिक इलाज, वो भी पूर्ण गोपनीयता और देखभाल के साथ।
4: सही देखभाल और खुशहाल ममता अब खुशी क्लिनिक के साथ।
3: आज ही अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कॉल कीजिए 8949155109।
4: पता नोट कीजिए, 160 मरुधर नगर, बीकानेर, खुशी क्लिनिक, केयरिंग फॉर वुमेन एवरी स्टेप ऑफ द वे।
3: महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित भरोसे का एक नाम, खुशी क्लिनिक।

0: आयोजित कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजसमंद दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जयपुर में चल रही कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कोटा की अरुंधति ने महिला 70 किलोग्राम भार वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत पोर्टल के जरिए इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों के दुरुपयोग

0: उपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान शुरू होगा। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठन, युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संघ और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों से जुड़ेंगे। अभियान के दौरान पदयात्रा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक और खेल आयोजन तथा अन्य गतिविधियां होंगी। ये अभियान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर दोपहर 12:30 पर पहुंचेंगे। यहां से वो सड़क मार्ग से सीधे दीक्षु नीलम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वो जिले के लिए 436 करोड़ रुपए से अधिक के 344 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा समारोह में लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी वितरित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कर्तव्य पथ संवाद, नेतृत्व और निष्ठा का मिलन कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल उदयपुर जिले की बीड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में लोगों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं के सुझावों और विचारों को सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान उन्होंने परीक्षा के सुचारू संचालन, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। बैठक में श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए कुल 273,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पारी में आयोजित की जाएगी। इधर जयपुर में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने नीट यूजी काउंसलिंग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सभी मेडिकल संस्थान, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा राज्य काउंसलिंग प्लेटफॉर्म द्वारा लागू किए गए नए नियमों का गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 के दूसरे दिन न्यायपालिका और विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मध्यस्थता न्याय तक त्वरित, सुलभ और कम खर्चीली पहुंच का प्रभावी माध्यम है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने इसे विवाद समाधान का पहला विकल्प बनाने पर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने प्रदेश में मध्यस्थता, प्रशिक्षण और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की जानकारी दी। सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में पारिवारिक, आपराधिक, व्यावसायिक और कार्यस्थल संबंधी विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों और निशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि मध्यस्थता समाज में विश्वास कायम करने और न्याय को अधिक जनोन्मुखी बनाने का प्रभावी माध्यम है। राज्यपाल

0: हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज और सुधार और समाज के संगठन के लिए विशेष काम किया। उन्होंने बताया कि उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए। श्री बागड़े कल अजमेर के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सभ्यता, नैतिकता और मानवता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनमें ईमानदारी के गुण विकसित हो सके। समारोह में विभिन्न लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी अवलोकन किया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक है। इधर प्रदेश से कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने महिलाओं की 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की चेंटिल रीड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की पहली बॉक्सर है। उनकी जीत पर कोटा में जश्न का माहौल है।
1: शहर की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत पर शिक्षा नगरी कोटा में जश्न का माहौल है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतकर अरुंधति ने पूरे देश के साथ साथ अपने शहर कोटा का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गलियों से लेकर चौराहों तक इस समय बस एक ही नाम गूंज रहा है, ढोल नगाड़ों की थाप के बीच कोटावासी अपने स्वर्णिम पंच वाली गोल्डन गर्ल की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: इसके अलावा मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घांगस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पांघल ने स्वर्ण, जबकि जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर अरुंधति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज देश भर में फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस मनाया जा रहा है। अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाने वाला ये दिन दोस्ती को समर्पित है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, उपहार और कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आज वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजसमंद दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जयपुर में चल रही कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में विधि विशेषज्ञों ने मध्यस्थता को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कोटा की अरुंधति ने महिला 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। मीडियम वेव 47.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी।
3: आकाशवाणी बीकानेर का यूट्यूब हमारा चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार, 10 मिनट हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

0: जिन्होंने गीत अभी आपने सुना, स्वर था वीरेंद्र शर्मा का।
1: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: फरती शर्मा और साथियों को भी आप सुन रहे थे।
1: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए सुनते हैं सीमा मिश्रा और सतीश डेहरा के स्वर में ये लोकगीत।

सिंह मिश्रा सतीश दुहिया के स्वर में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ध्वनि मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता आज रविवार है और बच्चों को इंतजार है अपने कार्यक्रम मुकुल का। आज का मुकुल कार्यक्रम लेकर आई है बच्चों की दीदी डॉक्टर सोन रेखा। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम मुकुल।

बच्चों जय हिंद। जिंदगी में हमें बहुत कुछ लेकर चलना होता है, कभी खुशियां होती हैं, कभी आंसू होते हैं, और कभी कभी तो हमारे अपने वो दोस्त जो हमारे साथ बड़े प्यार से चलते हैं, है ना। और आपकी दीदी आपको यही तो बताने के लिए आई है। तो आपकी स्वरण दी आज आपके लिए लेकर आई है बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में बहुत खास है। जिंदगी चलती है हमारे अपनों के साथ, और आज की दुनिया में जहां हम सोचते हैं ना कि किताबें हैं, कविताएं हैं, कहानी है, तो साथ ही हमारे दोस्त भी हैं। क्यों नहीं है? आप भी जानते हो कि आपके दोस्त कौन है। हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल देखते हैं, हम कार्टून्स देखते हैं, तो वहां भी कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा होता है ना जो हमारा दोस्त बन जाता है, और हम उन्हें सोचते हैं कि ये हमारे कितने खास है। तो आज हमारे लिए जरूरी है बच्चों कि हम आपको कैसे लेकर चलें उस दुनिया में जहां से मोबाइल तो दूर होता है लेकिन हमारे दोस्त हमारे करीब हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप टीवी मत देखिए, आप मोबाइल ना चलाएं, हर चीज

एक लिमिट में करना होता है ताकि हमारे मम्मी पापा नाराज नहीं हो, हमारा टाइम नहीं जाए और साथ ही हमारी जिंदगी में कुछ नया हो। यही है आपका मुकुल कार्यक्रम आपकी दीदी के साथ, और स्वर्ण दी के पास में है खजाना आपके लिए, है ना बाबू? छोटी छोटी बातें हैं जो हम करते हैं हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई। तो चलो हम करते हैं आज की बात। आज सुबह क्या किया था? शैतानी के अलावा हमने आज मोबाइल स्क्रॉल किया था, और उस मोबाइल स्क्रॉलिंग में हमने ये चीज भूल गए कि हमें टाइम कितना लगा। हम टाइम लगाते लगाते भूल जाते हैं कि हमने कितनी देर का काम सेट किया था खुद के लिए। हमें होमवर्क भी करना है बिकॉज संडे जो है। हम ये भी भूल गए कि आज एक स्पेशल डे भी है। कौन सा? फ्रेंडशिप डे है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्योंकि हम सब मिलकर एक दूसरे के दोस्त हैं। हम सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं, छोटे से लेके बड़े तक हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्ती जरूरी है, लेकिन दोस्ती के साथ साथ कुछ चीजें और भी जरूरी है। लेकिन गुनगुनाएं जब दोस्तों के साथ तो दिन बन जाता है ना? कैसे बनता है दिन? प्यार से बनता है, दुलार से बनता है, और बनता है हमारी यारी से।

आपने भी देखा होगा कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सबके हाथ में मोबाइल स्क्रीन रहता है और हम भूल जाते हैं असली जरूरत। मोबाइल्स की जो वर्चुअल दुनिया है ना, जिसे हम एक फैंटेसी लैंड बोलते हैं, उसके अंदर हमारा विकास तो हो रहा है लेकिन हम मानसिक रूप से ही जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों को खो देते हैं जिनसे हमारा विकास होता है। हम बच्चों के लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है कि हम सामाजिक विकास करें, हमारी भावनाएं जुड़ें और उसको बेहतर कैसे बनाएं। मोबाइल है हमारी जिंदगी का हिस्सा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हम बच्चे कैसे सुलझ सकते हैं? उसके कारण भी है ना कि हम अगर कोई कारण पता लगाएं और उसका समाधान भी निकालें तो वी आर द स्मार्ट किड्स। और ये स्मार्ट किड

बनेंगे? चलो आपकी दीदी आपको तीन पॉइंट्स बताती। सबसे पहले मोबाइल का जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है ना, वो हम बच्चों के ऊपर बहुत होता है। जैसे नींद खराब करता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम करता है, आंखों पर बुरा असर डालता है। जिनके चश्मा लगा है तो उनको आईज में दर्द होता है, पानी आता है और भी बहुत सी तकलीफें हो जाती हैं। एक सबसे बड़ा कारण और भी होता है कि हम दुनिया से कट जाते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल को भूल जाते हैं, हम अपनों से नहीं मिल पाते और हम अपने मम्मी पापा से भी कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं प्रॉपर। हमारी जो फ्रेंडशिप का मेन मोटो है वो पीछे रह जाती है, क्योंकि हम जब स्कूल में होते हैं, हम जब प्लेग्राउंड्स में होते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं ना, हम साइकिलिंग करते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था। हम दोस्तों से अपनी चीज़ों को बांटना सीखते हैं, जिसे हम एक बहुत प्यारी फ्रेंडशिप कहते हैं, एक हेल्दी फ्रेंडशिप कहते हैं, जहाँ पे हम अपना दुख सुख हुआ, हम अपनी हार जीत है जैसे हम स्वीकार करते हैं, और साथ ही हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो हमें हमारे आगे लाइफ में बहुत बड़े गोल सेट करने में मदद करती है। और हम जो छोटे बच्चे हैं, हम आपस में खेलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और हम अपनी छोटी छोटी चीजों को शेयरिंग केयरिंग से एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड्स बनकर आते हैं। साथ ही हमारे जो मैजिकल वर्ड्स हैं, 3 मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी एंड नमस्ते, यानी कि किसी की ग्रीटिंग्स, हम वो तीनों मैजिकल वर्ड्स से सबका दिल जीत लेते हैं। तो हुई ना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। और साथ ही बच्चों, आपको पता है अगर ज्यादा मोबाइल हम चलाते हैं तो एक एडिक्शन बन जाता है। निकलना है तो हमें आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, हमें ड्राइंग्स, आर्ट, पेंटिंग और दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगना चाहिए, और साथ ही हमें अपना स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल का जो टाइम है उसको कम करना होगा। करेंगे ना मिलकर हम ये सब चीजें, तो आपकी स्वर्ण दी आपको और भी बहुत सारी ब्रेन स्ट्रॉमिंग चीजें बताएगी, और आपकी दीदी भी आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। सो मेरा छोटा मोटा बुबू, बहुत प्यार से आपकी दीदी बहुत सारी बातें लेकर आई है। जैसे नबिता कहता है ना, हम अपनी सारी बातें करते हैं, तो हम मिलकर हम अपनी छोटी छोटी बातों को भी सुलझाएंगे।

आज हम सारे मिलकर एक नया गेम खेलेंगे, बिकॉज गेम्स हमारी जिंदगी का ना बड़ा प्यारा हिस्सा होते हैं। आप भी सोच रहे हैं कि आज स्वंदी आपके साथ कौन सा गेम खेलेगी और आपको सिखाएगी कि विच गेम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुडोकू, आपने देखा होगा कि हमारी ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए हमें छोटी छोटी पजल्स के गेम देते हैं। हम पजल सॉल्व करते हैं जिसमें ड्राइंग्स की होती है, फोटोज बनी होती है, और हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। आपको मम्मा पापा ने भी बहुत से ऐसे गेम्स ला के दिए होंगे। लेकिन हम जब न्यूज़पेपर देखते हैं उसके अंदर एक सुडोकू का पार्ट आता है। यह आपके ब्रेन के लिए एक सबसे अच्छा वर्कआउट है। यह आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाता है। छोटे बच्चों के लिए भी छोटी छोटी सुडोकू जैसी पजल्स हैं वो दी गई होती हैं, जिसके अंदर हम कहीं से किसी चीज को मिलाने का, डॉट टू डॉट जिसको कनेक्शन कहते हैं, वो मिलाने का काम करते हैं, जबकि सुडोकू एक नंबर्स के साथ में ग्रिड नंबर्स पे काम करता है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात एक है, यहाँ नो चीटिंग। 0 से लेकर 9 तक की कैलकुलेशन करते हैं। और इससे ब्रेन स्ट्रॉमिंग कैसे होती है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम केवल यहाँ पे नंबर्स नहीं भरते, हमारा ब्रेन उसको याद करता है। एंड द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये क्रॉस मैचिंग को इनहेंस करता है। जैसे आपने कोई नंबर चुना है और आपने रोज एंड कॉलम्स में डाला है, तो इससे आप क्या करेंगे, जो बाकी की खाली जगह है उसमें एक अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा ये वाला आएगा। सेकेंड थिंग, इसका जो सबसे बड़ी चीज है, दैट इज सेप्टिकल रीजनिंग, जिसको कहते हैं दृश्य स्थानिक कौशल। इसको आप 9x9 के ग्रिड में, 3x3 के ग्रिड में भरते हैं। और जब आप कॉग्नाइजेशन पैटर्न जो आपका तेज होता है, इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। ये सबसे बड़ा हमारा गोल अचीवर है। और हाँ, एक चीज और बताती हूँ, शुरुआती दौर पर जब आप इसको भर रहे होते हैं ना, तो पेंसिल से इरेजर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लीज नो चीटिंग, कम से कम कीजिए। आपको याद रखना है कि आपने पिछले अपने जो मूव्स थे उसमें क्या क्या चीजें भरी थी। और आज आपकी दीदी ने आपको इसलिए बताया है बिकॉज इट्स द बेस्ट गिफ्ट टू योर फ्रेंड। हम सुडोकू को गिफ्ट करते हैं उन्हें। सो हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, बिकॉज आवर फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। और हाँ, और भी चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जिस पर बात करूंगी, क्योंकि रिसाइक्लिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टोरी टाइम।

आपकी दीदी के पिटारे में आज एक चीज और है, हम रिसाइकल से कैसे नई चीजें बनाते हैं। तो हमारे बच्चों का जो दिमाग है ना, बहुत बेकार चीजों से बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। प्लास्टिक की बॉटल से हम गमले, पेन होल्डर्स, हमारे पक्षियों के लिए दाना चुभने वाले बर्ड फीडर्स बना सकते हैं। कांच की जो बोतलें और जार होते हैं ना, उनके रंग बिरंगे लैंप, बैग हुए, कुशन कवर्स है, ये डिजाइन कर सकते हैं। डब्बों से ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं जिनको हम ड्रॉर्स में रख सकते हैं, हमारे सामान को इकट्ठा कर सकते हैं। डाई, डू इट योरसेल्फ, जी हाँ, DIY, हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स यूजफुल है हम उन्हें कलर कर सकते हैं। मैंने कहा ना, मोबाइल की दुनिया से चीजें सीखते हैं, जहाँ पे रिसाइकलिंग से चीजें कैसे बनाई जाए उसे सीख सकते हैं। पेपर से आप यूजफुल मॉडल्स बना सकते हैं। हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी है हम उसे निभा रहे हैं, और साथ ही हमने सस्टेनेबल जो जीवन शैली है उसको अपनाया है।

जो मन की कहानी है अब। और मन की जो बातें होती है ना, वो हमारे किसी ना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ी होती है। तो आज आपकी दीदी आपको सुना रही है जो कहानी, वो महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। मन का मौन और शांति में रहना एक पानी की तरह होता है। कैसे? अब आप भी सोचोगे पानी का और मन का क्या मेल। बिल्कुल सही कहा, मन कभी शांत

बच्चों मन की कहानी है अब, और मन की जो बातें होती है ना वो हमारे किसी ना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ी होती है। तो आज आपकी दीदी आपको सुना रही है जो कहानी वो महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। मन का मौन और शांति में रहना एक पानी की तरह होता है। कैसे? अब आप भी सोचोगे पानी का और मन का क्या मेल। बिल्कुल सही कहा, मन कभी शांत होता है तो कभी मौन। और कहते हैं जब पानी के अंदर हम हाथ जोर जोर से मारते हैं ना, तो पानी के नीचे जो गार होती है, मिट्टी होती है, उसको उथला कर देती है, गंदा कर देती है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ही कष्ट आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये कहानी हमारे को कुछ नया सीखने की प्रेरणा देती है। एक बार एक व्यक्ति ना महात्मा बुद्ध के पास में गया और उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, कहा कि मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। महात्मा बुद्ध कुछ देर तक तो उसको देखते रहे, कुछ समय बाद मौन हुए और शांत बैठने को कहा। कुछ समय बीत जाने पर उस व्यक्ति का मन शांत हुआ और उसने सारी बातें एक एक करके पूछना शुरू करी, और बहुत सी बातें तो ऐसी थी जो वहीं पर ही समाप्त हो गई थी। तब महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि अभी तो तुम मुझसे गुस्से में, क्रोध में, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहे थे, तमतमा रहे थे, और तुमने कहा मुझे तुरंत उत्तर चाहिए इस बात का, तुम नाराज थे, और जब मैंने तुम्हें शांत होके बैठने को कहा, मौन होके बैठने को कहा, तो तुम शांत हो गए। ऐसे ही जब पानी में हम जोर जोर से हाथ मारते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और इससे पानी साफ नजर नहीं आता, और हम क्या करते हैं, गुस्से में हाथ और मारते जाते हैं कि मुझे साफ पानी मिले और मैं उसे पी लूं। अगर उस समय हम थोड़ा सा शांत हो जाएं और पानी को सेटल होने दें तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और ऊपर अच्छा पानी मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को हासिल करना चाहते हैं। थोड़ा सा खुद में सब्र करना सीखें, यही कहानी का सबसे बड़ा मोटो है। शांति से मन के पानी को शांत करना चाहिए, और हाँ, जब हम शांत होंगे तो सब चीजें हमारे मन मुताबिक होगी, और उससे बनती है मौन की शक्ति। जब हम मौन होते हैं तो हम कभी किसी को बुरा नहीं कहते। महात्मा बुद्ध ने यही प्रसंग दोबारा उसी को समझाया कि जब तुम मौन हुए तो तुम्हारे जो शब्द थे उन्होंने किसी को आहत नहीं किया, कुछ गुस्सा नहीं किया, कुछ अपशब्द नहीं कहे, तो हम कैसे हो गए, शांत हो गए। ऐसे ही जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें शांत हो जाना चाहिए, और जब शांत होते हैं तो हमें सारी चीजें क्लियर नजर आती हैं और हमारे सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। इसे कहते हैं मौन की शक्ति, और ये शक्ति समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हमें शांत रहकर कोई भी भ्रम अपने अंदर पैदा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे साथ हुआ होगा, नहीं, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने इनर पीस से जुड़ जाएंगे, कंप्लीट साइलेंस। चलो एक और दुनिया में चलें।

प्राण वायु हर पल में देते, फिर भी हमसे कुछ ना लेते। वृक्ष धरा के हैं आभूषण, करते दूर प्रदूषण है। और आपको पता है हमारे अमेज़न के फॉरेस्ट, जहां से हमें सबसे ज्यादा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलती है। एनवायरनमेंट को भी बचाना है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लेट मी थिंक। बताइए ना क्या हो सकता है। सोच लिया आपने, चलो रिवील करते हैं आपके लिए। ये है हमारे रोचक तथ्य, क्योंकि विश्व में ऐसे बहुत से अद्भुत नजारे हैं, ऐसे बहुत से नवीन स्रोत हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ के संसार में क्या हो रहा है। और हम कभी कभी भूल भी जाते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारी चारों तरफ की दुनिया में क्या हो रहा है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम सोचते हैं कि हम ही हैं जो फ्रूट्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि केला एक बेरी है, लेकिन स्ट्रॉबेरी एक बेरी नहीं है, वो एक पल्पिंग फ्रूट है। जैसे हाथी एकमात्र ऐसा जीव है जो साफ सुथरा रहना पसंद करता है और हर रोज नहाता है, तो जो नहीं नहाते ना, वो हाथी से सीखिए कि रोज नहाना जरूरी है। झींगा मछली जिसे हम श्रिम्प्स कहते हैं, ये मछली अपना दिल कहाँ रखती है पता है? अपने दिमाग में, यानी कि उसके सिर पे होता है। और हाँ, अगर हम सुअर की बात करें, पिग्स की, तो ये पूरी तरीके से अपने मुंह को, गर्दन को उठा के आकाश की तरफ नहीं देख सकते। और हाँ, अगर बात करूं मैं शार्क मछली की, ऐसी मछली है जो अपनी दोनों आंखों की पलकों को झपका सकती है, यानी ब्लिंक कर सकती है। और बटरफ्लाइज की दुनिया किसे अच्छी नहीं लगती? बटरफ्लाइज को अगर पता लगाना हो कि किसका टेस्ट क्या है, इट्स यमी और नॉट, इट्स डिलीशियस, तो पता क्या करती हैं? ये अपने पैरों से उसको छूती हैं, तभी पता चलता है वो पैरों से चख रही होती हैं, स्वाद ले रही होती हैं। क्या आप अपनी कोहनी से अपनी जीभ लगा सकते हैं? नहीं? ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, क्या आप टच कर सकते हैं अपनी जीभ को? डॉल्फिन अपना नाम रखती है और ये सारी बातें बड़े प्यार से करती हैं। तो ये सारी थी प्यारी प्यारी बातें जिसके अंदर आपकी दीदी ने आपसे आज ढेर सारी बातें करी है। आपकी दीदी आपसे फिर से मिलेगी आपके अपने दूसरे प्रोग्राम में। तो बच्चों, जय हिंद।

कंप्लीट साइलेंस से पोइट्री में चलते हैं, जहां पे हम गुनगुनाएंगे, बातें करेंगे, एंड देयर इज अ जिंगल, क्योंकि ये जो कविता है ना, ये कविता है हमारे पेड़ों की। वृक्ष धरा के हैं आभूषण, करते दूर प्रदूषण, हम सबको भाते हैं वृक्ष, हरियाली लाते हैं वृक्ष, पत्थर खाकर भी फल देते, हवा के विष को भी ये हर ले।

ये था बच्चों के लिए कार्यक्रम मुकुल। आज का ही कार्यक्रम लेकर आई थी डॉक्टर सुमन रेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ध्वनि मारू चैनल है। 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: ये था कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम था जीरो। आवाजें थी अभय जोधपुरकर की और साथियों की।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप

0: सुमधी चौहान कुणाल और साथियों को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था ये साली जिंदगी।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: सुनिधि चौहान और वाजिद खान को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जिंदगी तेरे नाम।
1: एक जमाने से कहानी

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सोनू निगम को सुनते हैं, फिल्म का नाम है वास्तव।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गदर 2 से। आवाजें हैं विशाल मिश्रा, नीति मोहन, शौल अख्तर और साथियों की। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म गदर 2 का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत। फिल्म का नाम है सिम्बा, स्वर है राहत फतेह अली खान का।

गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारो चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार ठीक 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद। आज का ही कार्यक्रम लेकर आए हैं श्री मालकोश आचार्य।

नमस्कार आकाशवाणी बीकानेर के डेवलपमेंट चैनल पर आप सभी ये कार्यक्रम आपकी पसंद। शुद्ध कहते हैं ना कि रिश्ते खून से नहीं एहसासों से बनते हैं। बिल्कुल एहसासों से। कुछ लोग मिलकर बिछड़ जाते हैं और कुछ बिना मिले ही उम्र भर अपने साथ हो जाते हैं। तो हमारे लिए आप सभी श्रोता ही ऐसे ही आत्मीय मित्र हैं और आपके स्नेह से भरे खत हमारे जो कहते ना कि जान है, आपकी फरमाइश है और आपकी

शुभ संदेश हर दिन हमारे दिल तक पहुंचते हैं और आज है मित्रता दिवस, तो इस अवसर पर हम अपने उन सभी श्रोता का मित्रों का हृदय से अभिनंदन करते हैं जिन्होंने वर्षों से इस रेडियो परिवार को अपना प्यार और विश्वास से सींचा है। तो शुरू हम कर चुके इस मधुर भावना के साथ कार्यक्रम का आगाज कर चुके हैं। पहला गीत आपको सुनवाया है हमने, शुरू कर चुके हैं मैंने प्यार किया का, ये सदाबहार गीत है आया मौसम दोस्ती का एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के स्वर में। राम लक्ष्मण का है बेहतरीन संगीत इसमें और इस बेहतरीन गीत को सुनने के लिए हमारे पास देखिए कहां कहां से खत आया है। शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, सुजैन आजम खींची, अकमल हुसैन, अमजद अली, अमर सिंह पुरा से बीकानेर से ही मोहम्मद अफजल, मुमताज अली, सिकंदर अली, शबनम बानो और मोहम्मद कैफ और उनका परिवार। तो सुनते हैं आया मौसम दोस्ती का।

जो तुम बात करें अगर दोस्ती की, तो दोस्ती के फिल्मी गीतों की, तो एक ऐसा गीत है जिसके बिना ये कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता, और बेहतरीन संगीत के साथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्ती की बात है, बेहतरीन संगीत है, बेहतरीन इसे लिखा है अनजान ने, बेहतरीन संगीत है राजेश रोशन का और आवाज है किशोर कुमार की। तो बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, ये यारना का, यारों का यार गीत है। और इस बेहतरीन गीत को सुनने के लिए हमारे पास इतनी प्यारी फरमाइश आई है जेएनवी कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही, पवनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा प्रेमी, गीता रानी, राज मनोहर लाल, बी एल सोनगरा, डॉक्टर सोनू दायमा, सरोज सत्यनारायण दायमा, अखिल मूलचंद सोनगरा, सुनीता प्रथमराज, हंसराज, कृष्ण मुकेश सोनगरा, सावित्री मिस्त्री, सीताराम पवार, दीफू पवार, आशीष और जतिन सोनगरा। तो सुनते हैं आपका ये कालजयी गीत फिल्म याराना से, कि तेरे जैसा यार कहाँ और कहाँ ऐसा याराना। वास्तव में ऐसे गीत कहाँ और ऐसे कहाँ ये म्यूजिक अब मिलता है।

दोस्ती अगर है आपके जीवन में तो आप निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली हैं। खून के रिश्तों से ऊपर होती है जब अगर सच्ची दोस्ती हो, और ऐसे दोस्त यार हमारे ज़िंदगी में रहे, उनके दूर रहने पे भी वो हमारे पास हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी को महका सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि पास और दूर की बात छोड़ो, उनकी अगर खबर भी मिल जाए अपने यार की तो भी क्या कहने। तो ऐसा एक प्यारा सा गीत दोस्तों के नाम करने जा रहे हूँ, यार की खबर मिल गई, और उस खबर को सुनना चाहते हैं फरमाइश भेजकर वल्लभ गार्डन बीकानेर से एलसी शहजादा, कमला देवी पवार, राजकुमार, गीता रानी, मयंक, अनन्या, सत्यनारायण पवार, लालचंद पवार, ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे और उनका परिवार। यही गीत सुनना चाहते हैं सुराना मोहल्ला बीकानेर से कांतिलाल सुराना, शरद सुराना, मयंक सुराना, विमल अभानी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य, रोशन अली मिस्त्री। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत जिसमें एक खबर मात्र से यार के जो हमारे दिन बन जाता है।

दोस्तों दोस्ती के साथ, क्योंकि आज आप सभी एक प्यारे से दोस्त की तरह हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको श्रोताओं के साथ दोस्त भी कह सकता हूँ ना। तो आपकी दोस्ती, आपकी यारी, ये हमें जान से भी प्यारी है, ये बात हम सभी जानते हैं। और आपके इसी याराने से हमारा ये कारवां आगे बढ़ रहा है और पहुंचा है कैसे गीत के साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और आवाज है आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की। ये गीत है फिल्म सुहाग का और इस बेहतरीन नगमे को सुनना चाहते हैं लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, अनवर अली पंजाबगीर, मुमताज सोनू, टीना वाहिदा, साहिदा ताहिरा, एम ए पवार, खातून बेगम। यही गीत सुनना चाहते हैं चुनगुरों का चौक बीकानेर से शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज बानो, साजिद मुगल, उनका परिवार। विनोद अवस्थी बीकानेर से हरीश कुमार सियोता और उनका परिवार भी चाहते हैं कि उन्हें ये गीत सुनवाया जाए कि ए यार सुन, तेरी यारी जो है वो हमें जान से भी प्यारी है।

दोस्तों की महफिल में फिल्म दोस्ताना का किशोर कुमार और मोहम्मद रफी का एक कालजे गीत आपने सुना, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की वही मशहूर जोड़ी में से रचा था। और इस प्यारे से गीत को सुनना चाहते थे चौतीना कुंवर बीकानेर से, राजेंद्र पांडे और उनके परिवारजन, रानी बाजार बीकानेर से रानी झाम बिट्टू झाम। यही गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी कोहरी मोहल्ला बीकानेर से इकरामुद्दीन कोहरी और उनके साथी, और बीकानेर से रमजान अली लखारा और उनके साथी। इसी गीत को सुनने के लिए हमें खत लिखकर भेजे गए कि दोस्ताना का गीत तो सुनना ही है। तो जब दोस्ताना का गीत आ गया है, बने चाहे दुश्मन वाला, तो फिर एक और दोस्ताना का गीत हम सुनते हैं, नहीं वाली जाने क्यों दिल जानता है। श्रोताओं, इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री और उनके परिवारजन। यही गीत सुनना चाहते हैं हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां, गांव तापू जोधपुर से बिश्ना राम बालियान और उनके परिवारजन, और रतलाई झालावाड़ से प्रभुलाल मनोहर भाई और बागड़ी परिवार। यही गीत सुनना चाहते हैं जाने क्यों दिल जानता है कि तू है तो आई विल बी ऑल राइट। तो हम जानते हैं कि दोस्ती एक ऐसा अनुपम उपहार है जो मिल जाए तो सब कुछ ऑल राइट हो जाता है। दोस्ती का रंग जब दिलों में उतरता है तो हर रिश्ता और भी खूबसूरत लगने लगता है। मित्रता केवल साथ निभाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ लेने की का एहसास भी है, क्योंकि दिल जानता है ना कि शायद इसी भावना को शब्द और संगीत में पिरो रहा है ये गीत। तो अपने श्रोता मित्रों की फरमाइश पर सुनते हैं दोस्ताना का मधुर गीत विशाल ददलानी की सुरीली आवाज में, जाने क्यों दिल जानता है।

बहुत से ऐसे होते हैं जो मुसीबत पड़ने पर कहीं भी ऐसे में पहुंच जाते हैं जहां उनकी उम्मीद भी ना हो कि वो आ सकते हैं, और वो आते हैं तो एकदम से हाईजैक कर लेते हैं पूरे सीन को, मतलब कि खलाओं में उठा कर ले जाए और हमें बचा ले सारी प्रॉब्लम से। ऐसे होते हैं दोस्त। दोस्तों को सलाम। और दोस्त और प्यार के बीच एक पतली सी रेखा होती है, कभी इधर और कभी उधर हो जाते हैं, तो ये भी एक प्यार का एक स्वरूप है जिसे हम दोस्ती कहते हैं। इसी प्यारे सी दोस्ती के नाम एक और गीत करते हैं। ये गीत है फिल्म युवराज का, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और एआर रहमान के स्वर में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने, और बेहतरीन नगमे को सुनना चाहते हैं श्री कोलायत से फूसराज सोनी, परिवारजन दौलतपुरा, श्री गंगानगर से शोलाल, शांतिलाल, मंजू मोहित, हेमंत बेनीवाल। इस गीत को सुनना चाहते हैं सादुल शहर से ओम प्रकाश, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, और देशमुख बीकानेर से गोपाल राम, प्रकाश दान और भूमदान। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, तू ही तो मेरी दोस्त है।

दोस्ती के नाम आज का ये कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि ऐसी फरमाइशें हमने चुन ली है, ऐसे ऐसे खत ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं जिसमें कहीं ना कहीं दोस्ती का पैगाम, और आप हमारे दोस्त हैं, हमारे श्रोता हैं और हमेशा से हमारे दिलों से जुड़े हैं, तो आपके नाम तो ये गीत होने ही चाहिए। ये गीत जो अगला हम सुनवाने जा रहे हैं, ये जो लड़कपन, जो दोस्ती, जो कॉलेज डेज, उनकी यादों को आपको ताज़ा करवा देगी। ये फिल्म है मैंने दिल तुझको दिया, सोनू निगम, अलका याग्निक, अभिजीत के स्वर हैं इस गीत में और दबू मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया है। और इस गीत को दोस्तों के नाम करने के लिए हमें सुनने की फरमाइशें भेजी है कोलपुर उदयपुर से गोपाल कांता ननवाया, गोपाल तिलक सक्षम तांबोली, गिरिराज सोनी, घनश्याम और जगदीश मोदी, गोमगढ़ श्रीकरण

दोस्ती का पैगाम। और आप हमारे दोस्त हैं, हमारे श्रोता हैं और हमेशा से हमारे दिलों से जुड़े हैं, तो आपके नाम तो ये गीत होने ही चाहिए। ये गीत जो अगला हम सुनवाने जा रहे हैं, ये जो लड़कपन, जो दोस्ती, जो कॉलेज डेज, उनकी यादों को आपको ताज़ा करवा देगी। ये फिल्म है मैंने दिल तुझको दिया। सोनू निगम, अलका याग्निक, अभिजीत के स्वर हैं इस गीत में और दबू मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया है। और इस गीत को दोस्तों के नाम करने के लिए हमें सुनने की फरमाइशें भेजी हैं कोलपुर उदयपुर से गोपाल कांता ननवाया, गोपाल तिलक सक्षम तांबोली, गिरिराज सोनी, घनश्याम और जगदीश मोदी, गोविंदगढ़ श्रीकरणपुर से राजू खुशदिल, उर्मिला गुड्डू, जीनू, मनु, आदित्य भूमि, राखी, अमृत, शिव सेठी, स्माइल टुटेजा और अरैया वाला हनुमानगढ़ से कालू खान दमामी, उनका परिवार भी इसी गीत को सुनना चाहता है। तो सुनते हैं, अपने यारों में एक ऐसा यार है।

और कार्यक्रम के आखिर में वो गीत जिसके बिना कोई भी दोस्ती का कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। और आप सही समझ रहे हैं, फिल्म शोले का ये कालजयी गीत सुनना चाहते हैं। इसे भटिंडा पंजाब से जगमान सिंह डागला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा डागला उनका परिवार, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही मेहराज जहां और रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुण वर्मा। तो सुनते हैं आपकी पसंद से ये दोस्ती के नाम आखिरी और सबसे उम्दा गीत।

0: तो श्रोताओं, मित्रता शब्द महात्मा का एक मधुर संगीत है। जीवन की तपती राहों में शीतल छांव सा एक गीत है। धन लाभ यश सब क्षण भंगुर है इस संसार में, सच्चा मित्र ही ईश्वर का दिया सबसे अनमोल उपहार है। हम जानते हैं इन बातों को और इन संदेश और शुभकामनाओं के साथ आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NDEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार उदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति कल कटक में जगत

0: दक्षिण ओडिशा में तप्तपानी के पास मां कांधनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बिस्तरी नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरल में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में सोने पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामार्ग चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 12:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, सबसे पहले बात करें हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेगा कार्यक्रम रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जबकि रात्रि 10 से 11 तक प्रस्तुत होगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम 9:30 पर सुनना न भूलिएगा, रात्रि 10 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। कार्यक्रम शख्सियत हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात्रि 8, जबकि जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:42 का, जबकि अब से कुछ ही पलों में 12:10 पर आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम सिंधी कार्यक्रम।

बताऊं, सिंधी कार्यक्रम यानी कि 12:10 पर आप जब सुनेंगे, उसके ठीक बाद 12:40 पर आप सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इसी सभी में फिल्म संगीत के कार्यक्रम और भी होंगे। दोपहर 2:30 पर भी आप फिल्म संगीत का लुत्फ ले पाएंगे। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत हमेशा की तरह दोपहर 1:05 पर, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे सामाजिक समरसता निर्माण में बुजुर्गों का योगदान। दोस्ती सामाजिकता की दिशा में पहला कदम है। मित्रता दिवस पर विशेष प्रस्तुति होगी, चर्चा होगी। आजादी विशेष आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जयंती पर पंडित रविशंकर और शुक्ल जयंती की भी बात होगी। और साथ में आपको सुनवाएंगे एक वार्ता, महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व। वार्ताकार है डॉक्टर सोनिया करोला। तो सुनेंगे रसोई और ब्यूटी से टिप्स तो होंगे ही। कार्यक्रम महिला जगत में दोपहर 1:05 पर।

सांध्यकालीन सभा में युववाणी हमेशा की तरह दोपहर संध्या 5:05 पर आज की बात का विशेष विषय रहेगा खेल और स्वस्थ जीवन शैली। मित्रता दिवस पर लघु जानकारी तो होगी क्योंकि ये है युववाणी कार्यक्रम संध्या 5:05 पर। सांध्यकालीन सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 6:05 पर और उसके बाद 9:15 पर भी फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। ग्रामीण जगत हमेशा की तरह ग्रामीण भाई बहन सुनेंगे संध्या 7:00 जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे अगस्त माह के कृषि बागवानी अगस्त माह के कृषि बागवानी व पशुपालन संबंधित कार्य, अतिवृष्टि से बाढ़ के समय प्रबंधन पशु प्रबंधन पर भी चर्चा होगी। बीबी जी राम जी के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर भी होगी बात। कार्यक्रम ग्रामीण जगत में लेकर आएंगे बजरंग सारस्वत और मुक्ता जैन। रात्रि 8:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम आपके लिए और रात्रि 9:15 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे ही। हम आपको फिर बता दें कि रात्रि 9:30 पर होगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। तो ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: मालिक डे त शुक्र कर न डे त सब्र कर यार पंहिंजी ज़िंदगीअ में हिननि ॿिनि ॻाल्हियुनि ते अमल कर अहिड़ी शहाणी ऐं लासानी सिंधी क़ौम जे लाइ सिंधी प्रोग्राम आर्तवार मंगल ऐं विस्पत जे ॾींहुं आकाशवाणी जयपुर अजमेर जे आमिर चैनल तां ॿुधंदा रहो सिंधी प्रोग्राम
1: सभिनी ॿुधंदड़नि खे प्रिया नंदवानी जो प्यार भरियो नमस्कार सिंधी कार्यक्रम में अव्हां जो स्वागत आहे साथियो अॼु आहे अगस्त महीने जो पहिरियों आर्तवार ऐं पहिरियों आर्तवार मुक़ररु हूंदो आहे नौजवाननि जे लाइ ऐं प्रोग्राम आहे नई रोशनी नवां वीचार जंहिंमें अॼु असां ॿुधंदासीं उभरंदड़ लेखिका मोनिका फुलवानी खे ऐं गॾोगॾु ॿुधंदासीं गीत संगीत हिन सां गॾु ई साथियो अगस्त जे पहिरें आर्तवार खे दोस्तीअ जो ॾींहुं करे मल्हाईंदा आहियूं दोस्तीअ जो ॾींहुं दोस्तनि जे विच में विश्वास प्रेम ऐं सहयोग जे बंधन खे मान ॾियण लाइ मल्हायो वेंदो आहे दोस्तनि जो असांजे जीवन में घणो मायनो आहे दोस्ती सिर्फ़ साथ निभाइण जो नालो न आहे पर ॾुख सुख में हिकु ॿिए खे साथ ॾियण जो भाव आहे श्री कृष्ण ऐं सुदामे जी दोस्ती असांखे सेखारंदी आहे कि सचा रिश्ता धन पद ऐं परिस्थितियुनि सां न पर प्रेम विश्वास सम्मान ऐं समर्पण सां ठहंदा आहिनि ऐं साथियो सिंधी कार्यक्रम खे अॻियां वधाईंदे अचो ॿुधूं मोहम्मद रफ़ी जे आवाज़ में हीउ गीत

सचपत साथियों आयो लाल झूलेलाल जेको चवंदो झूलेलाल तेंजा थींदा बेड़ा पार तवा हिंर मोहम्मद रफी जी आवाज में ही सुहणो गीत बुधी रहा हुआ ए लगे ही न पियो कि मोहम्मद रफी नॉन सिंधी होंदे भी एडो सुठे नमूने हन गीत के गायो न सिर्फ ही गीत मोहम्मद रफी गातो आए पर एड़ा घणे गीत मोहम्मद रफी गाता है वक्त वक्त ते असा जे आकाशवाणी रेडियो ता असा तवा के गीत बुधाइंदा रहंदा आयो ए हाणे नई रोशनी नवा विचार कार्यक्रम के असा अक्तेता वधायो ए बुधू ता ही भेट वार्ता नई रोशनी नवा विचार कार्यक्रम में अज असा सा गड असा जे आकाशवाणी जे स्टूडियो में आहे उभरंदड़ लेखिका मोनिका फुलवानी के

0: साहित्य अकादमी दिल्ली पारां साल 2023 में सिंधी भाषा युवा पुरस्कार मिलियल आहे। मोनिका, तव्हां जो असांजे आकाशवाणी जे स्टूडियो में घणो घणो स्वागत आहे। मोनिका, असां पहिरीं ई चयो कि तव्हां युवा लेखिका आहियो, त मां सभिनि खां पहिरीं तव्हां खां इहो ई पुछणु चाहींदसि कि तव्हां जो लेखन में रुझान कीअं थियो।
1: जी बिल्कुल, जीअं त मां 12 दर्जा सिंधी माध्यम सां पढ़ाई कई आहे, त असांखे 11 दर्जे में लोथल घुमण लाइ वञिणो हो अहमदाबाद जे भरिसां। उतां असां मोहन जे दड़े, असांजी लिपि, असांजो सॼी सभ्यता ऐं संस्कृतीअ बाबति सॼी ॼाण हासिल कईसीं। मूंसां गॾु मुंहिंजा 15 ॿिया बि जेके क्लासमेट हुया उहे बि हलिया हुया, ऐं असां सां गॾु वरिष्ठ लेखक डॉक्टर जेठो लालवाणी, उन्हनि सां गॾु जगदीश शहदादपुरी ऐं असांजे स्कूल जा प्रिंसिपल ऐं घणाई टीचर्स बि हलिया हुया। असां हिकु बस करे उते वियासीं ऐं उते ईअं सम्झो त हिकिड़ी मिनी पिकनिक हुई, ऐं उते सॼी ॼाण हासिल करे असांखे ख़बर न हुई त असां खां उते उतां जो जेको बि असां ॾिठो आहे हाल अहिवाल बाबति हिकिड़ो मज़मून जी चटाभेटी थींदी। असां उतां वापसि आयासीं, असां हिकिड़ी चटाभेटीअ में भाग वरितोसीं जंहिं में मूंखे टियों नंबर मिलियो, ऐं मां उते जेको बि ॾिठो हाल अहिवाल सभु हुन पेक पने ते ओढ़ियो ऐं पेश कयो, जंहिं में मां टियों नंबर आयमि। त मूंखे उतां खां ईअं लॻो कि मां लिखण में थोरो इंट्रस्टेड आहियां, छो त नंढे हूंदे खां पढ़ियो हुयोसीं सभिनी अलॻि अलॻि तरीक़नि जे लेखकनि खे, त ईअं लॻो कि कुझु न कुझु लिखां। त मां पंहिंजी हिकिड़ी कहाणी लिखी।
0: अच्छा।
1: कहाणी लिखी मां डॉक्टर जेठो लालवाणी, उन्हनि सां कॉन्टेक्ट कयो ऐं उन्हनि खे उहा ॾेखारी। उन्हनि खे मुंहिंजी कहाणीअ जो जेको विषय हुयो उहो तमामु घणो वणियो, पर उन में उन्हनि चयो कि कुझु फेरबदल करणु खपे, ऐं उन्हनि जो उहो मां ॿुधो चवण ऐं उन्हनि जे हिसाब सां मां उहा थोरी बदली पंहिंजी कहाणी ऐं सभिनि जे अॻियां पेश कई।
0: त इन नमूने तव्हां पंहिंजे लेखन जी तरफ़ अॻिते वधिया ऐं उतां ई तव्हांजो इहो रुझान।
1: जी बिल्कुलु,
0: ॾाढो सुठो तव्हां ॿुधायो कि वॾा जॾहिं असांखे कुझु सेखारींदा आहिनि ऐं असां उन्हनि खे मञंदा आहियूं, तॾहिं ई त असां उन मुक़ाम ताईं पहुचंदा आहियूं जिते असांखे पहुचणो हूंदो आहे। ऐं तव्हां बि पंहिंजे वॾनि जो चयो मञियो ऐं पंहिंजी पहिरीं कहाणीअ में जेका बि उन्हनि चई गुंजाइश बदिलाउ करण जी उहा तव्हां कई ऐं उन्हनि खे पोइ उहा सुठी लॻी। ॾाढो सुठो लॻो ऐं असांजे युवा साथियुनि खे बि ज़रूरु इन ॻाल्हि मां सिखण लाइ मिलियो कि पंहिंजे वॾनि जो चयो असां ज़रूरु मञूं।
1: बिल्कुलु।
0: त मोनिका जी, ही त थी वियो कि तव्हांजी लेखनीअ जो रुझान थियो, उन खां पोइ तव्हां कदम दर कदम कीअं वधंदा विया ऐं इन सां गॾु ई तव्हां छा छा ॿियो लिखियो उहो बि असांखे ॿुधायो।
1: हा, इन सां गॾु मुंहिंजी पढ़ाई त ज़ारी हुई ऐं जीअं जीअं असां सिंधी स्कूलनि में अलॻि अलॻि चटाभेटियूं थींदियूं हुयूं त मां हुन में भाग वठंदी हुयमि ऐं ईअं ई अॻियां वधियमि। ऐं डॉक्टर जेठो लालवाणी मूंखे घणनि सेमिनार में बि अचण लाइ मौक़ो ॾिनो, वर्कशॉप अटेंड कया, उते अलॻि अलॻि मां लेखकनि सां मिलियमि जीअं वासुदेव मोई जी, प्रेम प्रकाश जी, दादा हूंदराज बलवानी, इन्हनि सभिनी सां मुलाक़ात कई। उन्हनि जो थोरो घणो जेको उन्हनि मूंखे समुझायो मां समुझो ऐं उन खां पोइ मां उन्हनि जो गाइडेंस वठी अॻियां वधियमि। उन खां पोइ मां पहिरों लिखण मां कहाणी ई शुरूआत कई हुई जंहिं में मुंहिंजा ॿ किताब बि शाय थियल आहिनि।
0: अच्छा।
1: ऐं उन खां पोइ मां थोरो मज़मूननि में, मज़मूननि खां पोइ थोरो घणो कविताउनि में ऐं हिकिड़ी हाणे मां ग़ज़ल बि लिखी आहे जेको मां ख़ाली कोशिशि कई आहे, जेका अॻियां लिखण जी मां ज़रूरु कोशिशि अॻियां बि कंदमि।
0: बिल्कुलु सुठो तव्हां ॿुधायो कि मज़मून बि तव्हां लिखिया आहिनि ऐं लेख बि लिखिया आहिनि ऐं कहाणियूं त तव्हां लिखंदा ई आहियो ऐं गज़ल में बि पंहिंजी कलम खे आज़माइण शुरू कयो अथव।
1: ही
0: ॾाढो सुठो लॻो ॿुधी करे कि हिकु युवा लेखिका जे मन में पंहिंजी लेखनीअ लाइ केतिरी सुजाॻी आहे ऐं असां सभिनि खे घणेई कुझु हिन मां सिखण लाइ मिले थो ऐं मुंहिंजे युवा श्रोता आहिनि जेके अॼु जा उन्हनि खे बि सिखण लाइ मिलंदो। त मोनिका जी, तव्हां चयो कि मां कहाणियूं वधीक लिखंदी आहियां, तव्हां असांखे का पंहिंजी लिखियल नई रचना कहाणी स्टूडियो में ॿुधाइणु चाहींदा?
1: जी, मां हिकिड़ी कहाणी जंहिंजो उनवान आहे मटियल फ़ैसिलो। मनीषा जी शादीअ खे लॻभॻि 8 महीना थिया आहिनि, पर उन जे मोह में उहा खिल, उहा ख़ुशी विरले ॾिसण लाइ मिलंदी आहे ऐं अॼु त हूअ सभु सामान पैक करे पंहिंजे माउ पीउ जे घर हली आई आहे। इन पुठियां छा कारण आहे इहो पुछण ते हूअ बिल्कुलु चुप आहे, कंहिंखे कुझु बि जवाब ॾे अहिड़ी हालति में कोन्हे। ईअं ई महीनो गुज़री वियो, हाणे त पाड़े वारा बि खेसि ताना हरण में पुठियां कोन आहिनि।

जीअं तीअं हुन पाण खे संभालियो ऐं पंहिंजी जूनी नौकरीअ ते वरी खां वञणु शुरू कयई। बसि हाणे हुन जी ज़िंदगी घर खां ऑफिस ऐं ऑफिस खां घर ताईं महदूद आहे। अॼु बि खेसि हुन जी माउ हुन खे किटी पार्टीअ ते हलण लाइ चयो, पर हुन पंहिंजो कंधु न मिलो ॾियो। उन ते वरी संदसि माउ पुछियो, आख़िर तुंहिंजे ईअं चुप रहण जो असली कारण छा आहे? हूअ थोरी देरि चुप रही ऐं पोइ चयो त मूंखे कुनाल सां कोन रहणो आहे ऐं मूंखे तलाक खपे। जो कुनाल शारीरिक संबंध रखण में नाकामयाब आहे ऐं मां उन सां ख़ुशि कोन आहियां। इहो ॿुधी मानस खेसि घणो ई समुझायो, पर मनीषा पंहिंजे माउ जी हिकु बि न ॿुधी ऐं पंहिंजे फ़ैसिले ते अटल हुई। उन जे माउ पीउ खेसि काउंसलिंग लाइ बि वठी विया, पर अञा बि हुन जो फ़ैसिलो बदिली सघे अहिड़ो कोन हो। अॼु हूअ पंहिंजे मोबाइल में ईअं ई स्क्रोलिंग करे रही हुई त स्क्रोलिंग कंदे कंदे संदसि रिचा जे प्रोफाइल ते वञी नज़र पहुती, जंहिं में रिचा पंहिंजे मंगेतर सां फोटू लॻाया हुआ। रिचा मनीषा जे नंढपण जी साहेड़ी आहे। उहे ॿई हिक ॿिए जे बेहद क़रीब हुओ, पर शादीअ बैदि ॼण को रिश्तो थोरो फिको थी वियो हो। उन खे यादि आयो त सुभाणे रिचा जी शादी आहे ऐं शादीअ जो कार्ड बि घर आयो आहे। हुन शादीअ में वञण जो इरादो कयो। हूअ बि हूअ पकी साहेड़ीअ खे नाराज़ कोन पई करणु चाहे। शादीअ जे हॉल में पहुचंदे गेट वटि सिद्धार्थ टकराइजो। सिद्धार्थ रिचा जो भाउ आहे। मनीषा, रिचा ऐं सिद्धार्थ नंढपण में घणियूं ई रांदियूं कंदा हुआ। घर घर खेॾंदे वक़्तु त सिद्धार्थ घोटु ठहंदो हो ऐं हमेशा मनीषा खे पंहिंजी ज़ाल ठाहींदो हो। ॿिन्हिनि जे विच में नंढपण खां ई हिकु अजीब छिकाव हो। रांदि खेॾंदे खेॾंदे कीअं वक़्तु गुज़री वेंदो हो खेनि ख़बर ई कोन पवंदी हुअनि। ईअं ई साल गुज़री विया ऐं ॿार वॾा थी पंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगीअ में मशगूल थी विया। सिद्धार्थ अॻियां जी पढ़ाई करण लाइ अमेरिका हलियो वियो ऐं पुठियां मनीषा जी कुनाल सां शादी थी वई। मनीषा पंहिंजे माउ पीउ जे घर वापसि आई। उन खां पोइ कुझु ॾींहनि बैदि जंहिं घिटीअ मां लंघे रही हुई, सिद्धार्थ उते दोस्तनि सां क्रिकेट खेॾी रहियो हो। मनीषा खे ॾिसंदे ई हू आउट थी वियो ऐं सभु दोस्त खिलण लॻा। सिद्धार्थ खे मनीषा जे ईअं कुनाल खां अलॻि थी माउ पीउ जे घर अचण बाबति सभु ॼाण हुई, पर हू हुन जो दुख वधाइण कोन पियो चाहे। ख़ामोशीअ खे टोड़ण लाइ उहो मनीषा सां कुझु ॻाल्हाए रहियो हो त रिचा ऐं हुन जो घोटु हॉल में अची विया ऐं सभु घोटु कुंवार खे ॾिसण लाइ हलिया विया। मनीषा बि अंदरि वई ऐं सिद्धार्थ बि कंहिं कम सबबि उतां हलियो वियो। राति जो विदाईअ बैदि मनीषा हॉल जे गार्डन में चहल कदमी करे रही हुई त सिद्धार्थ अचानक उतां लंघियो ऐं मनीषा खे ॾिसंदे उन जा कदम उते ई रुकजी विया। मनीषा बि खेसि ॾिसी मुस्कुराइण लॻी ऐं ॿई हिक ई टेबल ते वेठा। ॻाल्हाइण जो सिलसिलो सिद्धार्थ ई अॻियां वधायो ऐं मज़ाक मज़ाक में चयो त मनीषा, छा थियो, निंड कोन थी अचई छा? लोली ॻायां मां? मनीषा थोरो मुस्कुराई ऐं चयई त न, बसि ईअं ई निंड कोन पई अचे। हुन अंदरि ई अंदरि में सोचियो त छा चवां, मूंखे अकेलाइप खां डपु लॻंदो आहे, इन करे मां रूम में कोन थी वञां। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी हो। सिद्धार्थ ऐं मनीषा ॿई वरी हिकु दफ़ो झूनियुनि यादियुनि में गुम थी विया। ॻाल्हियुनि ॻाल्हियुनि में सिद्धार्थ मनीषा खां पंहिंजे ईअं घर वापसि अचण जो कारण पुछियो। पहिरियों त हूअ थोरी हिबक पई महसूसु करे जवाब ॾियण में, पर पोइ उन ॿुधाईंदे चयो त कुनाल शारीरिक संबंध रखण में नाकामयाब हो ऐं सिद्धार्थ हुन ते चयो त तूं ईअं ई हुन खे छॾे उतां हली आईअ। हा, ॿियो छा कयां, हू मुंहिंजो ध्यानु बि कोन रखंदो हो, मुंहिंजो वज़न बि घटिजंदो पियो वञे, पर उन एतिरो बि पुछणु ज़रूरी कोन समझो त मां रोटी बि खाईंदी आहियां की न। मूंखे बि ईअं लॻो त हाणे मूंखे हिन खे छॾे आज़ादु थियणु खपे। मां हिकु सुवालु पुछां मनीषा, सिद्धार्थ मनीषा जो हथु पकड़ींदे चयो। हा, पुछ। छा कुनाल शादीअ खां पोइ ईअं ई तोसां व्यवहार कंदो हो या इहो सभु कुझु वक़्तु अॻु थियो हो? न, पहिरियों त हू मूंखे बेहद ख़ुशि रखंदो हो, बसि कुझु वक़्तु पहिरियों जी ॻाल्हि आहे जो हुन जो वहिंवार मूं तरफ़ बदिलजी वियो। राति राति जो देर सां ईंदो हो, रोटी बि जहिड़ी तहिड़ी खाईंदो हो, मूं सां ॻाल्हाइण बि मुनासिब न समझंदो हो, मां बि कंटारजी वई हुयमि। अॻियां मनीषा कुझु चए उन खां पहिरियों ई सिद्धार्थ विच में कटी

0: ਦੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਉਨਹਾਂ ਇਨ ਸਭ ਜੋ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਨ ਸਮਝੋ ਡਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਮੇ 100 ਮਾਂ 50% ਮਰਦ ਇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਜੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਿਮ ਕਿਚਰੋ ਖਾਣ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤਾਈਂ ਵਹੀ ਕਰੇ ਆਫਿਸ ਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਹੋ ਸਭ ਮਰਦ ਮੇ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਕੇ ਘਟਾ ਛਦੇ ਥੋ ਇਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੂ ਤੋਸਾਂ ਪਿਆਰ ਕੋਨ ਕੰਦੋ ਹੋ उनके तू समझाई हां साण गड वेई तकलीफों पूछी हां उनहा एड़े व्यवहार जो कारण पूछी हां तो शायद तलाक ताई नौबत कोन अचे हां पर सिद्धार्थ तो यो सब किए तू जानी शोजो मुंजा घणाई दोस्त इन वक्त खां गुजरी रहा हैं उनन जो बिजालो उनन के इनन कारण सबब छडे हली वई हां दिस मनीषा मां हते आयो तो तोखे आई लव यू चवणा होस पर हाणे मां चाया थो तो तू कुनाल वट वापस वन ऐ उनके बी मौको दे उनके समझ उनजी मजबूरी के ताकत बनाए ऐ उनजो साथ दे हु कुछ वक्त अंदर वापस पहरे वांगर बन जीवंदो एतरो चई सिद्धार्थ उता हलो वयो मनीषा एक दफो वरी पंजे फोन में स्क्रोलिंग करण लगी पर हने दफे हुआ कुनाल जो नंबर गोली रही हुई
1: तमाम बेहतरीन कहानी मोनिका तमा लिखिया है ऐ जेका मां सदी कहानी बुधी अजी जो जिको माहौल आए वो सजो बयान आए हिन कहानी में
0: जी
1: तो ये कहानी ताके लिखन जो प्रेरणा किथा मिली
0: बिल्कुल अजकल जितियो शादी नथु थन उनखा वदी का ये तो दिसण लाए मिले के तलाक ता थी उनन त उनखे ऑब्जर्व करण के भी की है शादी करे तो सब कुछ थे उनते मा थोड़ो घणो बोलियो पढ़ियो थोड़ो थोड़ो केजी पोस्ट डिटी तो उन मा ये लगो के भी कुछ लिखण खपे एकड़ो यो नओ विषय पे थी साबित थी सगनो आ युवा जागरूक थन ए पेनी शादी एक दफो वरी मौको जन इन करे मा पेजी ये कहानी लिखी
1: मोनिका तांजे इन जवाब सा मखे एकड़ो भी सवाल अचे तो की जेका पण लेखनी कंदा आयो तो उनमें रिसर्च करण तमाम जरूरी
0: हां बिल्कुल सही पेचो रिसर्च न कनासी त सा खबर न पोली पर तो पसंदगी ना पसंदगी जी जे पाठक के छातो वणे छा न तो वणे आ अगर सा नवा नवा विषय न दिनासी त ये लगनो पाठक उवे उवे जूना विषय ते कहानी नाटक मजमून पड़ी पड़ी जन कंटाल जी वेन तो उनके भी कुछ नओ डजे त जिए वो रुचि रखन
1: सही गल है कि नयोपन ही त डजी जरूरत आ वक्त जे अनुसार पाण हलंदासी त असा जो जेको लेखनी में सुधार आए वो हां वो अक्ते वधंदो वेंदो त ही जेके भी ता लेखनी कंदा आयो इनले तमा घणी बार सेमिनार्स भी अटेंड कंदा आयो एकेडमीज भी आए असा जो उते भी ता वेंदा आयो त उते छा-छा सिखण ला मिलंदो आहे वो सेमिनार्स अटेंड करण छो जरूरी आहे उहे भी असां जे अॼु जे ॿुधंदड़नि खे तमामु
0: जी मां त ईअं चवण चाहींदमि त अदबी क्लास जिते महीने महीने लॻनि था उते ज़रूरु वञिजे बहिरो वठिजे ऐं अगरि किथां तव्हां वटि इनविटेशन आयो आहे वर्कशॉप जो सेमिनार जो उते वञो उते अलॻि अलॻि कहाणीकारनि जूं अलॻि अलॻि शाइरनि जूं कविताऊं ॿुधण लाइ तव्हांखे मिलंदियूं तव्हांखे ख़बर पवंदी की तव्हां किथे किथे ग़लति आहियो ऐं तव्हांखे छा छा फेरबदल करणु खपे पंहिंजी कहाणियुनि में कविता ऐं उन्हनि खां मेन पॉइंट त इहा तव्हांखे कुझु न कुझु सिखण जरूर मिलंदो त असांखे छा छा लिखणु खपे कीअं नवा नवा विषय असांखे पंहिंजी सिंधी साहित्य में ॾियणु खपनि
1: मोनिका जी मां तव्हां खां इहो बि पुछणु चाहींदसि की अहिड़ो कुझु तव्हां सेमिनार्स में सिखियो हुजे का हिकड़ी अहिड़ी टिप असांजे अॼु ॿुधंदड़नि खे तव्हां ॾींदा
0: हा जीअं त मां ॿुधाइण चाहींदमि की कहाणियूं जीअं मां लिखंदी आहियां त मां जेके बि कहाणी लिखियूं उन्हनि में मां एंड सॼी ॾेई छॾींदी हुयमि की पाठक समझी वञनि की हिन में कहाणीअ में लास्ट में छा थींदो पर उते मूंखे सिखण लाइ मिलियो दादा वासदेव मोई तरफ़ा की काई काई कहाणीअ खे असांखे छॾे ॾियणु खपे अधूरे में जीअं साम्हूं पाठक पाण समझन की अॻियां छा थींदो पंहिंजी इमेजिनेशन करनि जीअं मां अॼु जी कहाणी ॿुधाई त भई हुन में मनीषा स्क्रोलिंग करे नंबर पई ॻोल्हे नंबर ॻोल्हे पई पर हुन नंबर जो हुन छा कयो उन खां पोइ कुनाल सां हुन ॻाल्हाइणु थियो न थियो ऐं उन खां पोइ हुन वटि वापसि मोटी की न मोटी इहो सभु मां पाठकनि जे मथां छॾियो आहे की हू पाण सोचनि ऐं पाण इमेजिन करनि त अॻियां कहाणीअ में छा थींदो
1: ॾिसो भई केतिरो सुठो असांखे सिखण लाइ मिले थो की कहाणी में अॻियां जे लाइ सोचण लाइ पाठक मजबूर थी वञनि की अॻियां कहाणीअ में छा थियो
0: हा जी अगरि असां हुनजो ॿी बि कहाणी इन ई नमूने जे असां खणी आयासीं या हिनखे असां अॻियां वधाइण चाहियूं त पाठक छा बेचैन थियनि की भई हा असां पढ़ूं उनखे पढ़ूं त अॻियां छा थो थिए उन तरफ़ खिचनि शिकाऊ महसूस करनि इन करे असां पाठकनि खे काई काई कहाणी अधूरी छॾे ॾींदी

0: तमामु बहितरीन आहे मोनिका ऐं मां चाहींदसि की जेके अॼु जा असांजा युवा आहिनि उहे तमामु मां प्रेरणा अगरि वठणु चाहिनि त तव्हां उन्हनि खे कीअं मोटिवेट कंदा की उहे सिंधी साहित्य सां वधीक में वधीक जुड़नि?
1: हा मां ॿुधाइणु चाहींदमि त भई पहिरियों त सेमिनार ऐं वर्कशॉपनि में अटेंड करनि, अदबी क्लासनि में वञनि, जीअं अगरि नथा वञी सघनि त हाणे त यूट्यूब ते ऐं पंहिंजे इंस्टाग्राम ते घणा ई आहिनि जेके रील्स वग़ैरह विझनि था, उहे ॿुधनि, कुझु नंढियूं नंढियूं कविताऊं लिखण जी कोशिशि करनि ऐं इनखां पोइ किताबनि तां हाणे जीअं भई ईअं लॻे किताब भोरे ते था महसूसु करनि अगरि पढ़ण में त हाणे त घणा ई अहिड़ा लेखक आहिनि जेके यूट्यूब ते पंहिंजूं कहाणियूं पोस्ट बि था करनि पंहिंजे आवाज़ में, या भई ॿिए कंहिंखे ॾियनि था पंहिंजी कहाणियूं, उहो हुन जे आवाज़ था ॾियनि उनखे कहाणीअ खे या कविता खे गज़लुनि खे, त उनखे ॿुधनि। ॿुधण जो त टाइम भई ॾिसो पाण रस्ते में आहियूं, बस में था वञूं, गाॾीअ ते था वञूं, त ॿुधी त पाण किथे बि सघूं था पिया, उते ॿुधनि ऐं जेतिरो थी सघे पंहिंजे अंदरि उहो सभु कुझु खणनि ऐं साहित्य खे अॻियां वधाइण में मदद करनि।
0: त इन में जेको असांजा घर जा नंढा ॿार आहिनि उन्हनि खे अॻिते कीअं असां वठी अचूं उहो बि थोरे में ॿुधायो।
1: हा उन्हनि खे बि जे अगरि तव्हां वञो था सेमिनार्स में वर्कशॉप में या कोई नाटक ॾिसण वञो था त मां चाहींदमि उन्हनि खे बि उते वठी वञो, पंहिंजी सभ्यता संस्कृतीअ जे साम्हूं ईंदा, ॾिसंदा की असांजी केतिरी सभ्यता संस्कृति शाहूकार आहे, उहो शाहूकार संस्कृतीअ में रहंदा, सभु ॾिसंदा, गीत ॿुधंदा, नाटक ॾिसंदा, जेके पात्र निभाइनि था उन पात्रनि सां जुड़ंदा, पाण खे जुड़ाव महसूसु कंदा, त उहो पंहिंजो पाण ई उन तरफ़ खिचजंदा।
0: मोनिका अॼु तव्हां असांखे जंहिं नमूने सिंधी साहित्य ॾांहुं मुड़ण लाइ हिकिड़ी टेक्निक सेखारी आहे की ज़रूरु पंहिंजी ॿारनि खे बि ऐं पाण खे बि असांखे सिंधी अकेडमी जा जेके बि सेमिनार्स थियनि था या मंथली जेके गोष्ठियूं थियनि थियूं असांखे पाण बि वञणु खपे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि वठी वञणु खपे, त मूंखे ॿ लाइनूं चवण जी दिलि थी करे की हर मुश्किल खे खिल में टारियो, पाण खे पाण खां अॻियां कढो, जेके रखंदा आहिनि जज़्बो जीतण जो उहे हार में बि चमक ॾेखारे छॾींदा
1: आहिनि।
0: त असां चाहींदासीं की हलंदे हलंदे ॿिनि लाइनुनि में असां युवा लेखकनि लाइ असांजी युवा श्रोता लाइ तव्हां छा चवणु चाहींदा?
1: जेके बि मूंखे ॿुधनि तव्हां चवणु चाहींदमि मां त पहिरियों त अदबी क्लास में वञो ऐं उते जेको बि सेखारनि था पिया उहो सिखो, ऐं अगरि तव्हां कुझु ग़लति लिखियो आहे त अगरि कोई तव्हांखे सम्झाए थो की हिनखे हीअं न हीअं लिखणु खपे त उन्हनि जो कॾहिं बि ख़राबु न मञो, उनखे सही पॉज़िटिव वे में खणो, इन तरीक़े सां तव्हां अॻियां बि वधंदा ऐं लिखण में तव्हांखे तरक़ी बि मिलंदी। ऐं जीअं त तव्हां ॼाणो था त असांजी सिंधी भाषा केतिरी शाहूकार आहे, केतिरो वरसो आहे असांजो, पंहिंजी मिठड़ी भाषा खे अॻियां वधाइण में जेतिरो सहकार ॾेई सघो ओतिरो सहकार ॾियो, अॻियां वधो ऐं सिंधी साहित्य खे मालामाल कयो,
0: अॻियां वधो ऐं सिंधी साहित्य खे मालामाल कयो। मोनिका जी तव्हां हिते आया, तव्हांजो घणो धन्यवाद।
2: साथियों हींअर अवां ॿुधी रहिया हुआ मोनिका फुलवानी सां कयल भेट वार्ता। प्रोग्राम हली रहियो आहे नई रोशनी नवा वीचार। हाणे असां गीत बि ॿुधंदासीं पर हिकड़ी ॼाण तव्हांखे ॾियूं त हर साल पहिरीं खां 7 अगस्त ताईं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मल्हायो वेंदो आहे। हिन साल जी थीम आहे जीवन जी सतत शुरूआत जे लाइ स्तनपान कारगार व्यवस्था खे सुदृढ़ बणाइण आहे। ऐं साथियूं हाणे अचो त ॿुधूं घनश्याम वासवाणी जे आवाज़ में हीउ गीतु।

साथियों हींअर अवां घनश्याम वासवाणी ऐं साथियुनि जे आवाज़ में गीत ॿुधी रहिया हुआ ऐं हिन गीत सां गॾु ई अॼु जो असांजो नई रोशनी नवां वीचार प्रोग्राम इते ई पूरो थियो गॾोगॾु सिंधी प्रोग्राम बि पूरो थियो वरी खणी हाज़िर थींदासीं ईंदड़ मंगल ॾींहुं हिकिड़ो ॿियो नओं सिंधी प्रोग्राम ईअं ई ॾींहं जो 12:10 ते तेसीं ताईं प्रिया नंदवानी खे ॾींदा मोकल नमस्कार

प्रतिनिधि कार्यक्रम हम आकाशवाणी बीकानेर के भोलाबाबू चैनल से बोल रहे हैं। रीडिंग है 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:40 हो चुके हैं। विजय प्रसिद्ध फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी।

0: खास और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। गजब सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉन्ग इनपुट पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 Hertz इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में त्रिदेव से हमने की शुरुआत और अब बढ़ते हैं आगे। फिल्म दीवाना का ये गीत सुनते हैं, अपने समय का बेहतरीन और सुपरहिट गीत है। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक के स्वर है, लिखा है इसे समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

हम संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला बाबू चैनल से सुन रहे हैं और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं उदित नारायण को। मुझे शाह कहा है संगीत, जनीस शेरवानी ने इस गीत को बल्कि कहीं गजल को लिखा है और साधना सरगम के साथ मुख्य स्वर है उदित नारायण के। फिल्म का नाम है पृथ्वी।

0: फिल्म पृथ्वी के इस बेहतरीन लगने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। बजने को है एक और अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में वर्चुअली शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को हमेशा नशे से दूर और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
2: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जा रहा है और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवा हिस्सा ले रहे हैं। इसमें माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों और गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर स्थित राजस्थान कृषि महाविद्यालय से आयोजित नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला कांस्टेबल, अश्वारोही पुलिस बल, महिला सशक्तिकरण पर आधारित आकर्षक झांकियों और खिलाड़ियों सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता कर महिला सुरक्षा, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रैली महिला सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक जागरूकता के प्रति जन भागीदारी को सशक्त बनाने की प्रेरणादायी पहल है। इससे पहले श्री शर्मा ने झाड़ोल तहसील के बीड़ा गांव में प्रातः भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया, स्कूली बच्चों और महिलाओं भी से भी चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने और कई मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज राजसमंद भी जाएंगे। इस दौरान वे जिले में 436 करोड़ रुपए से अधिक की 344 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का कर्तव्य पथ संवाद, नेतृत्व व निष्ठा का मिलन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा

0: नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों के साथ तैयारियों का आकलन किया। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और उच्च सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। प्रदेश में वन सोमवार से एक दिन पहले आज रविवार को कई स्थानों पर बरसात हुई है। भीलवाड़ा में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर चला। पाली में सुबह बादल छाए रहे और जिला मुख्यालय सहित सोजत, बूसी, मारवाड़ जंक्शन और बाली सहित कई क्षेत्रों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बरसात हुई। बारा से भी रुक रुक कर बारिश के समाचार हैं। इससे पहले कल शाम सलूम्बर में तेज बरसात हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जालौर, पाली, सिरोही जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कल से मॉनसून कमजोर पड़ेगा और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मिलीमीटर 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोतो, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत, लेकर आ रही हैं बिंदु शर्मा और डॉक्टर शर्मिला।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी बिंदु शर्मा और डॉक्टर शर्मिला का प्यार भरा नमस्कार।
1: सभी बहनें करती हैं अपने प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार और बहनों, वैसे भी अब तो सावन का महीना भी चल रहा है तो मौसम भी तो खूबसूरत बना हुआ है और इस खूबसूरत मौसम में आपका खूबसूरत प्रोग्राम तो हम लेकर आते हैं इसे बहुत सारी जानकारी, खूब सारा मनोरंजन अपनी बहनों के लिए।
0: बिल्कुल शर्मिला, आज तुम बड़ी चहकी चहकी लग रही हो, क्या हुआ? कोई खास खजाना मिल गया क्या?
1: अरे कुछ नहीं बिंदु, बस आज पता है मैं जब यहाँ आ रही थी ना तो रास्ते में मुझे अपने स्कूल की एक सहेली मिल गई। और हम चलते चलते यूं ही ना स्कूल की बातें लेकर बैठ गए। बस फिर क्या था, खूब सारे ठहाके हमने लगाए। पता है सिर्फ 10 मिनट की बात में हम इतना हंसे ना कि मेरे तो पूरे पेट में ही दर्द होने लगा। वो खुशी जो थी ना वो सच में यार क्या ही बताऊं।
0: बिल्कुल सही समझ, छोटी छोटी खुशियां ही हमें जीवन का आनंद देती है, पर पता नहीं क्यों हम जीवन में उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उनका आनंद कभी नहीं लेते। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है।
1: बिल्कुल बिंदु, तो बहनों रहिए खुश मस्त और स्वस्थ, ये है हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं जो। तो क्यों ना बिंदु अपनी बहनों को कर दें बहुत सारा खुश ताकि वो भी झूम उठे सुहाने मौसम में।

0: हथियार ध्यान दें। पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में

0: दुनिया घूमते आए घूमते आए अब वही वही ही कहानी सुनाएगा जो चित्र
1: डाउनलोड वेव ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पता है बिंदु, तुम कह रही थी ना कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तो दोस्ती आज दोस्त मिल भी गई और आज तो एक दोस्ती पर विशेष दिवस भी है ना। क्यों, तो बिना किसी के जो मिल जाते हैं वो दोस्त ही हैं जो दिल से मुस्कुराते हैं। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस रिश्ते में, बस एक कप चाय और ढेरों बातें रंग लाते हैं।
3: बिल्कुल, यही रिश्ता है जिसे हम एक दूसरे की खिंचाई भी कर सकते हैं, दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं, भड़ास निकाल सकते हैं। जैसे हम किसी भी कारण, कोई भी कारण ना हो, लेकिन हम महफिल जमा कर बैठ ही जाते हैं।
2: बहुत अच्छा लगता है सखियों के साथ, और रूठना मनाना भी वहाँ चलता ही रहता है। उसके लिए सबसे पहले दौड़ कर पता है दोस्त ही आते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा। और इसी रिश्ते में कोई शर्त भी नहीं होती, सिर्फ सादगी, सच्चाई और प्यार होता है। दुनिया में अधिकांश रिश्ते हमें यही से मिलते हैं,
2: लेकिन एक दोस्ती का ही ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। ये एक ऐसा बंधन है जो खून के रिश्तों से परे विशुद्ध रूप से प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर टिका होता है। जहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती, वहीं सच्ची दोस्ती पनपती है।
3: बिल्कुल, सुख और दुख का सच्चा साथी भी तो दोस्ती होता है। सिर्फ आपकी खुशियों में शामिल नहीं होता, वो आपकी अंधेरी दौर में भी आपका हाथ थाम कर खड़ा रहता है। जब पूरी दुनिया आप पर संदेह करती है, तब वह सच्चा दोस्त ही आपकी काबिलियत पर भरोसा जताता है और गलतियों पर आपकी अकेले में आपको डांटता भी है और दुनिया के सामने आपकी ढाल बनकर सामने उभर कर आता है।
2: बिल्कुल, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और अकेलापन जिसके हम शिकार होते जा रहे हैं, हर आदमी हमें कहता हुआ मिलता है कि आजकल बड़ा यार डिप्रेशन में चल रहा हूँ। ऐसे में मैं कह सकती हूँ कि दोस्त एक थेरेपिस्ट की तरह काम करता है।
3: बिल्कुल,
2: उनसे दिल की बात खुलकर कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों के साथ बिताए गए कुछ हल्के फुल्के पल, हंसी मजाक और चाय की चुस्कियां हमारे मानसिक तनाव को भी कम कर देती हैं। तो क्यों ना बिंदु जी, हम अपनी सखियों को सुना दें दोस्ती, जब उनके दिल में इतनी बसी गई है तो दोस्ती पे गीत।
3: बिल्कुल।

0: क्या ध्यान दें। पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 के कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर नई प्रक्रिया

0: 4 से 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जनविश्वास अधिनियम रेल में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आंख का भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: जब सुन रहा है

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मधु चैनल की प्रस्तुति।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: बहनों, संगीत किस तरह हमारे जीवन में काम करता है ये तो हम सब जानते ही हैं, क्यों बिंदु जी? क्योंकि जीवन के हर मौके पर हम संगीत का आनंद लेते हैं, पर अब महिलाओं के लिए कुछ खास जगह है संगीत की, क्योंकि शायद दिन भर का काम हो, जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और पास में अगर रेडियो बज रहा होता है ना, जैसे मैं पता है कि रोटी भी बना रही होती हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता कि रोटी कब खत्म होगी, मेरे गाने के साथ साथ रोटियां भी खत्म हो जाती है बनाते हुए। मतलब कहने का मतलब ये कि आराम से काम हो जाता है, पूरे दिन की थकान भी एक फेवरेट गाना सुन करके खत्म हो जाती है। और शास्त्रीय संगीत का शौक हो तो कहना ही क्या। तो जानते हैं इस विषय पर कुछ और, सुनते हैं वार्ता महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व। वार्ताकार है डॉक्टर सोनिया करोला।

एक महिला होने के नाते संगीत मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि इसने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमेशा हमारे लिए कुछ अच्छा ही करता है। संगीत मेरे लिए प्राण वायु और ऑक्सीजन की तरह है, जो मेरे जीवन को और भी अच्छे से जीने में सहायता करता है। संगीत हमें स्वस्थ तथा शांत रहने में भी हमारी सहायता करता है। सत्य ही कहा है किसी ने, बिना संगीत के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संगीत के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। संगीत ध्यान की तरह है, यदि पूरी लगन और श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास किया जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को बढ़ाता है तथा उसे सुधारता है। हम संगीत से जुड़े सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह बहुत ही शक्तिशाली है, जो हमारी तरह ही भावनाओं और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा तक को स्पर्श करता है, हमारे संसार से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। संगीत निश्चित ही एक प्रक्रिया है, और जिस प्रकार प्रकृति और प्राणी जगत में प्रकाश और गर्मी का प्रभाव होता है, उससे उनके शरीर भरते हैं, पुष्ट और स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार संगीत से भी तापीय और प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और वह प्राणियों के विकास में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना अन्न और जल। महिलाएं ही नहीं वरन पूरी मानव जाति के लिए संगीत ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है। संगीत आत्म शांति की वह कुंजी है, जो हमें मानसिक और शारीरिक स्वस्थ बनाने में हमारी सहायता करती है। संगीत के लय ही जो बीते समय पसंदीदा स्थानों, व्यक्तियों तथा छोटे उत्सव आदि में सभी अच्छी यादों का, सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करती है। संगीत हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और यह हमारी दैनिक जीवन का भी हिस्सा बन चुका है। बहुत से लोग विभिन्न उत्सवों और

मौकों पर संगीत सुनना और गाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग हर समय संगीत सुनते हैं, दफ्तर में, घर में, रास्ते में, जहां कहीं भी वो जाते हैं, संगीत उनका एक माध्यम होता है जिससे उनका मनोरंजन हो सके। संगीत जीवन की सभी समस्याओं, मानसिक थकान से दूर करने में हमारी मदद करता है, यहाँ तक कि समाधान भी करता है। राग यमन।

सा। आजकल बड़ी कंपनियों में ऑफिसों में कर्मचारियों के काम करने के समय पर उनके दिमाग को तरोताजा, शांतिपूर्ण, एकाग्र और सकारात्मक विचारों वाला बनाने के साथ ही कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए धीमी आवाज में गाने चलाने का दौर चलन में है। जितना हमने देखा है, सुना है कि खिलाड़ी भी अपने तनाव को दूर करने के लिए गाने सुनते हैं, गाने गुनगुनाते हैं ताकि तनाव से बचा जा सके। अनेक खिलाड़ियों ने अपने इंटरव्यूज में कहा है, जब भी हमारा ध्यान खेल से भटकता था, तनाव महसूस होता था, तो हम गाने गुनगुनाते थे, गाने सुनते थे। एक खिलाड़ी के जीवन में भी संगीत का कितना महत्व है। एक महिला के जीवन में संगीत बहुत ही शक्तिशाली है और सभी भावात्मक समस्याओं के लिए सकारात्मक संदेश पहुंचाता है। संगीत की प्रकृति प्रोत्साहन को बढ़ावा देने की है, जो सभी नकारात्मक विचारों को हटाकर महिलाओं की एकाग्रता को शक्ति प्रदान करता है। संगीत वो है जो हमारे सबसे प्रिय के साथ की सभी अच्छी यादों को पुनः याद करने में मदद करता है। इसकी कोई सीमा, वादा और नियम निर्देशिका नहीं है, इसे तो केवल लगन और श्रद्धा के साथ सुनने की आवश्यकता है। जब भी हम संगीत सुनते हैं, यह हृदय और दिमाग में बहुत अच्छी भावना का संचार करता है। इससे हमारी आत्मा से जोड़ता है। यह जुड़ाव ईश्वर की सर्वशक्ति में भी होता है। संगीत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। संगीत के बारे में यह भी कहा जाता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, यह तो सभी सीमाओं से परे है। इसी से प्रभावित होकर मेरा भी संगीत से जुड़ाव हुआ और संगीत में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। एक महिला होने के नाते आज मैं आपके सामने अपने जो ये विचार प्रस्तुत कर रही हूँ, यह संगीत के ही कारण है, जिसके लिए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझ महिला को सुनने वाली हर महिला यह समझ रही होगी कि संगीत का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम जानते हैं कि आज की हर बीमारी जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, हृदय संबंधी बीमारियों का मुख्य कारण तनाव और तनावपूर्ण बने रहना है। संगीत है तो तनाव मुक्त जीवन जीने में हमें सहायता मिलती है। संगीत के बिना हम महिलाओं का जीवन तनावपूर्ण हो जाएगा। संगीत में काफी शक्ति होती है। यह लोगों के मन में कई तरीके से जगह बनाता है, जहां ये काम को बनाता है और वहां ये काम को बिगाड़ भी सकता है। संगीत से सभी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि भी इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि संगीत के जरिए रोगों का उपचार भलीभांति किया जा सकता है। नेत्र रोग और हृदय रोग के उपचारों में इसका प्रयोग बहुत ही सफल रहा है। संगीत के स्वरों से पाचन संबंधी बीमारियों का उपचार भी किया जाता है। जैसे जैसे मनुष्य संगीत की स्वर लहरों में खोया चला जाता है, उसका ध्यान सब बातों से हट जाता है और वह सुकून महसूस करने लगता है। राग शिवरंजनी पर आधारित सा

राग शिवरंजनी सुनने से वायरस जनित रोगों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही यह शरीर व मस्तिष्क को राहत देने का भी कार्य करता है। हमारे शरीर के हार्मोन्स को संतुलित बनाए रखता है। मैं संगीत सुनना बहुत पसंद करती हूँ। सुबह संगीत सुनना मुझे बहुत पसंद है। संगीत हमारे हृदय के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। संगीत हमें अच्छी नींद प्राप्त

करने में भी हमारी सहायता करता है। क्योंकि शिक्षण काल में मेरा विषय संगीत गायन था, अतएव जब भी मैं थकान महसूस करती थी, तनाव महसूस करती थी, तो अपनी पसंद के गाने गुनगुना लेती थी और उन्हें सुनती भी थी। हॉस्टल लाइफ में संगीत का सबसे अधिक फायदा मुझे इसलिए भी मिला था कि जब हम ग्रुप में बैठा करते थे, क्योंकि मैं संगीत गायन से थी और मेरा उस ग्रुप में एक विशेष आदर सम्मान किया जाता था। मेरी जूनियर्स भी मेरे से फरमाइश सकती थी कि दीदी मुझे यह वाला गाना सुनना है, मुझे वह वाला गाना सुनना है। उनका मेरे प्रति जो नजरिया था वो केवल संगीत के कारण ही था। मुझे अभी तक की जीवन यात्रा में जो संगीत से मिला वह बहुत ही अविस्मरणीय है। संगीत क्या है? मधुर ध्वनियों तथा स्वरों का विशिष्ट नियमों के अनुसार लय में होने वाला प्रस्फुटन। संगीत मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। संगीत का नाम लेते ही सर्वप्रथम शास्त्रीय संगीत ध्यान में आता है। शास्त्रीय संगीत को भारतीय संगीत भी कहा जाता है। यह भारतीयता का प्रतीक है। शास्त्रीय संगीत में स्वर समृद्ध है, इसमें इतना भंडार है, इतनी निधि है कि वह सागर के समान है। संगीत को और अन्य भागों में बांटा जाए तो लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत इसके पर्याय कहे जाएंगे। संगीत का उपयोग बतौर थेरेपी भी किया जाता है। रोगों के आधार पर तैयार संगीत अनेक रोगों के लिए लाभकारी साबित हो जाते हैं। एक डॉक्टर ने अपने शोध में कहा है कि भारतीय शास्त्रीय एक अपरंपरागत चिकित्सा पद्धति है। इसके द्वारा समस्त आयु वर्ग एवं व्याधियों से ग्रसित व्यक्तियों का लाक्षणिक उपचार किया जाता है। यह भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं संवेदना के स्तर पर शरीर को प्रभावित करता है एवं मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। राग और उनसे उपचार में अगर बीपी है तो धीमी पिच वाला

एवं निम्न बीपी हो तो तेज ध्वनि का संगीत सुनाया जाए तो वह रोगी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। दरबारी व सारंग राग और हृदय रोगों के लिए लाभदायक है तथा शिवरंग में स्मृति विलोप से संबंधित भी है। इसी प्रकार मालकोंस

जात श्वसन संबंधी रोगों से निवारण करने में हमारी सहायता करता है। वर्तमान की तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण कई व्यक्ति अनिद्रा से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में राग भैरवी और राग सुहनी को सुनना इस समस्या के निवारण के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राग भैरवी व राग देश सिरदर्द संबंधी तकलीफों में अत्यंत उपयोगी है।

राग पीलू रक्तहीनता के उपचार में काम आता है, तो राग जजवंती सामान्य शारीरिक कमजोरी में लाभ देता है। अतः मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी मेरी बहनें उदास हों, तनाव में हों, काम का बोझ ज्यादा हो, तो संगीत से जुड़े, संगीत को सुने। किसी भी बहन को ऐसी कोई तकलीफ हो तो वह उस तकलीफ में वह वही उसी प्रकार का राग सुने। मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न रहिए। हे

pilot. सखियो घर में जन्म हो तो संगीत, शादी हो तो संगीत, और जीवन की अंतिम पड़ाव में भी भजन के साथ संगीत। संगीत के बिना तो जीवन ही अधूरा है। इसका महत्व तो कान्हा की बंसी बता सकती है, निर्जरों का झरना भी बता सकता है, नदियों की कलकल और पक्षियों का कलरव। इसीलिए बहनों, आज थी आपके लिए विशेष वार्ता।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: शर्मिला, कैलाश खेर जी को सुनकर याद आ गया कि अरे भाई अगस्त आ गया है आजादी की खुशियां लेकर।
1: बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम अपनी आजादी के उस महान व्यक्तित्व को भी याद करने वाले हैं जो एक वैज्ञानिक तो थे ही, साथ में हम सबको देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया गया।
0: हाँ सखियो, हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक की।
1: हाँ बिंदु, 1861 में जन्मे राय साहब न सिर्फ वैज्ञानिक थे बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में उनकी खोज भी सबसे अहम थी। मर्क्यूरस नाइट्रेट और सबसे बड़ी उनकी सोच जो थी वो स्वदेशी भावना।
0: हाँ, उस समय अंग्रेजों द्वारा निर्मित दवाइयाँ ही भारत में बिकती थी और उन्होंने कहा कि हम अपनी दवाइयाँ खुद बनाएंगे।
1: और आज BCPW भारत की जो सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है वो उनकी देन है।
0: पर शर्मिला, वो फैक्ट्री तक सीमित नहीं थे, वो प्रोफेसर भी थे, समाज सेवी भी थे। 1908 में जब बंगाल में बाढ़ आई थी वो राहत सामग्री लेकर खुद निकल पड़े
1: और उनका मानना था कि सच्ची आजादी तब आएगी जब हम विज्ञान और स्वदेशी में आत्मनिर्भर बनेंगे।
0: आज जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो इसके नींव में आचार्य राय जी का सपना नजर आता है मुझे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और आजादी के इस पावन माह में उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं कि हम पढ़ाई तो करेंगे, साथ में देश सेवा और उसके हित की भी बात करेंगे। और एक और खास बात बताते हैं आपको, आज एक खास दिन भी है, शुक्ल जी की जयंती भी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आज क्या है कि 2 अगस्त जो है, और 2 अगस्त 1877 को पंडित रविशंकर जी का जन्म भी हुआ था।
0: छत्तीसगढ़ में चाणक्य कहलाते थे वो, है ना। तो वो पेशे से वकील भी थे, पत्रकार भी थे और आजादी के जांबाज सिपाही भी थे।
1: और 1920 में गांधी के साथ उन्होंने ऐसे आंदोलन में भी भाग लिया था और बहुत बार जेल भी गए लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा।
0: बहुत अच्छी बात है। एक खास बात, और वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। उनका मानना था कि जिस देश की अपनी भाषा नहीं होती वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।
1: और जब देश आजाद हुआ तब मुख्यमंत्री के पद पर आसीन भी हुए, पर रहते हुए भी उन्होंने कभी भी जो है मजदूरों के साथ, आदिवासियों के साथ कभी कुछ अहित नहीं हुए, या उनके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने काम किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सिंचाई, शिक्षा, उद्योग पर उनकी विशेष ध्यान दिया। और जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, वो भी उनकी ही देन है।
1: और उनका जीवन जो था वो सादगी और सत्यता का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, और वे राजनीति को भी सेवा का दूसरा नाम ही मानते थे। बहनों, हम लोग अपना इनकी बातें तो कर ही रहे हैं अपने आजादी के भक्तों की, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आजादी से मुझे पता है क्या याद आ रहा है, अपने बुजुर्ग भी याद आ रहे हैं।
0: हाँ, जिन्होंने योगदान दिया। और आज भी अगर हम अपने बुजुर्गों को साथ देते हैं, उनके साथ होते हैं, तो उनके हौसले बहुत बुलंद है। अपनों का साथ है अगर उनके साथ में, तो ही हम उनके साथ

0: अब कंधे से कंधा मिलाकर चल पाते हैं वो हमारे साथ, है ना।
1: बर्मिला पता है बिंदु जी, आज जो ये प्यारा सा मौसम हो रहा है ना, तो उसको देख करके मुझे एक बात याद आ गई।
0: क्या?
1: अरे पता ही क्या है, जब मैं छोटी थी ना, तो कभी जब ऐसा मौसम होता था ना, तो मैं ऐसे मौसम में मतलब अपनी दादी से ऐसे बोलती थी कि गुलगुले खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो पता ही क्या, मेरी दादी तुरंत, उस समय पता है गैस वगैरह नहीं होते थे, चूल्हा जलता था और इतनी धूप, मतलब धूप के मौसम में भी अगर मान लो है कि ठीक है अच्छा मौसम भी हो गया, लेकिन अगर धूप में भी कभी बोल दिया ना मैंने मुझे, तो वो दादी बना कर ले आती थी, मतलब कहना वाला मेरे दिल की बात ये। तो आज मुझे सच में मेरी दादी की बहुत याद आ रही है कि किस तरह की होते हैं ना बुजुर्ग ये।
0: हाँ बिल्कुल शर्मिला, बुजुर्गों की तो बात ही अलग होती है, जिस घर में बुजुर्ग होते हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं होता।
1: और आज मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बुजुर्ग पता है ऐसे लगता है कि क्यों हमें सारा दिन रोकते टोकते हैं, क्यों नहीं हम अपनी मर्जी करने देते, क्यों बार बार ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों के पास बहुत बड़ा तजुर्बा होता है जिसको हमें करना चाहिए, मतलब उनको ध्यान रखना चाहिए,
0: वो हमारे मार्गदर्शक है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए। और बता

0: आज मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बुजुर्ग पता है ऐसे लगता है कि क्यों हमें सारा दिन रोकते टोकते हैं, क्यों नहीं हम अपनी मर्जी करने देते, क्यों बार बार ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों के पास बहुत बड़ा तजुर्बा होता है जिसको हमें करना चाहिए, मतलब उनको ध्यान रखना चाहिए।
1: वो हमारे मार्गदर्शक है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए। और पता भी है कि मोहल्ले में गली में एक भी बुजुर्ग होता है तो आपस में कोई भी बात होती तो वही मिल बैठ कर उसका निपटारा करते हैं, तो बुजुर्ग का सम्मान तो होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल, पता है जैसे अभी तीज आने वाली है तो अब जैसे उसमें पता है क्या होगा कि जैसे सास भी घर में बोल लेगी कि बेटा मेहंदी लगा लो, मतलब ये त्योहारों का महत्व भी हमारे बुजुर्गों से ही है। वो कहेंगे नई चूड़ियां पहन लो, नई साड़ी, ये वरना हमें कौन कहेगा, हम जैसा भी रह रहे हैं जैसा हमारा वैसा ही हम रहते हैं। लेकिन बुजुर्ग कहीं ना कहीं हमारे त्योहारों की, हमारी जिंदगी की शान है।
1: बिल्कुल शर्मिला, आप सही कह रही हैं, देशभक्ति से लेकर घर परिवार में बुजुर्गों का महत्व इतना अधिक है कि हम उनको भुलाए नहीं भूल सकते, चाहे आचार्य जी हो या फिर शुक्ल जी या फिर हमारे घर की बूढ़ी दादी नानी।
0: बिल्कुल, क्योंकि उम्र जो है वो हौसला हारने की नहीं होती, हौसला बढ़ाने की होती, तो बुजुर्ग भी हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं और उससे भी बढ़कर देश के लिए भी कुछ कर गुजरने की क्षमता उनमें होती है।

0: आपने सुना अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के बजने वाले हैं 2 और अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनिता कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Kerala. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
1: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs.

0: up to the goal of Viksit Bharat. Launching the Shamuktiyava for Viksit Bharat Sankalp Adhyan, Mr. Modi said, young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continued to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims a maiden BWF World Tour title at Taipei Open, and in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनी शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए स्वास्थ्य का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी की डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
2: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका

सीख सके। श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशा

0: के समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इधर गुजरात में भी कच्छ, माव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 एनडीआरएफ और 33 एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। आकाशवाणी
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी ओडिशा बुरी तरह प्रभावित

0: किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के लंबाने, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने

0: फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खोलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में हॉर्मुज जलजमाव मुद्दे को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी बीजिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएंग थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश कांगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में स्मृत नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मिन लंगूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जगमणि सिंह और नरेंद्र बीरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन हराना ने पुरुषों के F57 पैराशूट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुरवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुरवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति सुश्री पी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य

0: बाल से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरल में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और जाजपुर आश्रम में खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगाहर्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: She's your best friend, yeah?
1: She's your best friend, yeah?
2: श्रोताओं, मित्रता दिवस है। मित्रता जीवन का वो मधुर रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना और अपनेपन, विश्वास और खुशियों को संजोए रखता है। सच्चे मित्र हमारे जीवन के हर मौसम को सुहाना बना देते हैं। तो आइए इस विशेष अवसर पर अपने सभी मित्रों को शुभकामनाएं दें और संगीत के सुरों के साथ इस दिन को और भी यादगार बनाएं। तो प्रस्तुत है ये कार्यक्रम का पहला गीत 1998 की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है से अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में। ये चंचल और मस्ती भरा गीत है, साथ में संगीत है जतिन ललित का, वो भी है कमाल।

जाए, हमेशा की तरह ऐसे प्यारे पल हमेशा बने रहे, क्योंकि जब दोस्त साथ होते हैं तो दिल चाहता है

जब दोस्त होते हैं तो दिल चाहता है कि बस उनके साथ रहें, जहां रुके, जहां भी जाए, झूमे, नाचे, गाए, और वक्त

श्रोता, दोस्ती केवल निभाने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का भी नाम है। सबसे सच्चे दोस्त हमारी जीत पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं और मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमारे साथ जो खड़े नजर आते हैं वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। शायद यही वजह है कि युवाओं की दोस्ती और जोश को समर्पित ये जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत लोकप्रिय है। गीत है जो जीता वही सिकंदर का, और यहाँ के हम सिकंदर हैं, जानते हैं ना आप।

शत्रु मित्रता की बात हो और सहेलियों की मस्ती का जिक्र ना हो तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। दोस्ती की सबसे प्यारी पहचान है खुलकर हंसना, एक दूसरे से मन की बात कहना और छोटी छोटी खुशियों का साथ मिलकर जीना, है ना। ये प्यारे से लम्हे, ये प्यारी सी खुशियाँ हम सबके साथ रहें और दोस्तों का साथ रहे हमेशा। स्पेशली कॉलेज डेज के जो दोस्त होते हैं और जो कॉलेज डेज की यादें होती हैं वो हमेशा हमारे साथ इसी तरह बनी रहती हैं। तो ऐसा ही एक प्यारा सा गीत सुनते हैं A.R. रहमान के स्वर में, फिल्म का नाम है दुनिया दिलवालों की। इस गीत को लिखा है P.K. मिश्रा ने और साथ है नितिन रायकवर, संगीत है A.R. रहमान का।

आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बजने को है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। मीडियम वेव पर हमारी अगली सभा संध्या 5 बजे पुनः आरंभ होगी।

नमस्ते की खुशबू रही, जिंदगी में महकाती रही, हर रिश्ते में विश्वास और अपनापन मुस्कुराता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।

0: 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। दूसरी सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छुपाएं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना आवश्यक है। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। इस दौरान पोर्टल पर भी दी गई जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीददार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देश से 100 से अधिक जीआई पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के कोयला उत्पादन में जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में देश में कुल कोयला उत्पादन 69.75 मिलियन टन रहा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति जुलाई 2025 के मुकाबले 17.34% अधिक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने बताया कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जलडंबू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और यह देश के इतिहास में सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। संगठन के अनुसार 30 जुलाई तक इबोला के 3,605 पुष्ट मामले और 1,587 मौतें दर्ज की गई हैं। केरला में मूसलाधार वर्षा से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इश्वरूप नारंग महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले में पहुंच गए हैं। साइकिलिंग में रोनाल्डो सिंह पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल के फाइनल में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा मित्र अपना कार्यक्रम सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त भवानी और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट सलोनी पारिक। सलोनी, आज सुबह जब मैं पार्क में गई थी ना तो मैंने एक मजेदार नजारा देखा।
1: अच्छा,
0: मैं तुम्हें बताऊं, एक अंकल जी तेज तेज वॉक कर रहे थे लेकिन हर 2 मिनट में वो रुककर मोबाइल में स्टेप लेते थे कि आज मैंने कितने स्टेप किए हैं।
1: अरे अब तो कई लोग चलने से ज्यादा स्टेप्स गिनने में बिजी रहते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग अब अपनी सेहत के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं
1: और इसी से जुड़ा है दोस्तों हमारा आज का विषय जो है खेल और स्वस्थ जीवन शैली।
0: बिल्कुल सलोनी, जब भी खेल का नाम आता है ना तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही होता है
1: और भवानी जबकि सच्चाई तो ये है कि खेल हर उम्र के इंसान के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग।
0: बिल्कुल, खेल सिर्फ शरीर को ही नहीं दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है
1: और यही वजह है दोस्तों कि डॉक्टर भी कहते हैं कि रोज कम से कम 30 मिनट कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि हमें जरूर करनी चाहिए।
0: ये बात तुमने एकदम ठीक कही, खेल सिर्फ दौड़ना या गेम फेंकना नहीं होता दोस्तों,
1: बल्कि अनुशासन, टीम वर्क, धैर्य और हार के बाद दोबारा उठकर कोशिश करना भी हमें सिखाता है।
0: सही बात, और यही गुण जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। क्या मोबाइल में गेम भी एक खेल ही है?
1: भवानी तुम्हारा प्रश्न बहुत सही है क्योंकि आजकल बच्चे कहते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन अगर पूरा दिन मोबाइल पर ही गेम खेलते रहेंगे ना सलोनी तो शरीर कैसे स्वस्थ होगा?
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, डिजिटल गेम मनोरंजन तो हमें देते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन असली खेल मैदान में पसीना बहाने वाले ही होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, कई लोग सोचते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का मतलब सिर्फ जिम जाना होता है, इसलिए इसमें संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी और सकारात्मक सोच भी, ये सब भी शामिल होते हैं दोस्तों।
1: बिल्कुल सही कहा भवानी, और यही छोटी छोटी आदतें हमें बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे लेके जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे पारंपरिक खेल भी कितने शानदार है ना सलोनी।
1: बिल्कुल, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा जैसे खेल शरीर के साथ साथ टीम भावना भी हमें पैदा करते हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, इनमें महंगे उपकरणों की भी जरूरत नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा, और इन्हीं खेलों को अगर हम खेलते रहेंगे तो ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में भी बहुत हेल्प करते हैं।
0: बिल्कुल सही, आजकल तो स्ट्रेस लोगों के हर 2 से 3 व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस हमें देखने को मिलता ही है, ऐसे में खेल बहुत मदद करता है दोस्तों। खेलने में मन खुश रहता है, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास वो भी बढ़ता है।
1: सही कहा, इसीलिए कहा जाता है जो खेलता है वही खेलता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अगर पूरा परिवार साथ में बैडमिंटन खेले, पार्क में वॉक करे या शाम को थोड़ा इधर उधर दौड़े तो कितना अच्छा माहौल बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और सेहत भी बनी रहती है।
0: बिल्कुल, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां भी ले सकते हैं आप दोस्तों, मतलब आप अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को अगर चेंज करेंगे ना तो आपका जो जीवन शैली है वो अपने आप स्वस्थ होने लगेगी। जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां ले, थोड़ी दूरी हो तो पैदल चलना सीखिए, सुबह स्ट्रेचिंग करें और
1: दिन भर खूब पानी पीजिए दोस्तों।
0: बिल्कुल,
1: पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के साथ अब चलते हैं आज के हमारे कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।
0: बिल्कुल,

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी डीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: क्विज टाइम वक्त हो चुका है आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट क्विज टाइम का, जिसमें हम आपसे पूछते हैं दो सवाल और उसके आंसर्स हम आपको बताते हैं कार्यक्रम के अंत में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी।
1: और दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रही कुरिंदा कला की उत्पत्ति मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में हुई थी। मैं दोबारा दोहराती हूँ, हाल ही में समाचारों में रही कुरिंदा कला की उत्पत्ति मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में हुई थी। तो दोस्तों, सलोनी, मैंने दोस्तों से तो सवाल पूछ लिया, अब क्या मैं

0: दूसरे एक सवाल पूछूं?
1: पूछो, लेकिन कुछ ऐसा सवाल मत पूछ लेना कि फोन निकाल के मुझे सर्च करना
0: नहीं नहीं, बताइए ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं या हम खुद चुनते हैं?
1: अरे ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है।
0: बिल्कुल,
1: ये है सबसे प्यारा रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता।
0: बिल्कुल, रिश्ते तो हमें जन्म से ही मिले होते हैं, लेकिन दोस्त हम अपनी मर्जी से, हम अपने दिल से चुनते हैं।
1: और शायद इसीलिए दोस्ती दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता कहलाती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी दिवस को, यानी उसी डे को, यानी मित्रता दिवस। आज है दोस्तों फ्रेंडशिप डे।
1: भवानी कभी सोचा है कि दोस्त ही क्यों वो इंसान होता है जिसके सामने हम बिना किसी झिझक के अपनी बातें कह देते हैं?
0: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हमें जो दोस्त होते हैं हमारे, वो हमें बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं कि जैसे हम हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और सच्चा दोस्त वही है जो हमारी खुशी में सबसे ज्यादा खुश हो और मुश्किल समय में सबसे पहले हमारे साथ आगे खड़ा हो जाए।
0: बिल्कुल, याद है स्कूल के वो दिन जब टिफिन एक का होता था और खाने वाले चार लोग होते थे, और परीक्षा से पहले वही दोस्त कहते थे कि कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर भी उन्हीं के आते थे।
1: बिल्कुल सही, और अगर टीचर डांट देते थे तो दोस्त बाद में आकर कहते थे कि कोई बात नहीं, अगली बार साथ पढ़ाई कर लेंगे।
0: बिल्कुल, क्या सिर्फ रोज बात करने वाला ही अच्छा दोस्त होता है सुनोनी?
1: नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि कई बार ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनसे हम महीनों बात नहीं करते, लेकिन फिर भी जब हम उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कल ही तो हम साथ में बैठे थे।
0: ये बात तो 100% ठीक है। यही तो दोस्ती की खूबसूरती है दोस्तों, समय बदल सकता है लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, और आजकल तो हमारे पास फोन में इतना सारा कंटेंट है और सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग हैं जिनसे हम जुड़ते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त कुछ एक ही होते हैं जिनसे हम खुल के दिल की बातें कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, दोस्ती हमें साझा करना सिखाती है, माफ करना सिखाती है, और दूसरों की खुशी में खुश होना भी सिखाती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और इंसानियत भी हमें दोस्ती ही सिखाती है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: दोस्त भवानी, जिंदगी में रिश्ते चाहे कितने भी हो, लेकिन वो दो तीन क्रेजी दोस्ती होते हैं जो सफर को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना देते हैं।
0: बिल्कुल सलामी, जो बिना कुछ कहे आपकी हर बात समझ ले और आपकी हर बेवकूफी में बराबर हिस्सेदारी बने, वही तो असली दोस्त होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और सच कहें तो जिंदगी जीने का असली मजा ही इन्हीं पागलपंती भरी अतरंगी यारी में होता है।
0: बिल्कुल, तो इसी के साथ सुनते हैं एक ऐसा ही सॉन्ग।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: जब सुन रहा

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: भवानी, अगर आज कोई युवा एक सफल स्टार्टअप शुरू करे, साथ ही बेहतरीन वैज्ञानिक भी हो और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज और शिक्षा पर खर्च करे, तो हम उसे क्या कहेंगे?
2: शायद एक विजनरी, ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोचता हो।
1: बहुत सही कहा तुमने। और दोस्तों, आज हम जिस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, वो ठीक ऐसे ही थे। विज्ञान, उद्योग, शिक्षा और समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों में उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की, जिनकी जयंती हर वर्ष 2 अगस्त यानी आज के दिन मनाई जाती है।
2: बिल्कुल दोस्तों, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक वैज्ञानिक तक सीमित नहीं है। वे मानते थे कि विज्ञान तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज तक पहुंचे।
1: भवानी, आज हम अक्सर सुनते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। क्या तुम जानती हो कि स्वदेशी उद्योगों की यह सोच आज से एक सदी पहले ही आचार्य राय के विचारों में दिखाई देती थी। उन्होंने 1901 में बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की, जिसे भारत की पहली सफल रासायनिक और औद्योगिक निर्माण कंपनी में गिना जाता है।
2: यानी वे सिर्फ प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि ऐसे उद्यमी भी थे जिन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय प्रतिभा अपने दम पर उद्योग खड़े कर सकती है। आज के युवाओं के लिए यह एक बड़ा संदेश है कि ज्ञान तभी प्रभावी बनता है जब वह समाज की समस्याओं का समाधान करे।
1: और दोस्तों, उनकी सादगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा गरीब विद्यार्थियों की मदद और शिक्षा के प्रसार में लगा देते थे। उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि शिक्षित और जागरूक युवा थे।
2: और एक और दिलचस्प बात बताऊं,

0: सुनते नहीं थे हम, आचार्य राय केवल विज्ञान पढ़ाते नहीं थे बल्कि अपने विद्यार्थी में सवाल पूछने की आदत भी विकसित करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान की शुरुआत उत्तर देने से नहीं बल्कि सही प्रश्न पूछने से होती है।
1: और भवानी, शायद यही बात आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन सही जानकारी पहचानने और उस पर सोचने की क्षमता ही असली शिक्षा है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ाता है।
0: दोस्तों, आज सब देश इनोवेशन, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जीवन हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि बड़े विचारों से होते हैं। और इसी के साथ कैलाश खेर जी हमें भारतीय सेना के लिए एक बहुत प्यारा संदेश दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि बड़े बदलाव उन्हीं लोगों के हिस्से आते हैं जो कठिनाइयों से घबराते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं।
1: और शायद यही बात हमें आज के व्यक्तित्व से भी जोड़ती है। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, जिनकी जयंती हमें बताती है कि नेतृत्व केवल पद का नाम नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की भी जिम्मेदारी है।
0: भवानी, आजकल युवाओं के बीच एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है जो है लीडरशिप। कॉलेज हो, स्टार्टअप हो या कोई सामाजिक पहल, हर जगह अच्छे लीडर की बात होती ही होती है।
1: लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि एक अच्छा नेता बनता कैसे है? शायद इसी सवाल का जवाब हमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी से ही मिलता है। वे स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे दोस्तों, कुशल प्रशासक थे और स्वतंत्र भारत में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वे शिक्षा, भाषा और विकास को किसी भी राज्य की असली ताकत मानते थे।
0: दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे आम लोग सहजता से समझ सके। उनका विश्वास था कि जब शिक्षा लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचती है तभी उसका वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है।
1: और यही सोच आज की नई शिक्षा व्यवस्था में भी दिखाई देती है, जहां मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यानी कई विचार समय बदलने के बावजूद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखते हैं।
0: भवानी, एक और बात है जो मुझे उनके बारे में प्रेरित करती है, वो ये है कि वे विकास के केवल इमारतों और सड़कों से नहीं जोड़ते थे। उनके लिए असली विकास था शिक्षित समाज, सक्षम युवा और मजबूत संस्थाएं।
1: आज जब हम डेवलपमेंट इंडिया या विकसित भारत की बात करते हैं ना सलोनी, तो उसके पीछे भी यही सोच छिपी है कि विकास केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक भी होना चाहिए।
0: सही कहा दोस्तों। अगर आप गौर करें तो हर दौर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय से आगे की सोच रखते हैं। वे केवल समस्याएं ही नहीं देखते बल्कि उनके समाधान की दिशा भी तय करते हैं। और पंडित रविशंकर जी भी ऐसे ही दूरदर्शी नेताओं में से एक थे।
1: और शायद आज के युवाओं के लिए उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि नेतृत्व का मतलब आगे चलना नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाना होता है।
0: कितनी खूबसूरत बात है ना। कुछ लोग अपने नाम से नहीं अपने काम से इतिहास में दर्ज होते हैं। समय बीत जाता है लेकिन उनके विचार आने वाली पीढ़ियों का रास्ता दिखाते हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां हमें ये एहसास कराती है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है बल्कि आने वाले कल की दिशा भी है। इन्हीं विचारों को मन में सजाए हुए आइए आगे बढ़ते हैं।
2: वैसे सलोनी, तुम कुछ कह रही थी।
0: बिल्कुल, और ये विचार ही है जो दरवाजे खोलते हैं और समझ आता है कि लाइफ में कठिन से कठिन सिचुएशन में भी अगर कोई एक चीज हमारा रास्ता आसान बनाती है तो वो है सच्चा दोस्त।
1: ये बात तुमने सही कही। समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन वो दोस्त जो कभी किसी शर्त के शर्त के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा हो, वही लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्टर सिस्टम होता है।
0: सही कहा तुमने। और किसी भी मुश्किल दौर में जब पूरा जमाना एक तरफ हो तब दिल में बस एक यही भरोसा होता है कि अगर मेरा दोस्त है तो क्या चिंता है, क्योंकि वो तो कहता है तेरा यार हूं मैं।
1: बिल्कुल।

0: भवानी जरा सोचो, सुबह उठते ही किसी ने कहा, आज तुम अपनी राय नहीं रख सकते, तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते, तुम अपनी पसंद का काम नहीं चुन सकते, या फिर तुम देश में कहीं भी जाकर नहीं रह सकते, तो कैसा लगेगा?
1: कैसा लगेगा? शायद ऐसा लगे कि जैसे जिंदगी की सबसे जरूरी चीज चुनने की आजादी यही छीन ली हो।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं ये मेरी लाइफ है, मेरा फैसला है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक लोकतांत्रिक देश में इन बातों की नींव क्या है? उस नींव का एक महत्वपूर्ण आधार है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19।
1: बिल्कुल दोस्तों, अगर संविधान को देश का रूल बुक कहा जाए तो अनुच्छेद 19 उस रूल बुक का ऐसा हिस्सा है जो हर नागरिक को कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन इसे केवल कानून की भाषा में नहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी

0: भी समझते हैं, वो कहते हैं ना माय लाइफ माय रूल्स,
1: सही बात है। तो दोस्तों मान लीजिए आज किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, कॉलेज में किसी सकारात्मक पहल का हिस्सा बनते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर किसी जागरूकता अभियान का आयोजन करते हैं, या फिर अपने सपनों का अपने इच्छा का करियर चुनना चाहते हैं, इन सभी बातों के पीछे कहीं ना कहीं अनुच्छेद 19 की भावना काम करती है। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं देता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता और किसी भी वेद व्यवसाय व्यापार या पेशे को चुनने की स्वतंत्रता। यानी यह अनुच्छेद हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि हमें अपने सपनों को दिशा देने का अवसर भी देता है दोस्तों।
2: लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि एनीथिंग एनी टाइम। हमारे संविधान ने अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी जोड़ी है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाए, अफवाहें फैलाई जाए या समाज में अलग तरह का मतलब बुरा माहौल क्रिएट किया जाए।
0: बिल्कुल, इसीलिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताओं पर उचित और कानून द्वारा निर्धारित युक्तिसंगत प्रतिबंध भी है, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के हित दोनों के बीच संतुलन बना रहे।
2: और शायद यही बात आज के डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा मायने रखती है भवानी। आज एक पोस्ट, एक कमेंट या एक वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी आवाज का इस्तेमाल जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और तथ्यों के साथ करें,
0: क्योंकि एक जागरूक युवा सिर्फ अपनी बात कहने में विश्वास नहीं रखता, वह दूसरों की बात सुनने और उनका सम्मान करने की संस्कृति भी विकसित करता है। यही तो लोकतंत्र की असली खूबसूरती है।
2: दोस्तों संविधान केवल वकीलों या प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों का विषय नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। और आर्टिकल 19 हमें याद दिलाता है कि आवाज होना एक अधिकार है, लेकिन उस आवाज की गरिमा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कहा सलोनी, लोकतंत्र की सबसे मजबूत पहचान सिर्फ बोलने की आजादी नहीं होती बल्कि सोच समझकर बोलने की संस्कृति है, और शायद यही हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत सीख है।
2: बिल्कुल भवानी, और संविधान की इस खूबसूरती की तरह हमारी पर्सनल लाइफ में दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है, कि यहाँ हर किसी को अपनी बात दिल खोलकर कहने की पूरी आजादी होती है बिना किसी फिल्टर के।
0: सच कहा सलोनी, एक सच्चा दोस्त वही तो होता है जिसके सामने आपको सही बनने का नाटक न करना पड़े। जब पूरी दुनिया आपको जज करने लगे तब सिर्फ वही हो जो आपके साथ आपके पास खड़ा हो।
2: बिल्कुल, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए या दिमाग कितना भी आउट हो जाए, बस उस एक जिगरी यार का फोन आ जाए ना, या वो कंधे पर आकर हाथ रख दे और कह दे कि तू टेंशन मत ले मैं हूँ साथ में, तो दिल को तुरंत सुकून मिल जाता है।
0: क्योंकि अंदर से यह पक्का भरोसा होता है ना कि जब तक वो साथ है तब तक सब संभल जाएगा। यानी जब दिल को यह एहसास होने लगता है कि
2: जाने क्यों दिल जानता है तू है तो आई बी ऑल राइट।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो सवाल पूछे थे जिनका अब सही उत्तर देने का समय आ गया है। भवानी,
1: बिल्कुल सही। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था सलोनी? कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? और इसका सही जवाब है अस्मिता डे।
2: बिल्कुल। और आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में समाचारों में रही कुरुंबा कला की उत्पत्ति मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत का नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र। इसी के साथ दोस्तों, करियर की राह में भी कई बार मन में ये सवाल उठते जाते हैं कि जाने क्यों कभी तक, मतलब अभी हमें अवसर क्यों नहीं मिले, जाने क्यों मंजिल थोड़ी दूर लग रही है। लेकिन याद रखिए, हर मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है।
0: इसी उम्मीद और नए अवसरों के साथ अब वक्त है रोजगार समाचार का, जहां हो सकता है कि आपकी अगली मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि RRB रेलवे सिलेक्शन कंट्रोल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें कुल मिलाकर 199 पोस्ट के निकले हैं।
2: दोस्तों, इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और अधिक जानकारी जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया सहित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों www.rrb

0: www.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 14 अगस्त है, तो समय पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन करें। सलोनी, आज की पूरी बातचीत पर नजर डालूं तो लगता है कि चाहे बात किसी महान वैज्ञानिक की हो, किसी दूरदर्शी नेता की हो या फिर हमारे अधिकारों की हो, हर विषय कहीं ना कहीं हमें एक ही बात सिखाता है और वो है जिंदगी अकेले नहीं साथ लेकर चलने का नाम है। क्या बात कही है भवानी तुमने। और शायद इसी वजह से दोस्ती का रिश्ता इतना खास होता है। हम अपने दोस्तों को चुनते हैं लेकिन फिर वही दोस्त हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में शामिल हो जाते हैं। कभी हंसी की वजह बनते हैं, कभी हौसला देते हैं और कभी सिर्फ इतना कहते हैं मैं हूं ना, और बस मन हल्का हो जाता है।
1: सच कहा, बचपन में दोस्ती का मतलब था कि एक ही बेंच पर बैठना, टिफिन बांटना और स्कूल की घंटी बजने तक इंतजार करना। आज जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, शहर बदल गए हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे महीनों बात ना हो, फिर भी जब उनका नाम मोबाइल की स्क्रीन पर दिखता है ना दोस्तों, तो चेहरे पर वो जो खुशी होती है उसका कोई मोल नहीं होता।
0: और दोस्तों, शायद यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। दोस्ती रोज मिलने से नहीं, दिल से जुड़े रहने से चलती है। जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कोई ऐसा दोस्त है जिससे आपने काफी समय से बात नहीं की है, तो आज का दिन शायद उसी बहाने का इंतजार कर रहा है। एक छोटा सा संदेश, एक फोन कॉल या बस इतना कहना, यार कैसे हो, कभी कभी यही चार शब्द किसी के पूरे दिन को बेहतर बना देते हैं।
1: और याद रखिए, अच्छे दोस्त हमारी जिंदगी में तालियां बजाने नहीं आते, बल्कि जब पूरी दुनिया सवाल पूछ रही होती है ना, तब वो चुपचाप हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि दोस्ती वो रिश्ता है जिसमें औपचारिकताएं कम और अपनापन ज्यादा होता है।
0: तो दोस्तों, आज की इस फ्रेंडशिप डे पर हमारी ये बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने सपनों का पीछा जरूर कीजिए, लेकिन उन लोगों का हाथ कभी मत छोड़िए जिन्होंने हर मोड़ पर आपका साथ दिया है, क्योंकि मंजिलें याद रहती है लेकिन सफर को खूबसूरत बनाने वाले लोग उससे भी ज्यादा याद रहते हैं। और भवानी, आज फ्रेंडशिप डे के दिन क्या तुमने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया? क्योंकि हमने तो पूरी चर्चा में ये कहा है कि अपने दोस्तों को याद कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, तो तुम कैसे फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रही हो आज?
1: तो मैंने भी जब सुबह उठी तब मेरे फोन में इतने मैसेजेस थे, मेरे दोस्तों के फोन कॉल्स भी आए और मैंने भी अपने दोस्तों को उन्होंने सुबह उठते ही फोन करना शुरू कर दिया था। अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, सबको फोन किया और उनको विश किया और उनके हाल चाल पूछा कि तुम कैसे हो। तो भाई, आज का मेरा फ्रेंडशिप डे बहुत अच्छा था और सच मानूं तो उनसे बात करके मुझे इतनी खुशी मिली है कि ऐसा लग रहा है कि बस अब सारी थकान, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस एक मिनट गायब हो चुका हो।
0: मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। सुबह उठते ही तो मैं अपने दिनचर्या के कामों में लगी हुई थी, फिर मेरे दोस्तों का फोन आया, तो उसके बाद हमने ढेरों बातें करी, पूरा स्कूल फ्रेंड से बात करी तो स्कूल की यादें ताजा हो गई और दोस्तों से बात करी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का फ्रेंडशिप डे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हम ये आशा करते हैं कि आपने भी अपने दोस्तों से प्यारी प्यारी बातें की होगी। तो इसी के साथ अब समय हो रहा है हमारा आपसे विदा लेने का।
1: बिल्कुल दोस्तों, और आप अपना, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का युववाणी, और फिर मुलाकात होगी नए विषय, नई ऊर्जा और नई बातों के साथ। तब तक के लिए।

युवा मित्र अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम का नाम था युववाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 10 बजे सुनिएगा रविवासरीय संगीत अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भी आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

ग्रामीण श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा संध्या 7 बजे। कार्यक्रम में आज की चर्चा के विषय हैं अगस्त माह के कृषि बागवानी व पशुपालन से संबंधित कार्य, अतिवृष्टि बाढ़ के समय पशुधन प्रबंधन, VBG रामजी योजना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इन सब के साथ ग्रामीण जगत कार्यक्रम में लोकगीत और लोक भजन तो होंगे ही।

और फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तुलसी कुमार के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत। ये तो था हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक

0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले न छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देशभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डंगू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उभर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की कलाकार हैं सुरों की मलिका तुलसी कुमार। श्रोताओं, हर कलाकार की आवाज के पीछे कहानी होती है, संघर्ष की, मेहनत की, सपनों की और सफलता की। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी गायिका से जिनकी आवाज ने पिछले 2 दशकों में करोड़ों दिलों को छुआ है। उनकी गायकी में मिठास है, भावनाएं हैं और आधुनिक संगीत की ताजगी भी। जी हां, आज का पूरा कार्यक्रम है बॉलीवुड की लोकप्रिय पार्श्व गायिका तुलसी कुमार को समर्पित। आइए शुरू करते हैं उनकी संगीत यात्रा का ये खूबसूरत सफर। 15 मार्च 1986 को नई दिल्ली में जन्मी तुलसी कुमार भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीत परिवारों में से आती है। उनके पिता स्वर्गीय गुलशन कुमार ने टी सीरीज की स्थापना कर भारतीय संगीत उद्योग में एक नया इतिहास रचा। उनके भाई भूषण कुमार दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक टी सीरीज का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी बहन खुशाली कुमार अभिनय और मॉडलिंग की दुनिया में सक्रिय है। लेकिन क्या केवल बड़े परिवार में जन्म लेने से सफलता मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। तुलसी कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोग उन्हें हमेशा गुलशन कुमार की बेटी के

में देखते थे, उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी थी। उन्होंने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत सीखा, घंटों रियाज किया और सुरों को अपनी जिंदगी बना लिया। कम ही लोग ये जानते हैं कि उन्होंने शुरुआती दिनों में रेडियो से जुड़कर भी काम किया और संगीत की बारीकियों को बेहद करीब से समझा। उनका पहला इंडिपेंडेंट एल्बम था लव हो जाए, जिसने उन्हें एक नई शुरुआत दी। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय महान गायिकाओं में से एक बना दिया।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोतों स्वागत है एक बार फिर। दोस्तों हर सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। तुलसी कुमार के शुरुआती गीतों को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने उनकी आवाज की आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगातार संगीत सीखा, गायकी को निखारा और हर गीत के साथ पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। धीरे धीरे संगीतकारों का विश्वास उनके ऊपर बढ़ने लगा, उन्हें नया काम मिलने लगा। ये जो गीत अभी आपने सुना था, फिल्म का नाम था रॉय और स्वर था तुलसी कुमार का। आज वे 75 से भी अधिक फिल्मों में अपनी आवाज दे चुकी है और उनके गीत करोड़ों बार सुने जा चुके हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया हुआ एक बेहद लोकप्रिय गीत।

ये गीत जो भी आपने सुना, ये हमने आपके लिए लिया था फिल्म बादशाहों से, स्वर था तुलसी कुमार का, और ऐसे न जाने कितने गीत उन्होंने गाए हैं, और इन गीतों ने ये साबित किया कि तुलसी कुमार रोमांटिक गीतों की सबसे भरोसेमंद आवाजों में से एक है। संगीत की दुनिया में एक बात और कही जाती है कि प्रतिभा आपको शुरुआत तो दिला सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास ही आपको महान बनाता है, और तुलसी कुमार की यात्रा इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। अगर पिछले 15 वर्षों की बॉलीवुड संगीत पर नजर डालें तो शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिसमें तुलसी कुमार की आवाज सुनाई न दी हो। उन्होंने रोमांस, दर्द, पॉप, डांस और सूफी अंदाज, हर शैली में अपनी पहचान बनाई है। उनके बहुत सारे लोकप्रिय गीत हैं जिसमें है सोच ना सके, पानियों सा, तेरा बन जाऊंगा, दिलबर, इन्नी सोनी, लगदी लाहौर दी, नाम, माही मेरा दिल। इनमें से कई गीतों ने करोड़ों व्यूज और स्ट्रीम्स हासिल किए। और क्या आप जानते हैं कि सोच ना सके के लिए तुलसी कुमार को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह गीत आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट की पहली पसंद बना हुआ है। उनकी आवाज की सबसे बड़ी विशेषता है सादगी, भावनात्मक गहराई और स्पष्ट उच्चारण। यही कारण है कि वे आज की पीढ़ी के साथ साथ हर उम्र की श्रोताओं की पसंद बनी हुई है। तो अब समय है एक और सुपरहिट गीत का।

पहली लीला। इस फिल्म में अभी आपने तुलसी कुमार को सुना। आइए सुनते हैं इन्हीं का गाया हुआ एक और बेहद लोकप्रिय गीत। फिल्म का नाम है लुका छिपी।

इस गीत के साथ ही आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आज की कलाकार थी तुलसी कुमार। मेरी मेरी 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी और उसके पश्चात 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजसमंद और उदयपुर जिलों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे और सावन माह का पहला सोमवार कल प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष तैयारियां। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअली शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को हमेशा नशे से दूर और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
1: देश का युवा आत्म

0: विश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जा रहा है और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। आज के कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें माई भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों और आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी शामिल रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जयपुर में सुबोध कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा की शपथ दिलाई। उन्होंने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त, अनुशासित और विचारवान बनने का आह्वान किया।
2: नशा आग एक कोने को लगी और हवा उधर से आई तो सभी गांव के गांव जल जाता है। अपने गांव में एक बाजू भी शुरू हो गई तो दूसरे बाजू भी लग जाएगी, इसलिए घुसने आवश्यक है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक नशा वाला, तो उसको पहले मुक्त करो, नहीं तो वो आज अपने घर तक भी आ जाएगी। इसका भी ध्यान रखो, वो समझ में भी नहीं आएगी।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ उदयपुर के नगर निगम ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से अधिक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत यूथ आइकन पोस्टर का भी विमोचन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को वर्चुअली सुना। सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय शांतिवन परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजसमंद जिले में 491 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों और राजीविका समूह की महिलाओं को चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनसेवा, पारदर्शिता और सर्वांगीण विकास के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। किसान, मजदूर, युवा और महिला, लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है। 2.5 साल पहले आपने जो हमारी सरकार को चुना था, विश्वास के साथ आपने चुना था और जिन वादों को लेकर के हमने आपके बीच में गए थे, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने उदयपुर में 421 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने उदयपुर को शक्ति और भक्ति की भूमि बताते हुए कहा कि राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर्यटन के लिहाज से समृद्ध जिले हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनका पुनर्वास करने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में बाल अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाओं और बालकों को सुरक्षित आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले। उन्होंने बालिकाओं के पुनर्वास के काम को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: www.rti.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र को प्रौद्योगिकी आधारित भविष्य के लिए तैयार हथकरघा इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र अगले 5 वर्षो में हथकरघा ज्ञान का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार विकसित करेगा, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा और देशभर में बुनकरों, संकाय सदस्यों और हथकरघा पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगा। गौरतलब है कि देश का हथकरघा क्षेत्र 35 लाख से ज्यादा बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। इनमें से करीब 70% महिलाएं हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। ये सम्मेलन हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्थिति को मजबूत करने में भी सहायक होगा। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देशभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देशभर से 100 से अधिक जीआई पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी स्पर्धा में कोटा की अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में ये पदक हासिल किया। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है। अरुंधति ने मीडिया से बातचीत में खुशी और उत्साह व्यक्त करते हुए अपनी जीत का श्रेय परिजनों और कड़ी मेहनत को दिया।
1: बहुत प्राउड हो रहा है। मुझे पता था कि डिसीजन मेरे ही इतने आने वाला है क्योंकि मैंने काफी टाइम से बहुत मेहनत करी है इसके लिए और 2024 का जब ओलंपिक्स मेरे हाथ नहीं आया था तब से ये सारे कॉम्पिटिशन मेरे टारगेट थे और आज इन्हीं कॉम्पिटिशन में अपने आप को पोडियम पे फर्स्ट नंबर पे देख रही हूँ। तो इमोशंस अपने बाहर आ रहे थे कि कैसे कितना कुछ मिस किया है लास्ट 2-3 ईयर्स में, बट अभी सब कुछ अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। मैं बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाके और अपने मम्मी पापा को ये मेडल पहनाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं उनको बताना चाहती हूँ जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया ना मेरे लिए उसका रिजल्ट मैं उनको दूंगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुंधति की इस जीत पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि कोटा में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
2: इस जीत का कोटा का गर्व सम्मान बढ़ा है। मैं उसके बधाई देता हूँ, उनके परिवार को बधाई देता हूँ। वो छोटी थी जब से बड़ी मेहनत कर रही है और आज इसका सपना पूरा हुआ है। अभी ओलंपिक में भी जीते और विश्व कप भी जीते, ये हमारा सपना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेल सुविधाओं के लिए कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सारे खेलों की सुविधा कोटा में होगी। गांव, शहर, धानी और विद्यार्थी देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिता के अंदर मेडल जीत सके।
0: सावन माह का कल पहला सोमवार है। जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह कांवड़ियों के दल पवित्र सरोवरों से जल लाने के लिए पहुंचे हैं। जयपुर में ताड़केश्वर जी और झारखंड महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के अन्य मंदिरों में भी प्रमुख शिवालयों में कई धार्मिक आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा में सुबह तेज बारिश हुई। पाली जिले में कई स्थानों पर तेज तो कहीं हल्की बरसात हुई। बारा से भी रुक रुक कर बारिश होने के समाचार हैं। उदयपुर जिले में कई स्थानों पर हुई तेज बारिश के बाद सीसारमा नदी 3.25 फीट बहाव पर चल रही है। पिछला झील में पानी की आवक जारी है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने आज उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश और जयपुर, अजमेर तथा बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार कल से मॉनसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने से जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में बारिश में कमी होने की आशंका है। हालांकि 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के

0: युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजसमंद और उदयपुर जिलों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे और सावन माह का पहला सोमवार कल प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष तैयारियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बूंदी जिले की चिट्ठी सुने। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों और धर्मों के व्यक्तियों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। इसे लेकर बीते दिनों जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बैठक ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों, शहर के गणमान्य नागरिकों और समाज सेवियों से चर्चा करते हुए यूसीसी के प्रावधानों की जानकारी दी गई और इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में सुझाव देने की अपील की। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सुझाव इकट्ठा करने की इस प्रक्रिया में समाज के हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जिले के कई गाँवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इनमें हट्टीपुरा, गुड़ानाथावतान, रामनगर जाटान गांव शामिल थे। जिला कलेक्टर ने गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर यहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण, लाड़ो प्रोत्साहन योजना और GSY के लंबित भुगतान तुरंत करवाने के निर्देश दिए। बीते दिनों राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ जनहित के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिले में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना के तहत कार्यरत अकुशल श्रमिकों के हित में कार्यस्थल के समय में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। नए आदेशों के अनुसार अब श्रमिकों के लिए काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किए गए। विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में पहुंचकर पदाधिकारियों ने संतों, महंतों और गुरुओं का विधि विधान से अभिनंदन किया। पिछले दिनों जिले में नशा मुक्त फॉर युवा विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने जिले के युवाओं से माय भारत पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कर प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आह्वान किया। कोटा के संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बीते दिनों नैनवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय, राजस्व न्यायालय और न्यायपालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीते दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश परनामी ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विचाराधीन बंदी गण से मुलाकात कर उनके मामलों के बारे में जानकारी ली। साथ ही वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से जिले के 18 उत्कृष्ट चिकित्सकों और मृत्यु के बाद देहदान करने वाली दो महिलाओं के परिजनों का अभिनंदन किया गया। सोसाइटी के चेयरमैन राजेश कृष्ण बिड़ला ने देहदान करने वाली महिलाओं के काम को अनुकरणीय बताते हुए उनके परिजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बूंदी रेडक्रॉस शाखा से जिले में व्यापक स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाकर समाज को व्यसन मुक्त बनाने का आह्वान किया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने समारोह को सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा यातायात, जाप्ता, बैंड सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आवागमन और परिवहन

0: टाइल, टॉयलेट, मेडिकल टीम, पेयजल, अग्निशमन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत रो लगास हासिल करवा खातर युवा वासों शारीरिक रूपों चुस्त, मानसिक रूपों मजबूत और आत्मविश्वासों भरपूर रहबा ने कया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ राजसमंद और उदयपुर जिला में 900 करोड़ रुपया सो 32 लागत रा विकास कामारो लोकार्पण करिया और नींव राखी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला। और सावन मारो पहलो सोमवार काल प्रदेश भर शिव मंदिर माए खास तैयारियां। समाचार आरे सागे, मैं रचना पारीक और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के विकसित भारत खातर मोटियारा ने शारीरिक रूपों स्वस्थ, मानसिक रूपों मजबूत और आत्मविश्वासी वेणु चाहिए। आज नई दिल्ली में विकसित भारत खातर नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान री वर्चुअल शुरुआत करता थका वे कया के युवावा ने हमेशा नशा सु दूर और स्वस्थ जीवन शैली अपनावनी चाहिए।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री कया के नशा मुक्ति खातर 100 हफ्तारों जन भागीदारी अभियान शुरू करियो जा रियो है, जिनमें प्रदेश भर में हर दीतवार ने साप्ताहिक कार्यक्रम वेला। कार्यक्रम में 28,000 ठोड़ा सो 1 करोड़ सो बत्ता युवा भाग लेना। इनमें भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना रा स्वयं सेवका रह सागे, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लब, गैर सरकारी संगठन और आध्यात्मिक संगठन रा प्रतिभागी शामिल वेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज जयपुर सुबोध कॉलेज में राख्या कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प अभियान रे तहत नशा मुक्त युवारी शपथ दिलाई। वणा छात्रा रह सागे प्रधानमंत्री रो संबोधन भी सुनिया। वणा युवा वासु नशा मुक्त अनुशासित और विचारवान बनबा ने कया।
2: नशा एक आग है, आग वो एक कोने को लगी और हवा उधर से आई तो सभी गांव के गांव जल जाता है। अपने गांव में एक बाजू भी शुरू हो गई तो दूसरे बाजू भी लग जाएगी, इसलिए घुसने आवश्यक है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस पे, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक नशा वाला, तो उसको पहले मुक्त करो, नहीं तो वो आज अपने घर तक भी आ जाएगी। इसका भी ध्यान रखो, वो समझ भी नहीं आएगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवा हमारे सागे उदयपुर नगर निगम ऑडिटोरियम में वीसी जरिए प्रधानमंत्री को संबोधन सुनिया। इन मौके मुख्यमंत्री कया के राष्ट्र निर्माण में युवा वारी महत्व भूमिका है। मुख्यमंत्री कया के राज्य सरकार मोटियारा ने नशा सु दूर राग बा खातर प्रभावी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षण संस्थान माए नशीला पदार्थारी रोकथाम खातर 350 सु बत्ता कॉलेज माए नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। वे बताया कि अभियान माए चोखो योगदान देबावाड़ा स्वयं सेवका और संगठन ने 50वां, 75वां और 100वां सप्ताह पड़ाव माथे सम्मानित करियो जावेला। इन दौरान मुख्यमंत्री युवावा ने नशारी लत सु दूर रहबारो संकल्प भी दिलायो। साथे ही नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत यूथ आइकन पोस्टरो विमोचन भी करियो। प्रदेश न्यारे नेरा जिला में राख्या कार्यक्रम में बड़ी तादाद में मोटियार प्रधानमंत्री संबोधन ने वर्चुअल सुनिया। सिरोहिरा आबू रोड ब्रह्म कुमारी मुख्यालय

0: शांतिवन परिसर माए भी कार्यक्रम राख्यो गयो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद जिला माए 491 करोड़ रूपया सो 32 लागत वाला न्यारा न्यारा विकास कामा रो लोकार्पण करियो और नींव राखी। इन मौके वना सामाजिक सुरक्षा योजना रा लाभार्थियां और राजीविका समूरी महिलावा ने चेक भी बांटिया। कार्यक्रम में संबोधित करता थका श्री शर्मा कया कि राज्य सरकार जन सेवा पारदर्शिता और पूरा विकास रह सागे समाज रा हरेक वर्ग रा विकास खातर लगातार काम कर रही है।
1: हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। किसान मजदूर युवा और महिला लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है। 2.5 साल पहले आपने जो हमारी सरकार को चुना था विश्वास के साथ आपने चुना था और जिन वादों को लेकर के हमने आपके बीच में गए थे हम एक एक वादे को पूरा करेंगे ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
0: इनसे पहले मुख्यमंत्री उदयपुर में 421 करोड़ रुपया रा कई विकास कामारी सौगात दी। वना उदयपुर ने शक्ति और भक्ति री भूमि बताता था का कया के राजसमंद उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर्यटन रा लिहाज समृद्ध जिलो है। इन हलकारा विकास खातर राज्य सरकार कमर कस राखी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कया के सड़क माथे भीख मांगबा वाला टाबरा ने चिन्हित कर वारो पुनर्वास करबा और माने शिक्षा से जोड़बा खातर जयपुर माए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करियो जावेला। उप मुख्यमंत्री शासन सचिवालय माए बाल अधिकारिता महकमारी योजनावारी समीक्षा बैठक रे दौरान कया के राज्य सरकारों लगस है कि बालिकावा और बालका ने सुरक्षित आवास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले। वना टाबरियारा पुनर्विकास रा काम ने प्राथमिकता सु करबारा निर्देश दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काल नई दिल्ली माए हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला। इन केंद्र ने प्रौद्योगिकी आधारित भविष्य खातर तैयार हथकरघा इकोसिस्टम रा निर्माण री दिशा माए एक महत्व कदम मानियो जा रियो है। करीब 12 करोड़ रुपया री लागत सु बनबा वालो ओ केंद्र आवता 5 वर्षा माए हथकरघा ज्ञान रो एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार विकसित करेला। AI सक्षम उपकरण बनावेला बेहतर करघा प्रौद्योगिकी ने विकसित करेला पेटेंट और अनुसंधान ने बढ़ावो देवेला स्टार्टअप ने प्रोत्साहित करेला और देश भर रा बुनकरा संकाय सदस्य रा हथकरघा पेशवरा ने प्रशिक्षित करेला। ध्यान जोग है कि देश रो हथकरघा हलको 35 लाख सु बत्ता बुनकरा और इनसु जुड़िया मजूरा ने रोजगार देवे है। इनमाए करीब 70% महिलावा है। राष्ट्रमंडल खेला माए मुक्केबाजी होड़ माए कोटारी अरुंधति चौधरी सोना रो तमगो जीतर इतिहास रच दिनो। वना 70 किलोग्राम वर्ग रा फाइनल मुकाबला माए उपदक हासिल करियो। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए मुक्केबाजी रो स्वर्ण पदक जीतबा वाली प्रदेश री पहली महिला बॉक्सर है। अरुंधति मीडिया सु बातचीत माए खुशी और उछाव जताता था आपरी जीत रो श्रेय आपरा घराला और कड़ी मेहनत ने दिनो।
2: बहुत प्राउड हो रहा है। मुझे पता था कि डिसीजन मेरे ही इतने आने वाला है क्योंकि मैंने काफी टाइम से बहुत मेहनत करी है इसके लिए और 2024 का जब ओलंपिक्स मेरे हाथ नहीं आया था तब से ये सारे कॉम्पिटिशन मेरे टारगेट थे और आज इन्हीं कॉम्पिटिशन में अपने आपको पोडियम पे फर्स्ट नंबर पे देख रही हूँ तो इमोशंस अपने आप बाहर आ रहे थे कि कैसे कितना कुछ मिस किया है लास्ट 2-3 ईयर्स में बट अभी सब कुछ अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। मैं बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाके और अपने मम्मी पापा को मेडल पहनाना चाहती हूँ बिकॉज मैं उनको बताना चाहती हूँ जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया ना मेरे लिए उसका रिजल्ट मैं उनको दूंगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अरुंधति री इन जीत माथे माने बधाई देता था का कया के पूरा देश उन माथे गर्व कर रियो है। वना कया के कोटा माए खेल री सुविधावा ने बढ़ावा खातर लगातार कड़ी कोशिश करी जा रही है।
3: जीत का कोटा का गर्व सम्मान बनाया मैं उसके बधाई देता हूँ उनके परिवार को बधाई देता हूँ। वो छोटी सी जब से बड़ी मेहनत कर रही है और आज उसका सपना पूरा हुआ है। अभी ओलंपिक में भी जीते और विश्व कप भी जीते ये हमारा सपना है। बहुत बहुत शुभकामना बताए खेल सुविधाओं के लिए कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सारे खेलों की सुविधा कोटा को गाँव शहर धानी विद्यार्थी देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिता के अंदर मेडल जीत सके।

साल सावन रो पहलो सोमवार है। जयपुर समेत प्रदेश का खास शहरा राजशिव मंदिरा माए खास पूजा अर्चना की तैयारी करी जा रही है। ठोर ठोर कावड़ियारा दल पवित्र सरोवर सो जल लाभा खातर पू गया है। जयपुर माए ताड़केश्वर जी और झारखंड महादेव मंदिर समेत न्यारा न्यारा शिवालया माए श्रद्धालुआ की भारी भीड़ रचालता प्रशासन खास इंतजाम करियो है। प्रदेश में न्यारी न्यारी ठोड़ा माए आज हल्को में बरसियो। भीलवाड़ा माए सुबारे सु तेज पानी बरसियो। वठे नेपाली जिला माए कई ठोड़ा माथे तेज तो कटे कटे हल्की

काम कर्यो है। प्रदेश में न्यारी न्यारी ठोड़ा में आज हल्को में वरसो, भीलवाड़ा में सुबारे सु तेज पानी वरसो, वठे नेपाली जिला में कई ठोड़ा माथे तेज तो कटे कटे हल्की बरसात भी, बारां सु में रुक रुक कर बारिश होबारा समाचार है। उदयपुर जिला में कई ठोड़ा माथे तेज बारिश के पाछे सिसार में नदी 3.25 फीट बहाव माथे चल रही है, वठी ने पिछोला झील में भी पानी री आवक जारी है। इन बीच मौसम केंद्र जयपुर आज उदयपुर और जोधपुर संभागरा कुछ हल्का में छितराई तो कटे कटे तेज बारिश अंदाजो जतायो है। सागे ही जयपुर अजमेर बीकानेर संभागरा कुछ एक भागा में मेह बरस सके है। महकमारे मुजब कालसु मानसून ट्रफ लाइन रा उत्तर ईकाने शिफ्ट होबा सु जोधपुर उदयपुर और कोटा संभागरा जिला में बारिश की कमी रा आसार है। हालांकि 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी हल्का, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज बह सके है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत और लगस हासिल करवा खातर युवा वासू शारीरिक रूप में चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहबा ने कया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद और उदयपुर जिला में 900 करोड़ रुपया से 32 लागत रा विकास काम और लोकार्पण करिया और नींव राखी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काल नई दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र रो उद्घाटन करेला। और सावन मारो पहलो सोमवार काल प्रदेश भरा शिवालया में खास तैयारियां। इन रसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो वहां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

कश्मीर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजने को हैं। अब हमारे ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे, ग्रामीण जगत।

0: कार्यक्रम सुनिया सगला किसान भाई बहनों ने आपी बहन मुक्ता जैन
1: और बजरंग सारस्वतरा घना घना राम राम। मुक्ता बहन आपने भी मारा घना घना रामा सामा।
0: राम राम बजरंग भाई।
1: मुक्ता बहन देखो सा अगस्त रो महीनो काल लाग गयो है और आज अगस्त रो दूसरो दिन है, 2 अगस्त है। तो अपा बात करा सबसे पहली के इन महीने महीने किसान भाई ने कई कई कृषि कार्य करना चाहिए, क्योंकि समय सारू आपा जी की चर्चा कर ले वहां तो किसान भाई है बे सावचेत रहे और खेती बाड़ी है बा चोखी हुए मुनाफो हुए उत्पादन होवे और कोई तरह रो नुकसान ना होवे।
0: मजरूम भाई अगस्त रो महीनो लागे और साथ साथ देखो सब फूट रो महीनो चाल रहा सावन रो महीनो।
1: बिल्कुल सर, बोले
0: शंकर जी रो है और काल रहे सावन रो पहलो सोमवार। तो आपा देखा के मंदिर में और चारों मेर अपन चोखो नजारो दिख रहे है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है आपने मतलब दिखा रही है, सावन बरस रही है थोड़ो थोड़ो। और कृषि राज्य का कार्य है तो अपने किसान भाई बहना ने करना ही पड़ सी और किसानारी आय बढ़ाने पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने वास्ते रोजगार अवसर उपलब्ध कराने और तीनों क्षेत्र ही कृषि कार्य वास्ते महत्वपूर्ण होया करे। और भारतीय कृषि मुख्य रूप से जिकी है नी बारिश पर आधारित हुए, इन वास्ते वर्षा ऋतु रे प्रत्येक महीना वास्ते कृषि रीज की गतिविधियां नी बा महत्वपूर्ण होया करे।
1: सच्ची कही मुक्ता बहन। और देखो सा आप जी साउंड रोके हो तो ओ जको समय है तो ओ खरीफ फसला री बढ़वार सारू पौधा रे विकास सारू और खेत्र प्रबंधन अच्छी तरह करें आप करा आपा पशुधन री सुरक्षा करा ई नजर सु सबसु व्यस्त महीना में एक मानी जे है। और किसान भाई ने एक मिनट ही फुर्सत हुए कोनी बिना आपरी कमर

0: पादरीकरण सारू और भाग भाग र काम करे है।
1: और बजरंग भाई देखो अगस्त रे महीना रे देखा के बर्षा भी हुआ करे है, जिसु कहीं है खेती में नमी बनी रहे, पौधा री वृद्धि भी तेजी से हुए है। और दूसरी ओर देखा तो अत्यधिक वर्षा अगर हो जावे नहीं तो जल भराव, खरपतवारी अधिक वृद्धि, कीट एवं रोगारो जी को प्रबंधन है और संक्रामक जी का रोग है वह बढ़ सके है। तो ई वास्ते कही है कि इस समय में वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन, समुचित बागवानी, तकनीकी और व्यवस्थित पशुपालन पद्धतियां रो भी मतलब किसान भाई ने अपनाना आवश्यक होया करे है। अगर किसान समय माथे उचित कृषि कार्य कर लेवे तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों में चौकी लाभ ले सके है।
0: बिल्कुल साहब, और लागे हाथ आप बात करे अगस्त रो महीनो है इरो खेती बाड़ी में जिको महत्व है, तो खरीफ मौसम रो मध्य चरण है। इन समय में आपार खेता में धान है जिया के बाजरो है, ज्वार है, मक्को है और जिन ठोड़ सोयाबीन लीजे है। आपार बीकानेर कई भागा में कपास री खेती भी हुए है, मूंगफली, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, यानी कि कुल मिलार अनाज हो चाहे दलहन चाहे तिलहन, सगड़ी फसलारी तेजी से बढ़वार होवे है। कई कई थोड़ा बुआई भी हुए है। इन अवस्था में पौधा ने एक तो चाहिए है पर्याप्त पोषण, सागे सागे जल निकासी रो आछो प्रबंध होना चाहिए, कठी बिरखा रो पानी अणु तो भेड़ो नहीं होना चाहिए, फसल माथे पौधा माथे कीट और रोगारो प्रकोप नहीं होवे, इन सारू रोग नियंत्रण रा जतन करना है और खरपतवार प्रबंधन है। बीरी जिकी जरूरत है बिना समझता थका आपने समय सारू कदम उठावना है। थोड़ी सी भी जे आप लापरवाही करी तो उत्पादन में भारी कमी रो कारण बन सके।
1: और बजरंग भाई देखो अगस्त में खेतारो जी को नियमित निरीक्षण भी अपन जरूरी है करनो, क्योंकि किसान जी की यानी वो पौधारी ऊंचाई है, पत्तियारो रंग है, जी का अनेक तरह का रोग लक्षण है, कीटारी जी की उपस्थिति है, बी पर अगर ध्यान दे ले नहीं तो पौधारी जी की वृद्धि है बी पर चौकी बढ़वार भी न मिल सके है। और इधर अलावा जी की तेज हवा चला या वर्षा रहे दौरान जी का पौधा गिर जावे नहीं बाग में भी वो अच्छे से मतलब बिंगो रोकथाम कर सके है। और अभी आप बात करी खरपतवारी के अगस्त रे महीना में वर्षा रे कारण खरपतवार भी बहुत तेजी से बढ़े है। और खरपतवार फसला रे सागे जल, पोषक तत्व, सूर्य रो प्रकाश और स्थान रे लिए भी प्रतिस्पर्धा करे। तो बजरंग भाई आप मने इधर नियंत्रण रा थोड़ा उपाय बताओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सा, इधर नियंत्रण सारू आप कई भांतरा जतन कर सका है, जिया के आपा समय पर निराई गुड़ाई कर सका तो खरपतवार पर आपा नियंत्रण कर सका, आपा हाथा सु भी खरपतवार निकाल सका और मशीना जकी है, छोटा यंत्र है, बड़ा यंत्र है, बारो उपयोग कर सका और जरूरत मुजब आपा खरपतवार नाशी रसायन है, यानी कि हूँ आकनी चाहूँ कि कम सु कम आपा ने रसायन और उपयोग करना है, जैविक खेती ही अपनावनी है। जरूरत लागे तो आप खरपतवार नाशी रसायन और वैज्ञानिक प्रयोग कृषि वैज्ञानिक सलाह माथे कर सको और खेता में आप नियमित निगरानी करो और पानी भेड़ो नहीं होन दो तो भी थोड़ खरपतवार घनी पनपेला ही कोनी।
1: और बजरंग भाई देखो यहाँ तो आप राजस्थान धरती दोराई सूखो ही रहे पर फिर भी अगर ज्यादा वर्षा हो जावे नहीं तो अगर तेज बारिश हो जाए या वर्षा ज्यादा हुआ तो खेता में पानी भी भर सके। तो जल भराव सु कही है कि पौधा की जिकी जड़ है भी में ऑक्सीजन को नहीं मिले और जड़ है जिकी सड़न लाग जाए तो इन कारण पौधा पीला भी कई बार आप देखा पड़ जाए और बांगी वृद्धि रुक जाए। तो इन समस्याओं से बचने वास्ते भी कुछ बात बताओ आप। और इन वास्ते देखो बजरंग भाई आप खेता में उचित ढाल बना सका हा, जल निकासी हेतु नालियां भी तैयार कर सका हा, अतिरिक्त पानी ने शीघ्र बाहर निकालनो चाहिए और नीची जी की भूमि है बिन वास्ते भी आपने विशेष सावधानी रखनी है।
0: बिल्कुल सर, और अपर अनाज जड़ी फसला है वे कई समय तक तो पानी ने सहन कर सके, पर कपास है, मूंगफली है या सोयाबीन है, ए फसला जर जल जठे भरी जावे है, पानी भेड़ो हुए है, वीर प्रति घनी संवेदनशील हुए है, बटवार हुए कोनी अर खरपतवार पनप जावे, इर कारण आपर जी का मूल पौधा है बारी बटवार है बा रुक जावे। तो अपन ध्यान देवनो है और उर्वरकारो वैज्ञानिक उपयोग करनो है। इ बारे में बताऊं तो फसलारी बडवारी वेड़ा पर्याप्त पोषण घणो जरूरी हुए है। अगस्त महीने में अनाज है या दूजी खरीफ फसला है बाने नाइट्रोजन री दूजी या तीजी किस्त देवन री सलाह दीजे है। उर्वरका रो प्रयोग करती वेड़ा अपने कई बातों रो ध्यान रखना है, जिया के माटी रो परीक्षण पेली करवार पछे ही उर्वरक देना है, अपर खुद रे हिसाब देना कोनी है। वर्षा रुकने रे बाद में अपने उर्वरक का उपयोग करना है, और उर्वरक दिया पछे हल्की सिंचाई या बिरखा जे हो जावे थोड़ो छांटो छिड़को हो जावे तो घणो बढ़िया रहे और जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकारो आपने संतुलित उपयोग करनो है। और जे तताई बात करी जैविक खाद री तो अतिरिक्त गोबर है भी दी सड़ोरी खाद या वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद इरो प्रयोग आपा माटी री उर्वरता बढ़ाने में करा तो आपने घनी सहायता मिले और कम लागत में घणो मुनाफो होवे।
1: बजरंग भाई बहुत ही चोखा चोखा जी आप बताया है कि अगस्त रे महीने में अपन ने कृषि बागवानी और पशुपालन संबंधित अनेक तरह का काम करने और इरे सगे सगे आप एक काम और कर सका
0: वो कहीं कर सका
1: कीट और रोग प्रबंधन
0: बताओ
1: जी हाँ की कही है कि अगस्त रे महीने में नमी अधिक हुआ है जिसमें कही है कीट और जिका रोग है वे सक्रिय हो जाया करे तो धान में अनेक तरह का जी तना छेदक है पत्ती लपेटक है कपास में सफेद मक्खी है सोयाबीन में गर्डल बीटल है और मक्का में फॉल है आर्मी बर्म है जिका कीट हुए नी पनप जाया करे और रोगा में आप बात करा तो झुलसा रोग है पत्ती धब्बा रोग है जड़ सड़न है फफूंद जनित भी अनेक तरह का रोग है वह भी आपने दिखण मिले तो इन्हें नियंत्रण हेतु भी आपने कई जहाँ समेकित कीट प्रबंधन है वो आप अपना सका
0: तो इधर रूप में आप रोग प्रतिरोधी किस्म है बारो चयन कर सका है फसल चक्र अपनावा तो भी घणो बढ़िया रहे जैविक कीटनाशक रो प्रयोग कर सका या पछे फेरोमोन ट्रैप है बिने भी आप लगा सका और जरूरत पड़े तो आप कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि वैज्ञानिक सलाह ले और रासायनिक दवाया रो सीमित उपयोग कर सका।
1: तो बजरंग भाई बहुत ही चोखी आप जानकारी दी अपना किसान भाई अगस्त रे महीने में जिको भी आपा कृषि रा खेती बाड़ी रा काम कर रहे पहला सुबह अगर जानकारी हो तो वह आपकी फसल में चोखी मतलब कर सके और उत्पादन अच्छो ले सके। तो बजरंग भाई देखो सावन रो महीनो चाल रो है छांटो छिटको हो रहा है तो इन वास्ते जरूरी है कि आप फूटो से गीतो ने सुनना
0: बिल्कुल साथ चौपाल में भी आपा बादल हो तो गर्जन लागो आवसा सुना ओ गीत

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
4: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट, धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
3: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
4: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2,000 से 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
3: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
4: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: तुस संदेशा सुनिया और संदेशा पेली सांतरो सो गीत लो सुनायो बादलियो तो गर्जन लाग्यो। देखो सा मुक्ता बेन बादलियो तो गर्जे है बरसे भी है, जे कठी ओ अणु तो बरस जावे या जरूर तू बत्तो बरस जावे और कठे के थोड़ा में तो भाई बाढ़ भी आ जावे। पर इन दोड़ा धरती में तो कोनी होवे नहीं, बहुत कम कोई ऐसा बात सुनी है। बाकी दूजा प्रदेश जेका है दूर दूर बठे बिहार का नहीं मोकड़ी बाढ़ आवे है, जठे नदी नदियां घनी है नाड़ा घना है और देखो ओ तो प्रकृति रे हाथ है, कोई अपारो बस कोनी। अपर अठे भी अणुति बिरखा हो जावे तो मुक्ता बेन एड़ा जी हालात उत्पन्न हो जावे तो अपरे पशुधन रो प्रबंधन किया करा, ई बारे में आपने ध्यान होनो घणो जरूरी है।
1: बजरंग भाई देखो सबसे बड़ी बात है कि जो आपन भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और अठेरी कृषि रे साथे साथे आपा जिका किसान भाई है वे पशु पालन सु भी आपनी अर्थव्यवस्था ने मजबूत आधार दे रहे है। देश रे जिका करोड़ों किसान है वे आपनी आजीविका रे वास्ते गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट घोड़ा और भी जिका पालतू पशु है वा पर निर्भर रहे है। और आप जिया बात बताई के अतिवृष्टि और बाढ़ रे समय आपा तो बिन समय में कही है सुरक्षा केवल आर्थिक आवश्यकता को नहीं बल्कि भाई और भी मजबूती की आवश्यकता हुए तो इन वास्ते कही है कि किसान भाई लोग हुए नहीं बने मतलब अतिवृष्टि रोज को सीधो प्रभाव है पशुआ रे स्वास्थ्य पर

0: पोषण पर, उत्पादन क्षमता पर पड़े हैं। तो इन वास्ते लंबे समय तक जटे जल भराव रहने से पशु तनावग्रस्त हो जावे हैं और बमे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जावे और कई बार पशु जिको है मतलब शरीर में भी बीमारियां हो जावे हैं, पशु पड़ गए घायल भी हो सके हैं और अगर बाढ़ आ जाए या मतलब कचरो या मतलब जी हम आप गीले हो जावे ने तो बिन सुखाई है कि बिन पानी में भी मतलब बिन खराब हो जावे है, पशु में कुपोषण और पाचन संबंधी समस्या भी हो जाया करे है। तो इन वास्ते सबसे पहला है कि पशुओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय मतलब चौकी जगह होनी चाहिए जटे वे आसानी से रह सके, सुख होनी चाहिए जटे रहे बटे वो सुख होवे और दूसरी बंगी जो चारों गीलो हो जाया करे नी तो अगर फसल खड़ी है खड़ी फसल नष्ट हो जावे तो सुखो चारों भी आपने को नहीं मिल सके वो भी गीलो हो जाए। तो इन वास्ते जरूरी है कि पशुआ रो जिको खाने रो जिको आहार वो हुए बिने किसी जगह रखा जटे बिने पानी से बचा सका वो गीलो नहीं हुए और जटे वे खड़े है भी साफ सफाई रखने भी घनी आवश्यकता हो या करे बजरंग जी और ताकि पशु ने कोई जिका रोग है छोटा मोटा मच्छी मक्खी मच्छर हुए नी बेबी नहीं खावे कई तरह का रोग पनप जाया करे तो भी सुबह ही सुरक्षा हुए और पशु चिकित्सक भी आप सलाह ले सका।
1: बिल्कुल सर, तो पशु प्रबंधन है वो आपने करना है और आपने बाद तैयारी करनी है कोई भी आपदा आवे भगवान करे कि ना आवे अपने एक तो सुरक्षित स्थान की पहचान करनी है जिको ऊंची ठोड़ है सूखी ठोड़ है बठे आप पशुआ ने ले जा सका अपने पहली तैयारी रखनी चाहिए। पशुआ की पहचान भी अपने करण सारू कान रमाइन टेग है या गले में पहचान पट्टी है। आजकल है तो नो जमानो है भाई विज्ञान बहुत तरक्की कर गयो माइक्रो चिपा लगन लागी पशुआरे जी के पशु बिछड़ जावे तो बने आसानी से पाछा आपा अपर कने ले सका या बने ढूंढ सका। चारे रो भंडारण है वो अपने सुरक्षित स्थान पर करनो है जीरो जिको भंडार गृह है वो सूखो होनो चाहिए जटे सीलन नहीं आवे पानी नहीं आवे साइलेज या हे बना राखनो ठीक रेवे और मोटी बात है टीकाकरण। मानसून शुरू होने पहली सगड़ा पशुआरू टीकाकरण घनो जरूरी है कि देखो इन समय में खुरपका मुंहपका गलघोंटू कई भादरा रोग है वे पनप सके। पशुआ में जिका परजीवी है आंतरिक और बाहरी भीतर आड़ा और बाहर आड़ा चींचड़ है और है तो ये सब सारू आपने तैयारी रखनी है और सब रो निराकरण करना है समय पर। पशुशाला में साफ सफाई स्वच्छता रखनी है और प्राथमिक उपचार सामग्री है बा आपने हर समय खने रखनी है।
0: और बजरंग भाई इन्हें सगा सगा पर जरूरी है कि पशुआ में बाढ़ दौरान अधिक अधिकांश जल स्रोत दूषित हो जावे तो पशुआ ने उबलड़ वो पानी और क्लोरीन युक्त या सुरक्षित स्रोत पानी उपलब्ध करवाने हैं। दूषित पानी पिलाने से बने दस्त हैजा और भी अनेक तरह की बीमारियां हो जाया करें। इन्हें सागर सागर संतुलित आहार यानी सूखो चारो भूसो दाणो मिश्रण खड़ी मिनरल मिक्सर आप उपयोग कर सका हाँ। इन्हें सागर सागर गर्भित और जिका दूध देने वाला पशु है बाने भी अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता हुए तो बाने वास्ते भी अच्छे आहार की व्यवस्था करनी है। और यदि पशु अस्थायी शिविर में हुए या बाने रह कोई सुखो स्थान या साफ कोनी जगह मिले कीचड़ हटाना चाहिए बांगो कीटनाशु छिड़कना चाहिए और मच्छर एवं मक्खियां सु नियंत्रण भी रखना है और ये सुखाइए कि पशु स्वच्छ रहती।
1: बिल्कुल सा और सागे सागे वो भी ध्यान रखना है कि नाना बछड़ा है या छोटा जिका बारह बच्चा है बड़ी विशेष देखभाल करनी है। मुक्ताबेन के देखो जिका नाना बाछड़ा बाछड़िया है वह आपके जीवन में पहली बार जद घनी अंगूठी बिरखा देखे पानी देखे तो बे बार जीवन में एक यहाँ बने बार वास्ते एक रोमांच हो जावे और बार सामने एक चुनौती भी हो जावे तो बने ठंड से बचावना है सूखे स्थान पर रखना है बने आपरी मारो पर्याप्त दूध पिलावना है और संक्रमण से बचावना है। सागे ही आपने गाया भैंसा है बकरी भेड़ है आपा जे मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मुर्गियां हैं कई भाई सुअर पालन भी करे है तो सब में आपा प्रजी का पालतू पशु है बस ध्यान रखना है और अच्छो जिको है वो लाभ लेना है।
0: और बजरंग भाई देखो जिका पर अगर पशुआ ने बार बार स्थान परिवर्तन करा तो पशुआ में जिया कहीं भूख और भय के कारण पशु भी तनावग्रस्त हो जाया करे है तो तनाव सु कहीं बाकी दूध उत्पादन क्षमता भी कम हो जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाए तो इन वास्ते पशुआ ने शांत वातावरण में रखना भी घणो जरूरी है।
1: तो सा जिकी अनुति बिरखा है या बाढ़ है प्रकृति रे हाथ रमाइन है आप पूरी तरह रोक को नहीं सकते।

0: कर रोक को नहीं सका, पर वैज्ञानिक पशुधन प्रबंधन कर सका, समय सुपेली आपा तैयारी कर सका, प्रभावी आपदा प्रबंधन आपा जानोड़ा हुआ तो इधर दुष्प्रभाव ने काफी हद तक कम कर सका। सुरक्षित आश्रय स्थल है, साफ पानी है, संतुलित आहार देवनो है, समय पर टीकाकरण करवाणो है, पशुवारो बराबर स्वास्थ्य परीक्षण कराणो है, चारे रो प्रबंधन है वो आपने अच्छी तरह करनो है, और पशुवारो बीमा जको है वो आपने जरूर जरूर करवाणो है, और पशुधन से जुड़ोड़ी जितनी भी सरकारी योजनामा है बारे बारे में जानकारी होनी, बा योजना रो लाभ उठावण, दूजे भाई लोगा ने बतावण, ए सब बाता घनी जरूरी है।
1: और बजरंग भाई जी की आधुनिक तकनीक है बाबी, यानी सूचना संचार तकनीकी है नी बाबी, इन्हें काफी अलर्ट हुई है, काफी मतलब आगे बढ़ बढ़ काम करिए, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। और बजरंग भाई अब कार्यक्रम में आगे सुनाई कर
0: बिल्कुल साथ तो सांत्र साउंड रो कि बिरखा रो एडो ही कोई गीतर लो सुनाओ तो आनंद आ जाए।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो साबुन फूट रसो गीत लो सुनो और बजरंग भाई देखा के भारती जी की अधिकांश जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र में बसे है और बारी जी की आजीविका रो जो सबसे मुख्य स्रोत है वो है खेती बाड़ी और पशुपालन, लघु उद्योग और मजदूरी। और जी की इन उद्देश्य ने ध्यान में रखते हुए जी की अपनी सरकार है वह एक बहुत ही चौकी योजना ले रही है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी BVG रामजी अधिनियम 2025 में आ योजना लागू करी गई और ओ अधिनियम 1 जुलाई 2026 ने पूरे देश रे मायने लागू करियो गयो हो।
2: अच्छा तो इरो उद्देश्य जको है

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: और अभी आप गीतों में सुनो, देखो वजन जी, आप बात करा के जिको आपा जिको मानव जीवन है नी पूरे रूप से प्रकृति पर निर्भर है। आपा ने कही है कि स्वच्छ वायु है, शुद्ध जल है, उपजाऊ भूमि है, अनुकूल जलवायु रे बिना आपा ने जीवन की कल्पना ही को नहीं कर सका। तो आपा बात करा कि जिको वृक्ष है वो प्रकृति को सबसे मोटो उपहार है जिका ने आपा केवल पर्यावरण ने संतुलित रखे है बल्कि मानव रे जीवन ने पशु पक्षियों रे जीवन ने संपूर्ण जैव विविधता रे अस्तित्व रो आधार है। और पर आपा देख रहा कि जनसंख्या जसू बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या ने देखते हुए तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण, अर्बनारी कटाई, जलवायु परिवर्तन के कारण वो पर्यावरण जिको संकट है वो लगातार बढ़तो जा रही है।
4: तो कुल मिलार अब समय सारू आपा कदम उठावा तो बात आ है कि मानसून रो समय है, बिरखा रो भी समय है और बहुत ही उचित समय है आपा जितना हो सके बिता आपा पौधा लगावा और

0: आपा दूसरा ने प्रेरित करा। इन उद्देश्य सु आपा भारत सरकार 5 जून 2024 ने यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2024 रे अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे शुरुआत करी ही। ओ जको अभियान है इरो उद्देश्य प्रत्येक नागरिक ने आपरी माता रे सम्मान में, धरती माता रे सम्मान में, प्रकृति रे प्रति आपरी कृतज्ञता ज्ञापित करन सारू कम सुकम एक पौधो लगाना, बिने मोटो करनो, बिने पेड़ बनावनो, पूरो रूखो नहीं बने जिते ताई बिरी देखभाल करन सारू प्रेरित करे है। ओ अभियान पर्यावरण संरक्षण ने भावनात्मक संवेदना सु जोड़ जन भागीदारी बढ़ाने सारू एक नयो स्वरूप प्रदान करे है।
1: और बजरंग भाई ई अभियान में जो मूल उद्देश्य है वो है कि जिन प्रकार जी की माँ अपने बच्चा रो पालन पोषण करे है विन प्रकार ही वृक्ष जी भी अपने मानव जीवन ने भी पालन पोषण करनो है। माँ अपने जीवन दे रहे है जबकि वृक्ष जीवन ने बनाए रखने वास्ते आवश्यक जी की ऑक्सीजन है, भोजन है, औषधि है, स्वच्छ पर्यावरण भी अपने देवे है। तो मारे सम्मान में आपा एक पौधो लगासिया, पौधा रे प्रति प्रेम, कृतज्ञता और प्रकृति संरक्षण रो आपा भी ने प्रतीक बनासा।
0: तो ओ एक पेड़ माँ के नाम अभियान है वो केवल वृक्षारोपण रो कार्यक्रम को नहीं है, वो मातृत्व, पर्यावरण संरक्षण, अपारो सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास रो राष्ट्रीय जन आंदोलन है। वो अभियान हर एक नागरिक ने आपरी मारे प्रति सम्मान व्यक्त करन सारू प्रकृति रे प्रति आपरे कर्तव्य रो भी याद दिलावे है। पेड़ पौधा मानव जीवन रा मूल रक्षक है, ए आपाने ऑक्सीजन देवे है, भोजन, जल संरक्षण, फूल, पौधा, फल, जैव विविधता, औषधियां और स्वच्छ पर्यावरण अपने प्रदान करे है। जे एक एक भारतीय अपनी माता रे नाम सुकम सुकम एक पौधो लगावे, लगो लग भी देख पालो संकल्प लेवे तो आने वर्षा में हरित भारत बनाने रो सपनो है वो साचो हो सके है। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव कम होवेला और विकसित भारत 2047 निर्माण में वो अभियान एक सशक्त जन भागीदारी मॉडल रूप में स्थापित होवेला।
1: बजरंग भाई कार्यक्रम में आपा जानकारी और ले से और अगलो गीत लो सुना।
0: बिल्कुल सर, सुना आपा कार्यक्रम रो अगलो गीत।

है, ए भी मोकड़ा होवेला जीव जिनावर है, बे भी हरक करेला कोड करेला। तो पपैया सु याद आयो सा, पपैया रो गीत सुना, कार्यक्रम रो छेकड़ लो, गीत रो लो पपैया रे नाम।

दोसा सांतरासा गीतरला सुनाया काम री चर्चा करी अर्जी तो घणई करे है और बाता करा गीतरला सुना पर समय री मर्यादा है। तो मुक्ताबेन आज रे ग्रामीण जगत कार्यक्रम रो समय पूरो हो रियो है। कार्यक्रम ने अठाई विराम देवा आता सुनन आला भाई लोगों ने आई कहनी चाहवा कि आज रो ग्रामीण जगत कार्यक्रम संपन्न करने री आज्ञा देवसा आप रे साथी बजरंग सारस्वत।

वहीं श्रोता अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शख्सियत, इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में मैं अर्चना जैन आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वाद्य यंत्रों की एक समृद्ध परंपरा चली आ रही है, जिनसे भावनाओं का अद्भुत संचार होता है, जिनका मुख्य कार्य गायन के माध्यम से अभिव्यक्त किए जा रहे भावों की प्रस्तुति को सुंदर बनाना है। जिस भाव और रस को शब्द और मानव कंठ व्यक्त करते हैं, उसी भाव को आकर्षक ढंग से प्रकट करने का प्रयास इन वाद्य यंत्रों के द्वारा होता है, जिनके अभाव में संगीत अपूर्ण सा नजर आता है। ऐसा ही एक उत्कृष्ट श्रेणी का वाद्य यंत्र है भपंग, जो हमारे राजस्थान के अलवर जिले का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, जिसके द्वारा राजा भर्तृहरि, भक्त पूरनमल और हीर राजा इत्यादि की लोक गाथाएं आज भी अरावली की वादियों में गूंजती हैं। इस विलुप्त होती लोक वाद्य परंपरा को, राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार, जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, श्रीमान गफरुद्दीन मेवाती जी आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। गफरुद्दीन मेवाती जी राजस्थान के उन चुनिंदा लोक कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने इस विलुप्त होती भपंग वादन कला को अपनी पहचान और साधना का माध्यम बनाया। साथ ही गांव ढाणी से लेकर बड़े मंचों तक राजस्थानी संस्कृति को जीवंत बनाए रखा। गफरुद्दीन मेवाती जी, आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम गफरुद्दीन मेवाती जोगी है। मैं राजस्थान का अलवर जिले में रहता हूँ।
2: इत दिल्ली उत आगरो ब्याना और बैराट, इता चकल्ला बीच में बसे मेरी ब्रज रंग मेवात।
0: क्या बात है।
1: मैं आपको एक थोड़ा सा मेवाती लोकगीत सुनाता हूँ, जो उसकी मिली जुली संस्कृति के उस पे आता है
0: जी।
2: अर काला पे अभिमानी, अर

काया के दिन मिट्टी में मिलेगी, काया तेरी मिट्टी में मिलेगी।

0: क्या बात है, भपंग वादन के साथ आपके गायन की बहुत सुंदर प्रस्तुति, और इसी के लिए हाल ही में पद्मश्री सम्मान से आपको केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, तो सर्वप्रथम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जब इस सम्मान की प्राप्ति आपको हुई या इस सम्मान की घोषणा जब आपने सुनी, तो सबसे पहला अनुभव आपका क्या रहा?
1: मैं जिस वक्त घोषणा सुनी, उस वक्त मैं अलवर में ही सूचना केंद्र में कार्यक्रम था मेरा, भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन मंत्री हैं
0: जी
1: भारत सरकार के, उनका वंदे मातरम का कार्यक्रम कर रहा था मैं, तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि चैनल है उसमें आपका नाम चल रहा है
0: जी।
1: भाई कहाँ से? नहीं, आपका नाम चल रहा है उसमें, हमने देखा अभी, तो सुन के बहुत खुशी हुई। भारत सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ जिस तरह ने मुझे दिलवाया दिया।
0: राष्ट्रपति भवन के लिए आपका बुलावा आया?
1: जी, राष्ट्रपति भवन देखा ही नहीं था कभी, हमारी कितनी पीढ़ी गुजर गई, हमारे और 10 पीढ़ी गुजर चुकी संगीत में
0: जी।
1: परदादे थे, दादे थे, फिर उनके दादे थे हमारे, हमारे पिताजी
0: जी,
1: वो सारे लोग खूब उन्होंने काम किया है जिस क्षेत्र में संगीत के में। 11वीं 12वीं पीढ़ी मेरी थी जब से हमारा देश में हम संगीत का काम कर रहे थे हमारा परिवार, तो उसमें जाकर के मेरा नाम आया इसमें। गफुद्दीन देवती जोगी,
0: बड़ा ही अविस्मरणीय अनुभव ये आपका रहा। संगीत से आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा से रही है
1: जी, विरासत मेरी थी
0: जी, तो इसके बारे में हमें बताइए कि भपंग से जुड़ाव आपका शुरू से रहा है।
1: ये जो भपंग का जुड़ाव हमारा ऐसे कि हमारा काम जोगी है, हमारा गांव-गांव में मांगने खाने का काम था पहले, तो हमारा कोई भी बच्चा हो जो 3 साल का होता है, 3.5 साल का होता है, उसको साथ लगा लेते हैं हम
0: जी,
1: और उसको साथ लेकर के जोगिया सारंगी और भपंग का एक मेल है संगीत का, गाँव में घर का भला हाँ मल बनाए रखे ऊपर वाला तेरे को ये देर मुदे, और भजन गाया करते थे हम गांव-गांव जाकर के, सुबह जाते थे पिताजी तो उनके साथ में भपंग बजाते थे, पिताजी सारंगी बजाते थे जोगिया, तो जैसे यार पहुंचते तो अजी घर आ गए लक्ष्मण राम पूरी मेरा आनंद भाई, वो घर आ गए लक्ष्मण राम पूरी मेरा आनंद भाई। इस तरीके से जो जाते थे तो कोई आटा लाती थी, कोई अनाज लाती थी, कोई सब्जी देती थी घर से, इस तरीके से घर का सामान घर चलाने के लिए परिवार का हम गांव से जाकर के।
0: तो भपंग वादन से ये जुड़ाव आपका निरंतर चलता रहा, और बाद में बहुत से लोक गीतों और गाथाओं को भी इसके माध्यम से गाया जाने लगा
1: जी,
0: उस बारे में भी हमें बताइए।
1: जब इसमें बड़े जाके हुए तो गाँव में पहले और कोई मनोरंजन का कोई साधन नहीं था
0: जी,
1: तो ब्याह शादियों में भी पिताजियों का बुलावा हमारे आने लगे, तो उस जमाने में जब आता था तो पहले लिखी आती थी शादियों के कार्ड में, जो आती लगन आती थी उसमें लिखी आती थी अगर इस तारीख में कैथवाड़े के जोगी बुद्ध सिंह की पार्टी खाली हो तो शादी की डेट रख लेना, इस तारीख को नहीं बढ़ा देना आगे सब
0: जी,
1: इतने हम शादी नहीं करेंगे जब तक उनकी पार्टी हमारी शादी में नहीं आएगी।
0: एक विशिष्ट स्थान बनने लगा आपका इस क्षेत्र में।
1: बिल्कुल, संगीत नृत्य में वो था गाँव में पहले, और उसके बाद में फिर हम ब्याह शादी में जैसे 3 दिन बारात होती थी, 3 बारात अटेंड करते थे उस जमाने में, बारात तो उनमें जाके गाया करते थे
0: जी, जो हमारी मेवाती लोक संस्कृति है और ब्रज संस्कृति है
1: जी, तो इन दोनों में ही हमारे यहाँ जो

0: इस क्षेत्र में हमारे मेवात क्षेत्र में भगत परमल का किस्सा
1: जी
0: और महादेव जी ब्यावला कृष्ण जी की जो बात थी चंद्रावल गुजरी वाले मेरे ब्रज भूम बाकी बसे जहाँ श्याम सलोने कान लूटल लगे गुजरी सकी वहाँ प्रगट हुए नादान। हाँ समझा ले तेरे या लाला है मैया समझा ले तेरा या काना है रे मोहे छेड़े रोज डगरिया वो समझा ले अपने काना है रे समझा ले अपना काना है मोहे छेड़े रोज डगरिया वो समझा ले अपना काना है रे मोहे छेड़े रोज डगरिया वो मैं तो जल भर में को जा रही री मैया।

0: क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत प्रस्तुति आप भपंग वादन के साथ हमारे श्रोता आज आपकी सुन रहे हैं, तो बहुत ही मनोरंजन का अच्छा साधन ये रहा है और इस भपंग वादन ने आपको एक विशिष्ट पहचान भी दी है, साथ ही बहुत सी उपलब्धियां और सम्मान भी आपने इसके द्वारा अर्जित किए हैं, उनके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
1: इसमें सब हमें पहले तो हमारे यहाँ साक्षरता के कार्यक्रम चलते हैं हमारे राजस्थान में, हमने उसमें साक्षरता के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों में साथ दिया, जैसे कि गाँव में पढ़ा जो अनपढ़ बच्चे थे उनको और बड़े लोगों को उनको शिक्षा से जोड़ा गया, मैं वातावरण के रूप में बनाने के रूप में इसमें कार्यक्रम में पब्लिक को इकट्ठा करना, फिर उनको शिक्षा के बारे में बताना, हम उसमें काम किया, इसी के माध्यम से बपन के साथ में हमने
0: और बहुत से सम्मान भी आपको इस प्राप्त हुए हैं,
1: बहुत मिले हैं, अपने राज्यपाल सम्मान मिला मुझे राजस्थान से, प्रधानमंत्री भारत सिंह बाबा थे जब उन्होंने सम्मानित किया मुझे मुख्यमंत्री साहब ने, उसके बाद फिर हम इसी से ही हमें 2016 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य का जो वो था अवार्ड वो दिया
0: जी,
1: फिर इसी से मुझे फिर 2022 में संगीत नाटक अकादमी सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का अवार्ड मिला
0: जी,
1: और उसके बाद फिर हम इसमें चलते रहे फिर फोर हम कार्यक्रम होते रहे, आए चले गए, आए पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के थ्रू कार्यक्रम बहुत हुए, उनमें पूरा भारत घूमा
0: जी,
1: और फोर हैंड विदेशों में 45-40 देश विदेशों में गए हैं
0: जी,
1: और इसी से इसी के माध्यम भपंग के युग से पांडवों का करा महाभारत 48 घंटे का मैं गाता हूँ,
0: अच्छा
1: भगत पूर्ण नल का किस्सा गाता हूँ
0: जी,
1: और अपने लोक रामायण है जिसको हम लंका चढ़ाई कहते हैं वो भी मैं भपंग के साथ ही गाते हैं
0: जी,
1: और कृष्ण जी के भजन और शिव जी का ब्यावला ये सब गायकी हम भपंग के साथ ही करते हैं, इसमें जोगे सरंगी हारमोनियम ढोलक भपंग नकारा ये सारे साजों से साथ रहते हैं।
0: विदेशों तक भी आपकी ये भपंग वादन की प्रस्तुति रही, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे
1: जी, हमें ये इसके सब हर जी गए हमारा विदेशों में जहाँ भी गए वहाँ भपंग का बहुत अच्छा वो रहा, और इसी के माध्यम से हमने महाराणी एलिजाबेथ के जन्मदिन पर एलिजाबेथ हॉल लंदन में अपना कार्यक्रम किया
0: जी,
1: वहाँ लोगों ने सराहा बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात है, इस विलुप्त होती अनमोल विरासत को आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसको जीवंत रख पाएंगी या इस ओर आपके कुछ प्रयास हम जानना चाहेंगे?
1: इसको जैसे मुझे अब ये अवार्ड मिले हैं संस्कृत मतलब संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है, तो बच्चों में उसी वक्त ललक पैदा हो गई थी
0: जी,
1: को उनको 1,00,000 रुपए मिला है और राष्ट्रपति साहब ने इनको वो दिया है, स्मृति चिन्ह दिया है, सम्मानित किया है साथ में, और हम भी करेंगे जो हम भी लेंगे
0: जी,
1: तो बच्चों में वो ललक पैदा हुई, और अब जो दूसरा जो अवार्ड मिला है पद्मश्री, अब तो लोग बहुत सीखने के लिए तैयार हो गए, लोग आने के लिए, तो पहले भी शिकायत थी,
0: बहुत अच्छी बात,
1: 35 लोग मैंने पहले शिकायत दी थे
0: जी,
1: चल रहे हैं, और अब लोगों में ज्यादा ललक पैदा

0: हुई है
1: जी। गफरुद्दीन जी, भपंग वादन ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, विश्वव्यापी ख्याति आपने इसके द्वारा अर्जित की है, तो इस ओर आपकी कितनी साधना रही, कैसा रियाज आप करते हैं, ये हमारे श्रोता आज जरूर जानना चाहेंगे।
0: ये हमारा सर सबसे ज्यादा रियाज तो ये रहता है कि हम गांव गांव जो जाते हैं ना, दिन में सारे दिन गांवों में घूमते, रियाज ही होता रहता है
1: जी, आज भी
0: चलता है
1: जी।
0: अब थोड़ा इसे इतना हो गया कि अब हम जैसे होटलों में या स्टेजों पर कार्यक्रम करते हैं
1: जी।
0: अब घर घर इतना नहीं जाते जो पहले जाया करते थे
1: जी।
0: नहीं, हमारा कम से कम 3-4 घंटे का तो रियाज दिल्ली का गाँव में रहा करता था। जैसे कि हम आपको एक बताते हैं कि जिस किसी गांव में 5 आदमी बैठे पाए जाते थे, चौपाल वो बैठे रहते थे गांवों में
1: जी।
0: तो उस वक्त हम गा गा कर सुनाते थे, मैं बाती में वो सुना रहा हूँ।
2: खेती गए वाय जाने रे निपज आई जामे गोभी, लाला खेती गए भी वाय जानो निपज आई जामे भी गोभी, राजन राज गए वाय जान रे जहां थे राजा लोभी, राज गए वाय जान रे जहां थे राजा लोभी, जब लूख गए दीवाए जान विरन के बुगला बसना, देखी रूख गए वाए जानो जहां के बुगला बसना, राजब लोग गए वाए जान रे जहां के मुकदम भी हसना, जब ये लोग गए वाए जान रा जहां के मुक

0: टूटे। इस तरीके से हम गांवों में चौपालों पे जब आदमी बैठे पाते थे ने, उनके सामने गाया करते थे। कोई 5 रुपया को, 2 रुपया को, 10 रुपया देता जिससे हमारे घर का खर्चा चलता था।
1: जी बड़ी साधना आपकी ये रही है और बड़े हर्ष की बात भी है कि आज हमारा जो आकाशवाणी का स्टूडियो आपका मंच बन गया है और हम आपका ये गायन सुन पा रहे हैं। तो कोई ऐसी भी मंच प्रस्तुति या कोई यादगार पल आपके जहन में है जो एक कलाकार के रूप में आपको बहुत प्रभावित कर गया हो?
0: जी हाँ, जब जिस वक्त हमें बहुत खुशी हुई जब सबसे पहले हम एक दिल्ली में कार्यक्रम था वहाँ किया, बम्बई में था क्रॉस मैदान में
1: जी
0: एक वहाँ किया, तो यहाँ 2-3 जगह जो कार्यक्रम होता है बहुत खुशी हुई। गांव से जाकर के वहाँ मैंने जो ये आकर के जो हुआ तो वहाँ हमने जब एक वो था कि हमारा वो उसमें कार्यक्रम था जब पहला गाना मैंने वह उसमें जो अच्छा सुन लगा था लोगों को बॉम्बे में सुनाया था हम

0: हम हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे,
1: क्या
0: जो मेल बढ़ाए आपस में वो धर्म ईमान रखेंगे, ये शंख बजाए भाईचारे का और अमन की एक अजान रखेंगे, ये काबा भी रखेंगे और हम काशी भी रखेंगे, मगर सबसे पहले अपना हिंदुस्तान रखेंगे।
1: जी क्या
0: अरे हे रही है टर ही टर, वो मच रही है टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रही टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रही टर ही टर, हे रही टर ही टर, मच रही है टर।

बड़े साहब को कहते डायरेक्टर। हाँ संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर। ये फिल्म में जो काम करते वह है एक्टर। अब जिले के अफसर को कहते जिले, अब जिला के अफसर को कहते डिस्ट्रिक्ट।

स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ा में मास्टर, भाई मास्टरों को चेक करते वही इंस्पेक्टर, ए हर कमरा में

0: Quítame ya que me copa de todo. Todo que ni que este es el computer. Un gang que admira sab computer, solo de que son computer que hain.
1: Ji.
0: Hospital me ja ke dekho paave doctor. Ye doctor ke ni ke rehte ho hai computer. Ye dhori si saadi me dole, dhori si saadi me dole. Ure si sitter. Ya duniya me dekh rahe rahiye computer. Ya duniya me dekh rahe rahiye computer.
2: इस तरीके से पेश करते थे लोग बहुत खुश हुआ करते थे
1: जीवन की रोजमर्रा की सच्चाइयों को अपने इस अनूठे वाद्य यंत्र और गायन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते रहे तो अब यहाँ मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपका इसके पीछे जीवन मंत्र क्या रहा जिसने आपको प्रेरित किया लगातार इस पर आप बने हुए हैं हमारे श्रोताओं को बताइए
2: पिताजी थे जो अनपढ़ थे
1: जी
2: उन्होंने कहा कि बेटा मैंने आपको पढ़ाया तो थोड़ा कोई वसूल सर्विस में लग जा इस चीज में गुजार नहीं होता परिवार का मैंने किया है वो बोले मैंने ठीक है जब पिताजी का नाम देखा मैंने
1: जी
2: लोगों को जो बता रहा था आपको कुछ देर पहले बताया था आपको मैं शादी में लिख के आता था अगर बुद्ध सिंह जोगी की पार्टी इस तारीख में मिले खाली तो शादी करना नहीं तो आगे बढ़ा देना
1: जी
2: मैं बोला अगर मैं इस लाइन को छोड़कर इसमें जाऊंगा तो मेरे बाप का नाम तो डूब जाएगा
1: जी इस परंपरा को आपको आगे ले जाना
2: परंपरा को आगे ले जाने के लिए मैं इसके साथ में लगा रहा
1: जी
2: और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारा इतना मांग थी और इतनी से वजह थी कि जो जो हम गाते हैं तो इनके वजह से इनके माध्यम से गांवों में झगड़ा जो होते थे आपस में तो उनसे भी वो उसका फैसला हो जाया करता था जैसे कि उसमें पंडों के कड़े में महाभारत में आता है उसमें अर्जुन जिस वक्त चौपर से खेलते चौपर से खेलने के बाद में जब अर्जुन ज्यादा गमगीन हो जाता है भीम बोला कि तूने किसी भाई से नहीं पूछा और चौपर से चार खेलने के लिए बैठ गया और हमारा पूरा आपने एक साल का वनवास ले लिया है
1: जी
2: और मैं ये चाहता हूँ कि तू जब वहां वनवास में हम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा
1: हाँ।
2: वो छोड़ करके चला गया वो बोला मेरा भाई मैं पूछ के आता हूँ मुझे कहता भाई समझ जाए मेरी बात को तो जब उसने कहा और भीम से दुर्योधन से जाकर के कहता है सुन दुर्योधन तो सो कहूं बड़ो प्यारो नाम बैगे हम सु भूम बोझन मरे तेरो ले हतना पर गांव भाई अगर पूरा शहर बसा हुआ है आपका हतनापुर ये पांडव अर्जुन जात कहता है किससे मुझसे दुर्योधन से कि पूरा गांव आपका बसा पड़ा है उससे तो तेरा शहर कोई बोझन नहीं मर रही है जमीन अगर हमसे वजन से ये बोझन मर रही है इसको वजन लग रहा है तो भाई हम आपके गाँव छोड़ के चले जाएंगे
1: कहने की ये कला थी
2: तो इस आधार पर गांवों के फैसले हो जाए करते बड़े लोग अरे नहीं यार भाई तुम्हारा भाई भाई करबानी में सुलाखना जिनकी गहरी मूड़ी छाए जे भाई बट बोलना फिर भी अपनी बाएं कहते अपनी भुजा अपने मतलब अपना भाई ये तो भाई जो साथ देता है वो कोई दूसरा साथ नहीं देता
1: जी
2: ये उसे वो कहता है कौन दुर्योधन कहता है अर्जुन के तो ऐसे जो इसमें दोहे हैं तो उसके माध्यम पर फैसला हो जाया करते थे पंचायतों में
1: हाँ।
2: पंचायत टूट जाया करती थी गांवों में तो इसलिए इसको और ज्यादा लोग पसंद किया करते थे
1: हाँ। मनोरंजन का ही ये साधन नहीं था कि बल्कि ये मतलब बड़े से बड़े झगड़ों को भी सुलझाने का एक
2: साधन था इसे ज्ञान होता था
1: जी बड़े ही सरल शब्दों में इससे कह दिया जाता था गफरुद्दीन जी अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी पहली प्रस्तुति कहाँ

0: देखी और विभिन्न मंचों जहां आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं उसमें एक विस्मरणीय मंच आपका कौन सा रहा?
1: पर्यटन कला सांस्कृतिक विभाग राजस्थान सरकार का कार्यक्रम था मेरा राजस्थान दिवस का जयपुर में, उसी वक्त मुझे वहां से ले जाएगा जयपुर, जयपुर आकाशवाणी पे
0: जी।
1: सबसे पहले पांडव कड़ा मैंने वहां सुनाया उन लोगों
0: जी।
1: को तो उसने मैंने सुनाया था, आपको मैं थोड़ा सा पेश कर रहा हूँ पांडव कड़े से। अरे

सत्रह सौ सतासिया वर्ष गला है बीत फिर जानू पंडुआ भूया दिन की जगत करे पर प्रीत कहाँ के दास्तान होते हतनापुर के हतनापुर में कौन की राजधानी कैरुर पांडु अब रथ जोड़ ओ चले जी हर बन को अब रथ

0: जब रत हुए बाग के बोले दशरथ प्राण रूपी बलवंत रे अतुल गुणवा का देगम।
1: अंत में गफरुद्दीन जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे युवा पीढ़ी को आकाशवाणी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं जब से आकाशवाणी जुड़ा हूँ, पहली बात तो मुझे इससे बहुत सहूलत मिली, बहुत मेरा नाम हुआ गांव में। लोग दिनकर रेक्टर रेडियो चले थे उस जमाने में, घर घर में रेडियो हो गए थे, और जो अपना यहाँ अलवर का रेडियो का प्रसारण होता था सारे लोग सुनते थे बैठ करके शाम को 7 बजे एरिया में पूरे निवात में, और इससे बहुत नाम हुआ
1: जी
2: हमारा। जब हमारी बात आती थी, ये पंडो कड़ा घुसी में खाओ की बात आती थी, इनको जब सुनते थे तो लोग बहुत जहां भी जाते थे आप जो मां गाया था वो सुनाइए, शादी में उनकी मांग होने लगी थी। इससे बहुत नाम हुआ, और मैं आज की पीढ़ी से कहना चाहता हूँ नशा से दूर रहे
1: जी।
2: और आगे का काम ऐसा करो जो जीवन में नाम हो आगे बढ़ने का, जिसमें इज्जत मिले समाज को देश को, उस काम को करे और नशे के काम को छोड़े और गलत कामों से अलग हटे। तो और इस विधा को जो मैंने मुझे भी इसी तरीके से मैंने लगन लगाई थी भप्पन के साथ में जो मैं बजा रहा हूँ, तो जब ही नाम हुआ जब मैं भी लगन से गांव गांव घर घर जा करके और शहरों में जगह जगह मैंने इसको बजाया और लोगों को सुनाया, तो उससे जैसे मेरा नाम हुआ ऐसे ही लोगों का नाम हो सकता है। अपने अच्छी उस पर लगन पे चलेंगे, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा कोई वो ढूंढे अपने लिए, टर्निंग वर्निंग करें, कौन कौन सी वो टर्निंग होती है जिनमें कोई फैक्ट्रियों में लगता है, कोई इंजीनियर बने जैसे ये इस तरीके से वो करें कोई डिप्लोमा, ये तो उनसे नाम हो सकता है हमारा देश का हमारे प्रांत का। तो मैं ये एक अपने भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से एक मांग करता हूँ कि मुझे एक आवासीय विद्यालय बनवाया जाए
1: जी,
2: जिसमें बच्चों को वहीं रख करके और गुरु शिष्य परंपरा के तहत जैसे वो कर सकूं, तो उस तरीके से बच्चों को वहीं रखा जाए, उनको सिखाया जाए और फिर शिक्षा भी दी जाए, उसके साथ साथ पढ़ाई भी नहीं रुके बच्चों की, और उसमें आकर के वो लोग एक घंटा दो घंटे के लिए मेरे पास आने लोग सीखे
1: जी।
2: तो मैं सब लोगों से राम राम और नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मेरी वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत।

215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात रात 9 बजे अंग्रेजी में।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करें? समाधान आपके पास है। दई मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य

0: आपका भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
2: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसके लिए आज के दिन में भी आइए प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतों को, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
4: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
5: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरल में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें

0: होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केनी बॉन्स और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरैम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज़ एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Kerala, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive Bethlehem at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
2: More than 1 crore youths from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat, the National Service Scheme volunteer.

0: डंकी फिल्म के इस गीत के साथ ही जिसे अरिजीत सिंह ने गाया था फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।

1942 दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 18 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में डल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिंफनी थी जिससे आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Subrata Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German-Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration, it was beautifully played, and Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg, and behind him we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.

कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद होशियार और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और जनानों ने गीत गाते उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था?

0: गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहाँ तक पहुँचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी।

0: भारत को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना आजाद हिंद फौज के जो नायकों पर अपना मुकदमा चला, तो

0: हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंजे प्रेम की माला।
1: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगता बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।

सीतापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थाई सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ा।

0: आज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से है।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती है, धुनें प्ले होती है, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप कर

0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
1: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया, ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था 1942 में, क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
1: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल ऑन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको तीन टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास टूटी, दैट वाज द फोर्स जवान के कर्मों के लिए फोर्स द्वारा, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन एचबी बराल, हिंद बराल को दिया गया, और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
1: दिस इज फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्शन। कदम कदम बढ़ाए, दिस इज मेलोडी, पहले जो था इंट्रोडक्शन था, नाउ मेलोडी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, दिस इज मेलोडी। नाउ इज द ब्रास सिटी, ला ला ला ला ला। La la la, pa pa.

0: wrong. This is the brass duty. This is the josh. This is the josh jawan ke hirday mein laane ke liye, dimag mein laane ke. Then again is the melody. This is also melody. Now we see. Karam karam badhayega, khushi ke geet gaayega, ye zindagi hai kaum ki, kaum pe lutayega.
1: अब इस गीत के शब्द और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने बनाई है। हालांकि इस

के अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाएगा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए, वो उसमें आपको मिलेगा। पहले ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। हम जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बिहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए, मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, और एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म

0: हम दरिया जंगल घूमेंगे, मतवाले बन आसानी के, हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं फिल्म के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से बेशक उनमें कच्चापन है, लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत एक एक पंक्ति है और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर झूमेंगे। अब ये जो जज्बा है कि ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
2: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगत बोस।
3: द ट्रायल बिगैन ऑन द 5th ऑफ नवंबर एंड एंडेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 1945 एंड देयर वाज अ ह्यूज पॉपुलर अपसर्ज अक्रॉस द होल कंट्री इन सपोर्ट ऑफ नेताजीज सोल्जर्स। And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example on Netaji's birthday on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
2: Captain Ram Singh ki conducting baton ne hazaron dilon ki dhadkanon ko एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
4: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करतलों से मुझे भेंट की और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह।

0: शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
1: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याण सिंह हस्सर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।
2: वो दिल

के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना वाना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कव्वाली गाया जाए।

0: mejor. ¡Llegue!
1: मिडिल ग्रेड के कमांडर कर्नल हिलन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: नेतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निःशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि सुख सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of शुभ सुख चैन की is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more Komal notes that have been added. And the second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Aharah tabo alhana pracharita shunitabo udara bani Hindu Bodha Shikh Jaina Parashikh Musalman Krishtani Purab Pashchi

0: वाले हर मजहब के प्राणी सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गुंथे प्रेम की माला.
1: And then you can hear the formal notes better in the chorus lines.

0: Yayo Hey becomes Yayo. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चैम्बर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और इसके बैंड लीडर थे एगिल ट्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविन्द्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बी एल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहाँ उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉन्सबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था। उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: बैग के डिब्बे अब कब भी खामोश हो चुके हैं। कूच करके कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall

के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख बसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: I, Sudhakar Devle, accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Umesh Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashvani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravi Vaisarya Sangeet Sabha comes to an end.
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़।

0: ये ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, समाचार पहले हिंदी में और उसके पश्चात 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरल में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद

0: in Glasgow tonight. On the occasion, Ahmedabad will receive the Commonwealth Games flag and the host baton in a ceremonial handover during the closing ceremony, marking India as a host for the centenary 2030 edition. Now that is the end of this news bulletin.
1: Medium wave 215.05 meter, यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अगली सभा में कल सवेरे 5:53 पर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।